सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58:36 हो रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

0: प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शांति श्रद्धा और भक्ति के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जिसके मन में हरि का नाम उसके जीवन में रहता है सुख शांति का धाम। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से ही जीवन की हर राह आसान होती है। श्रोताओं आइए आज के इस भक्तिमय सफर की शुरुआत करते हैं प्रभु श्री हरि की आराधना से।

श्रोताओं, प्रभु भक्ति के इस मधुर सफर में आगे बढ़ते हुए अब समय है माँ की आराधना का। माँ का आशीर्वाद वो शक्ति है जो हर अंधेरे रास्ते में उम्मीद का प्रकाश बनकर साथ चलता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं माँ अम्बे की महिमा से ओतप्रोत ये सुंदर भजन।

श्रोताओं, माँ अम्बे की भक्ति के बाद अब प्रस्तुत है गुरु की महिमा को समर्पित एक पावन शब्द। गुरु वह प्रकाश हैं जो जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। गुरु की कृपा से मिलती है मन को शांति अपार, नाम सिमरन से खिल उठता है जीवन का संसार।

श्रोताओं, भक्ति के इस खूबसूरत सफ़र में अब बारी है रूहानी एहसास से भरी एक प्यारी सी नात की। इबादत, मोहब्बत और इंसानियत का संदेश देने वाली नात दिलों में सुकून और श्रद्धा का भाव जगाती है। तो आइए पूरे अदब और एहतराम के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत नात।

श्रोताओं, भक्ति और श्रद्धा के इस मधुर सफर में अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। हरि भजन से शुरू हुआ ये भक्तिमय सफर माँ अम्बे की आराधना, गुरु की वाणी और रूहानी नाथ के बाद अब समर्पित है माँ संतोषी के पावन चरणों में। कहा भी गया है कि माँ की भक्ति में मिलता है मन को सच्चा आराम, माँ के आशीर्वाद से रोशन होता है जीवन का हर धाम। तो आइए श्रद्धा के साथ करते हैं माँ संतोषी की आरती का श्रवण।

माँ संतोषी की इसी पावन आरती के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 होने को हैं। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। स्वर है श्रीकांत पारगांवकर और वाणी जयराम का, और संगीत सतीश भाटिया का है।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर

कर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। स्वर था श्रीकांत पारगांवकर और वाणी जयराम का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: ज्ञान आप ही हैं, आनंद भी आप हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। जरा गहराई में जाकर तो देखो, खुशी भी आप ही हो। जिसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, उद्देश्य नहीं। जिस तरह हम में से किसी को सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वभाव नहीं है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मजा है। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं दो कौड़ी में। हम दोषी हैं कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं। ऐसा संकल्प लो और फिर ऐसा काम नहीं करो जिससे दुखी होना पड़े। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हैं। हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ। खुश रहो, खुशियां बांटो। न दुखी रहो न दुखी करो, न दुख बांटो। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं। हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। जो झुकता है वो सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अपनी जिंदगी को व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें, भूतकाल और भविष्यकाल में न जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानि, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्यकाल में कल्पना, आशा, निराशा, चिंताएं और उदासी हैं। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज दिवाली है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है। खुशी आपके पास है, खुशी के लिए भी तड़प होती है। परमात्मा आपके पास है, तभी तो तड़पन है। हमें जीवन में कुछ चाहिए, क्या चाहिए देखें, सुख दुख, मुसीबत या आनंद। हमारा जो भी काम होता है खुश रहने के लिए होता है। जीवन को दुख या मुसीबत नहीं समझें, जीवन प्रभु का प्रसाद है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:45 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं गांधी कथा।

मैं पोरबंदर पहुंचा, चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया, सारी बातें सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया और मुझसे कहा, मुझे मालूम नहीं कि विलायत जाकर हम धर्म बचा सकते हैं या नहीं। जो सब बातें सुनता हूं उनसे तो मुझे शंका ही होती है। देखो, बड़े वरिष्ठों से जब मुझे मिलने का काम पड़ता है तब मैं उनके और साहबों के रहन सहन में कोई फर्क नहीं पाता। उन्हें खाने पीने का कोई बराब नहीं होता, सिगार तो मुंह से छूटता ही नहीं, पहनावा भी देखो तो नंगा। ये सब अपने कुटुंब को फबेगा नहीं, पर मैं तुम्हारे साहस में विघ्न डालना नहीं चाहता। मैं तो कुछ ही दिनों में यात्रार्थ जाने वाला हूं, दुनिया में मुझे अधिक दिन रहना भी नहीं है। किनारे पर पहुंचा हुआ आदमी तुम्हें विलायत जाने की, समुद्र पार करने की इजाजत कैसे दे? पर मैं बाधक न बनूंगा, असली आज्ञा तो तुम्हारी मां की है। उनकी अनुमति मिल जाए तो तुम खुशी से जाओ, कह देना कि मैं तुम्हें रोकता नहीं, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हें प्राप्त ही है। मैंने कहा, इससे अधिक की आशा मैं आपसे नहीं रख सकता, मुझे अब अपनी मां को ही राजी करना होगा। पर लेली साहब के लिए सिफारशी खत तो देंगे ना आप? चाचा जी बोले, ये मुझसे कैसे हो सकता है, पर साहब भले आदमी हैं, तुम पत्र लिखो, कुटुंब का परिचय देने पर वो अवश्य तो

0: मीडियम। अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य वित्तीय स्वास्थ्यस्य विशेषाधिवक्त्रा नीदरलैंड देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम सन्देशे श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल क्रान्तिः वित्तीय सेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्यजनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति, जनान् सशक्तञ्च करोति इत्यस्मिन् विषये द्वयोः मध्ये चर्चा अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः आरभ्य 29 दिनांक पर्यन्तं सेशल्स देशस्य राजनैतिक यात्रायां भविष्यति। सः तत्र सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती उत्सवे अतिथि रूपेण भागं गृहीष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा 2015 वर्षे सेशल्स देशस्य भ्रमणं कृतमासीत्। विदेश मन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकं दलं भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह उत्सवे भागं गृह्णीयात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, द्विपक्षीय सहकार्यस्य संपूर्ण समीक्षां करिष्यति, अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्र

0: प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है दूब घास के औषधीय गुण।
2: लगभग सभी लोग दूब घास से परिचित हैं। खेतों के आसपास मेड़ों पर, सड़क के किनारे, लान व पार्कों में दूब ही दूब दिखाई पड़ती है। दूब घास साधारणतः पशुओं को खिलाई जाती है। आमतौर पर हम लोग अपने घर में उगी दूब को तुरंत उखाड़ कर फेंक देते हैं, मगर हम यह नहीं जानते कि दरअसल यह घास कितनी उपयोगी है। वास्तव में बहुत कम लोग जानते हैं कि दूब एक उत्तम और उपयोगी औषधि है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में दूब का पर्याप्त वर्णन मिलता है।

0: आयुर्वेदिक ग्रंथ में इसका वर्णन दुर्वा नाम से गुणियाची में वर्ग में मिलता है। आयुर्वेद में इसे दो प्रकार का माना गया है, हरिदूब और सफेद दूब। हरिदूब को काली या नीला दूब भी कहते हैं। यह स्वाद में कड़वी तथा कसैली होती है। यह शीतल प्रकृति वाली होती है। यह कफ का बनना रोकती है, पित्त विकार का समन करती है तथा रक्त विकार नाशक है। यह विसर्प, त्रसा, दाहा तथा त्वचा रोगों में पर्याप्त लाभकारी है। सफेद दूब के ज्यादातर गुण हरी या काली दूब जैसी ही है, मगर से अधिक प्रभावकारी होती है। साथ ही यह गर्भ स्त्राव व विसर्प की स्थिति में ज्यादा अच्छा लाभ दिखाती है। सफेद दूब बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ज्यादातर हरी दूब ही प्रयोग में ला जाती है। यदि कहीं पर किसी भी कारण से चोट लग जाए, घाव हो जाए, किसी हथियार आदि से शरीर का कोई हिस्सा कट जाए और रक्त भी बह रहा हो, तो तुरंत थोड़ी सी दूब लेकर कुचलकर पीसकर घाव में उसके रस को बूंदे टपका दें और ऊपर से कुचली ही घास रखकर बांध दें, तो रक्त का बहना तुरंत रुक जाता है और घाव भी जल्दी भर जाता है, पकता भी नहीं है। दूब घास सेप्टिक नहीं होने देती। यदि घास को कुचलना पीसना संभव न हो तो उसे मुंह से चबाकर घाव पर बांध सकते हैं। यह और भी अधिक लाभकारी होता है। यदि किसी के कान या नाक या मुंह से रक्त स्राव होने लगता हो तो हरी दूब को भली प्रकार पीसकर 4 चम्मच रस निकाल लें और इसमें इसके बराबर शुद्ध शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार सेवन करें, पर्याप्त लाभ मिलेगा। नकसीर की स्थिति में 2-4 बूंद नाक में भी टपकाएं। यदि किसी व्यक्ति के मूत्र या मल में रक्त आता हो, मूत्र नली में संक्रमण का खतरा बन गया हो अथवा मल द्वार में चटक पैदा हो गई हो, अर्थात गुदा मार्ग फट गया हो या बवासीर हो, तो हरी दूब को भली भांति पीसकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में रस का दिन में 3 बार सेवन करें। रोग ठीक होने के 3-4 दिन बाद तक इसका प्रयोग करें। हरी दूब का रस 100 ग्राम लेकर 100 ग्राम तिल के तेल में मिलाकर हल्की आग पर गर्म करें। जब जलते जलते सिर्फ तेल रह जाए तब उसे उतारकर ठंडा कर लें और शीशी में सुरक्षित रख लें। इसकी मालिश से त्वचा रोग नहीं होते। यह तेल कान में डालने पर कान के रोग में भी लाभ पहुंचाता है। यह तेल शिशुओं की मालिश के लिए विशेष लाभकारी है। तेल कलईदार बर्तन में अथवा लोहे के बर्तन में ही बनाएं, एल्युमिनियम के बर्तन का कदापि प्रयोग न करें। स्त्रियों के रक्त प्रदर रोग में कुशा की जड़ को चावल के धोवन में पीसकर उसमें 15 से 20 मिलीलीटर श्वेत दूब का रस मिलाकर देने पर शीघ्र लाभ मिलता है। कुशा की जड़ स्त्री के बलाबल के अनुसार 5 ग्राम से 10 ग्राम तक ली जा सकती। विश्व प्रसिद्ध चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक ने भी दूब का पर्याप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। चरक संहिता के अनुसार श्वेत दूब का रक्त गर्भस्राव आदि रोग दोषों को दूर करता है। यह शिशु को गर्भाशय में मरने नहीं देता। महर्षि चरक के अनुसार सफेद दूब शिशु को दीर्घायु बनाती है, उसके मस्तिष्क को बल प्रदान करती है। संभवतः दीर्घायु के गुण को देखते हुए ही शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूब का पूजा की थाली में होना अनिवार्य माना जाता है। वैसे तो दूब घास हमेशा मिलती है, मगर वर्षा काल में अधिक मिलती है। फिर भी यदि आप चाहें तो इसे सुखाकर प्रयोग में ला सकते हैं। दूब को सुखाने के लिए उसे जड़ सहित उखाड़ें और बिना कोई हिस्सा तोड़े, अर्थात जड़, डंठल, पत्ती, फूल व फल सभी छाया में बिखेर कर पूरी तरह सुखा लें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आपने सुना दूब घास के औषधीय गुणों के बारे में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं खरीफ के मौसम में उड़द मूंग की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे किसान भाई खरीफ मौसम की जो हमारी फसलें हैं उनकी बुआई में लगे हुए हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हम धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं और हमने जो हरे चारे वाली फसलें हैं उनकी बुआई भी करती हैं और जो शेष रह गई है उसकी बुआई में हमारे किसान भाई लगे हुए हैं। किसान भाइयों, अगले महीने जुलाई में हमें खरीफ मौसम में जो हम दलहनी फसलों की खेती करते हैं, उड़द मूंग की बुआई करते हैं, तो वो भी करनी है। उड़द और मूंग की खेती कम समय में अधिक लाभ देने वाली प्रमुख दलहनी फसलें हैं। उत्तर भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में इसकी बुआई जुलाई के पहले पखवाड़े में की जाती है। खरीफ में मूंग और उड़द के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, अगर हम अच्छी किस्मों की बुआई करते हैं उड़द मूंग की, तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उड़द की जो अच्छी प्रजातियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं, शेखर 1, पंत उड़द 31, आजाद उड़द 1, WBU 108, T9, और जो मूंग की अच्छी प्रजातियां हैं वो हैं पूसा विशाल, पंत मूंग 4, सम्राट और PDM 54। तो किसान भाई, ये अच्छी प्रजातियां हैं उड़द और मूंग की, और हमारे किसान भाई इनको लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है, तो 10 से 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, यानी कि अगर हम बीघे की बात करें, क्योंकि हमारे किसान भाई कम ही क्षेत्रफल में उड़द और मूंग की बुआई करते हैं, तो अगर हम एक बीघे की बात करते हैं किसान भाइयों, तो लगभग एक बीघे में 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरीके से तैयार करना बहुत ही जरूरी है। खेत ऊंचा और समतल होना चाहिए और खेत में जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम ऊंचे और समतल खेत में उड़द और मूंग की बुआई करते हैं, तो बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। खरीफ में उड़द मूंग की बुआई का समय है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, ये सबसे उपयुक्त समय है। लेकिन हमारे किसान भाई पूरी जुलाई भी उड़द मूंग की बुआई करते हैं और बढ़िया उत्पादन हम ले सकते हैं। बुआई हमेशा लाइनों में करें, और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हमें रखनी है। बुआई से पहले बीज को उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए किसान भाइयों 2.5 ग्राम थीरम या कार्बन डाइजिम प्रति किलो बीज की दर से हम उपचारित कर सकते हैं। उड़द और मूंग की फसल से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी के दौरान प्रति एकड़ लगभग 15 किलो नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलो पोटाश का इस्तेमाल करें। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले किसान भाइयों बीज को राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर से उपचारित करना बेहद फायदेमंद होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, खरीफ की जो हमारी फसल है वो मुख्य रूप से वर्षा आधारित होती है, और बारिश ना होने की स्थिति में ही आवश्यकता अनुसार हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसमें हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर बारिश नहीं होती है तो फूल खिलने की अवस्था में किसान भाइयों हमें खेत में हल्की नमी बनाकर रखनी है, और उस समय अगर बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहले निकाई गुड़ाई करें और जो खरपतवार हैं उसको निकाल दें। खरीफ में उड़द मूंग में पीला मोजेक यानी कि चित्ती रोग और फफूंद जनित रोग का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट या इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और इस तरीके से हम जो है किसान भाइयों उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं और दलहनी फसलों से हम बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम अच्छी किस्मों की बुआई करते हैं उड़द मूंग की, तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आने वाले जुलाई महीने में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमें किसान भाइयों उड़द मूंग की बुआई करनी है, और बढ़िया उत्पादन हमें अपनी उड़द मूंग की फसल से लेना है। तो इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और खेती की बातों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज दोपहर 1:15 पर सुनिएगा कृषि निर्यात लाइव चौपाल। इस सजीव कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। सुबह 10:30 पर फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता प्रसारित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज श्रोताओं से बातचीत का विषय रहेगा आपातकाल और उसका प्रभाव।

घर संसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:15 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज क्रम होगा चिट्ठी थारे नाम की। शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्य।

कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे यंग अचीवर्स इशिका से रोमान की बातचीत, साथ ही क्रम होगा ये शाम गजलों के नाम।

कृषि जगत कार्यक्रम किसान भाई सुनेंगे आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में आज किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का लोकप्रिय फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियाँ आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे कव्वालियों का। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:18 होने को हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे।

0: इले कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली

0: विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
1: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला तो 2-3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा,
3: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी, समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
4: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे आशूरा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कल भी हल्की बारिश हुई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद

दूसरे के आंसू पोंछकर ही रिश्ते निभाए जाते हैं। एक दूसरे के आंसू पोंछकर ही रिश्ते निभाए जाते हैं। जो दूसरों के दर्द को समझे वही इंसान कहलाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान की असली पहचान इसी बात से होती है कि वो दूसरों के दर्द को कितना समझता है। आज 26 जून है और ये दिन हमें एहसास दिलाता है दूसरों के दर्द का, ऐसे लोगों की परेशानियों का जिन्होंने शारीरिक और मानसिक यातनाओं को सहा है। इन पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, यातना केवल शरीर को दिया गया दर्द नहीं होता, बल्कि ये किसी के मन, उसके आत्मसम्मान, यहाँ तक कि उसकी भावनाओं को भी गहरी चोट पहुँचाती है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि किसी भी इंसान के साथ अमानवीय व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्रोताओं, किसी भी समाज की मजबूती इस बात से तय होती है कि वो अपने कमज़ोर और पीड़ित लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि यातना झेल चुके व्यक्ति को केवल सहानुभूति ही नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की भी आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होगा कि हिंसा और यातना किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए ना तो खुद कभी भी हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए और ना ही यातना को सहना चाहिए। यानी जहां भी अन्याय दिखे उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाओ। आइए आज के दिन हम उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने यातना का दर्द सहा है, और उनके लिए बेहतर, सुरक्षित और सम्मानजनक दुनिया बनाने का प्रयास करें, क्योंकि उनकी आत्मा भगवान से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, कब तक वो लोग परेशान होंगे, कब तक उन्हें इसी तरह घुट घुट कर जीना होगा।

0: चलिए, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। अच्छा दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में सबसे ज़्यादा सुकून का वक्त कौन सा होता है? हम सभी जानते हैं कि सुबह का ही होता है, क्योंकि मौसम दिन की तुलना में ठंडा होता है। वरना दिन में तो खासी गर्मी होती है, घर में रहो तो ठीक, वरना बाहर निकलने पर हालत ख़राब हो जाती है। ये और बात है कि आज सुबह में भी काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। अब ऐसी गर्मी में एसी, फ्रिज वगैरह जैसे उपकरणों की उपयोगिता बढ़ जाती है श्रोताओं, क्योंकि फ्रिज में स्टोर करके हम खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रख पाते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि ज़रूरी दवाइयाँ, वैक्सीन वगैरह भी फ्रिज में सुरक्षित रहती हैं। इसीलिए आज का दिन खास है, क्योंकि आज 26 जून को मनाया जाता है विश्व प्रशीतन दिवस, यानी कि वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे। और आपको बताऊं, साल 2026 के लिए इस दिन की ग्लोबल थीम रखी गई है कूल इंटेलिजेंस। मतलब अब बात सिर्फ कूलिंग की ही नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए पर्यावरण को बचाते हुए समझदारी से कूलिंग करने की है। अब आइए एक दिलचस्प बात बताता हूँ। इस दिन को 26 जून को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जून 1824 को स्कॉटलैंड में एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन। साइंस के स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं इनके बारे में। इन्होंने ही तापमान को नापने के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यानी कि केल्विन स्केल का आविष्कार किया था। थर्मोडायनेमिक्स और कूलिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में लॉर्ड केल्विन के इसी महान योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन 26 जून को विश्व प्रशीतन दिवस के रूप में चुना गया। तो ये थी वजह जिस कारण 26 जून को विश्व प्रशीतन दिवस के रूप में चुना गया श्रोताओं, कि 26 जून को लॉर्ड केल्विन का जन्म होता है। अब कार्यक्रम में रुकते हैं कुछ जरूरी संदेशों के लिए।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
5: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
6: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
5: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
8: तो इंतजार किस बात का,
7: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
8: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
8: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
7: और हमारा ईमेल आईडी है
8: akashwaninajibabad@gmail.com।
7: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: इन कुछ संदेशों के बाद आइए अब बात करें एक ऐसे विषय पर श्रोताओं, जो हमारे समाज की प्रगति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये विषय है बढ़ती नशाखोरी, जिससे आज के दौर में सब कोई परेशान है। नशा नाश की जड़ है, इससे दूर रहें। कहने को ये सिर्फ 8 शब्दों की एक लाइन है, लेकिन जो इस दलदल में फंसता है वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देता है। शुरुआत अक्सर शौक से होती है, शौक में नशा करते हैं, दोस्तों के दबाव में आ जाते हैं तब नशा करते हैं, या सिर्फ एक बार चखने के बहाने से ये शुरुआत होती है, लेकिन कभी ये शौक एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। श्रोताओं, नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो या किसी ड्रग्स का हो, सबसे पहले इंसान की सोचने समझने की शक्ति को छीनता है। पैसे की बर्बादी तो होती ही है, लेकिन जो सेहत, इज्जत और अपनों का भरोसा टूटता है, उसकी भरपाई दुनिया की कोई दौलत नहीं कर पाती। तो आज 26 जून को नशा मुक्ति दिवस पर हम आपसे यही कहेंगे कि दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये हमें सिर्फ एक बार मिलती है। मुश्किलों से भागने के लिए या नकली खुशी के लिए नशे का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। मुश्किलों का सामना होश में रहकर कीजिए। यदि आपके आसपास कोई इस लत से जूझ रहा है तो ये भी करिए कि उससे नफरत मत कीजिए, बल्कि उसे सही इलाज, सही काउंसलिंग और अपनापन दीजिए, क्योंकि इसकी उसे ज़रूरत है। आज ही खुद से और अपने अपनों से एक वादा कीजिए कि हम नशे को अपनी ज़िंदगी में कभी दाखिल नहीं होने देंगे। याद रखिए श्रोताओं, आपकी ज़िंदगी में एक भरा पूरा परिवार है जो आपके पीछे है, और ये ज़िंदगी जो आपकी है ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये उस पूरे परिवार की है जो आपसे बेहद प्यार करता है। तो नशे को कहें ना और ज़िंदगी को कहें हाँ।

इस खूबसूरत से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। अब इस कार्यक्रम के सबसे अहम सेगमेंट तिथि विशेष का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे 26 जून के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, 1975 में 26 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। 26 जून 1838 को महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। वो प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। साल 1918 को 26 जून को ही जन्म हुआ था भारतीय सेना के वीर सैनिक राम राघोबा राणे का। उन्हें 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वो कर्नाटक के रहने वाले थे और भारतीय सेना में 28 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी थीं। साल 1995 में 26 जून को ही भारत के मध्य प्रदेश राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा गया था, क्योंकि पूरे देश में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या यहीं पर थी। आज के समय में भी पूरे देश के 20% के लगभग बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस राज्य में बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व समेत कुल 9 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। महान मराठी गायक और रंगमंच कलाकार बाल गंधर्व का जन्म भी 26 जून को ही सन 1888 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। खासतौर पर उन्हें अपनी गायकी और अद्भुत अभिनय कौशल के लिए याद किया जाता है। उन्हें बाल गंधर्व नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उनके गायन से प्रभावित होकर दिया था। सन 1916 में 26 जून को ही सिंधिया राजवंश के 7वें और ग्वालियर रियासत के अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का जन्म हुआ था। 1925 में पिता महाराजा माधव राव सिंधिया के निधन के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठे। 1941 में उनका विवाह राजमाता विजया राजे सिंधिया से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने ग्वालियर रियासत का भारतीय संघ में विलय स्वीकार कर राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1948 से 1956 तक वो मध्य भारत राज्य के प्रथम राजा प्रमुख रहे और 16 जुलाई 1961 को उनका निधन हुआ। सन 1498 में 26 जून को ही चीन में ब्रिसल वाले टूथब्रश का आविष्कार हुआ था। सुअर की गर्दन के सख्त बालों को बांस या हड्डी के हैंडल में लगाकर तैयार किया गया ये ब्रश आज के टूथब्रश का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ये तकनीक यूरोप पहुंची और समय के साथ

विकसित होती गई। और 1974 में 26 जून को ही अमेरिका के सुपरमार्केट में पहली बार बारकोड स्कैन कर किसी उत्पाद की बिक्री की गई थी। स्कैन किया गया पहला उत्पाद च्युइंगम का पैकेट था। इस घटना ने खुदरा व्यापार की तस्वीर बदल दी। बारकोड तकनीक से बिलिंग तेज, सटीक और अधिक सुविधाजनक बन गई। तो श्रोताओं, ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक खबरें जो 26 जून के इतिहास में दर्ज हैं। अब आइए रुक करते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों का। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 7.2 और 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप के दो झटकों से 164 लोगों की मौत, काफी लोग मलबे में दबे। नकली दवाओं पर वार, जीवन रक्षक टीकों और दवाओं पर अब QR कोड अनिवार्य। मरीजों की सुरक्षा और दवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्र ने वाणिज्यिक LPG की आपूर्ति पर लगी पाबंदियां हटाई। हॉर्मुज खुलने से मिली राहत, अब होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक उपभोक्ताओं को होगी पहले जैसी सप्लाई। बांग्लादेशी नागरिकों को फिर से पर्यटन वीजा देगा भारत। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में की घोषणा, आवेदन 28 जून से। अब ई स्कूटर को भी मिलेगी स्टार रेटिंग। ग्राहकों को खरीदने से पहले पता चलेगा कि कौन सबसे किफायती। सरकार ने जारी किया मसौदा। भारत जूनियर विश्व शूटिंग में शीर्ष पर, 25 पदकों के साथ किया विश्व चैंपियनशिप का समापन। फुटबॉल में विनीसियस के वार से स्कॉटलैंड पस्त। ग्रुप सी में शीर्ष पर रही 5 बार की चैंपियन ब्राजील की टीम। स्कॉटलैंड के पास अब भी टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंचने का मौका। और क्रिकेट में भारतीय बेटियों ने बांग्लादेश पर जीत से कायम रखी सेमीफाइनल की उम्मीद। T20 विश्व कप के अहम मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। तो ये थी कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। अब एक बार फिर से आपको संगीत की दुनिया में लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का ये अंक संपन्न होता है। हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
4: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
5: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
6: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
2: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
7: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बढ़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत। लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
10: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The government has also decided to reduce the diversion of C3, C4 streams to LPG pool. During the West Asia crisis, the government had issued orders under the Essential Commodities Act requiring C3, C4 streams to be utilized exclusively for LPG production, diverting them from petrochemical and other downstream uses to augment domestic LPG production. The enhanced allocation of C3, C4 streams for non-LPG uses will be implemented while ensuring that the domestic LPG availability remains unaffected and aggregate indigenous LPG production is maintained at not less than 40 TMT per day. The government has directed oil marketing companies to continue maintaining comprehensive data on commercial and industrial LPG consumers to facilitate efficient planning and supply management. It has reiterated its commitment to expanding PNG connectivity with Suparna, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
9: The government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees, and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees will be charged. For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. The National Testing Agency, or NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update the bank details is the 30th of this month. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in different parts of the country today. The day marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussein, and his companions who laid down their lives for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Taziyah processions will be taken out on the occasion. The majlis or religious meetings highlighting the supreme sacrifice of Karbala martyrs are also being organized. Elaborate security arrangements have been made on the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app.

0: for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockout round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैनुल-अक़वामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उम्दा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा अक़वामे मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की इक़्तिसादी उमूर की स्पेशल एडवोकेट से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक़्तिसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकत दार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने की खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था।

0: रोकथाम की कोशिशों का जायजा लिया जा सके और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब अमित शाह 2026 से लेकर 2029 तक के अरसे के लिए मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। सनती और कमर्शियल एलपीजी सारिफीन को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी तरह की बंदिशें हटा ली हैं और इसकी सप्लाई उसी सतह पर बहाल कर दी है जो मगरबी एशिया बहरान से पहले थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक बयान में कहा है कि बहरान शुरू होने पर बल्क एलपीजी की जो सप्लाई मुअत्तल कर दी गई थी उसमें बहरान से पहले की खपत की सतह की 50% की रियायत की गई है, जिससे कमर्शियल और सनती सारिफीन को काफी राहत मिली है। एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल ही में बेहतर होने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने एलपीजी पूल के लिए C3-C4 स्ट्रीम की मुंतकली को कम करने का भी फैसला किया है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान सरकार ने लाजमी खदमात के एक्ट के तहत अहकाम जारी किए थे, जिसकी रूह से C3-C4 स्ट्रीम को सिर्फ एलपीजी की पैदावार के लिए बरोकार लाने की बात कही गई थी ताकि अंदरून मुल्क एलपीजी की पैदावार में इजाफा हो सके। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि वो कमर्शियल और सनती एलपीजी सारिफिन के बारे में जामे डेटा बरकरार रखें ताकि मौसर मनसूबाबंदी और सप्लाई बंदोबस्त में सहूलत हो सके। सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी को वसत देने के अपने अहद को भी दोहराया है। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
0: इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए अबूरी आंसर कीज को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवारों को सहूलत फराहम की है। तलबा इस महीने की 28 तारीख तक 200 रुपए फी सवाल की फीस अदा करके इन सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कबूल किए जाने की सूरत में ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में सख्त कार्रवाई की है और 8 नामजद मुलजिमों और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पहली FIR दर्ज की गई है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। मजकूरा FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कृणीश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ तीनू का नाम मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ये केस उस वक्त रोशनी में आया जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चढ़ावे और चंदे की चोरी के इल्जामात सामने आए। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरखास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने की याद में साल भर चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब कल नई दिल्ली में हुई। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जाबिराना और मुतलकुल अनान निजाम हुकूमत ज्यादा दिन नहीं रहता और आखिरकार इसका खात्मा हो जाता है।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: 1975 की इमरजेंसी को 50 साल पूरे होने के सिलसिले में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था ताकि अवाम में जमहूरियत, आईनी अकदार और शहरियों के हकूक के ताल्लुक से बेदारी को तकवीत मिल सके। बैन अलावा माली फंड IMF ने कहा है कि मगरबी एशिया में हाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। IMF की प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए IMF के मुआसलात महकमे के डायरेक्टर

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, वो गीत हमने लिया है फिल्म सिलसिला से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शिवहरी का संगीत है और इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का ये खूबसूरत सा गीत। संगीत शिव हरी का था और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म शिकार से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब इस कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म नसीब से लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में ये गीत, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नसीब से ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म लावारिस से। प्रकाश मेहरा के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
7: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
7: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
7: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में अब वक्त है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेताब से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। RD बर्मन का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

0: फिल्म बेताब के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में ज़िले की हलचल पेश की जाएंगी।
1: मीडियम वेव 401.6।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को करो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है।
3: करें योग, रहें निरोग, और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेंटल हेल्थ के समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
2: उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न हुई। पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेन्द्र चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी आदान,
4: स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है।
2: आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के पी इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान, जवान, महिला स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दीघाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
5: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है।
1: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर लाभार्थियों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया,
7: जो हमारे जमीन में ट्रेनिंग 2 में 3 1 में हो गई है, हमें पूर्ण भूमिधारी का अधिकार मिल गया है, इसमें हम लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें जो प्रमाण पत्र दिए और हमें खतौने दिए, हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
6: मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विभाजन विभीषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकास परक योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंघाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया,
8: परंपरागत स्थान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित, अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी आगरा और
9: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में हमारी आज की पेशकश है कलाकार पुष्पा रानी और मधु राकेश के गाए लोकगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार पुष्पा रानी और मधु राकेश के स्वर में लोकगीत। तो आइए आनंद लेते हैं अगले लोकगीत का।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप आनंद ले रहे थे कलाकार पुष्पा रानी और मधु राकेश के गाए लोकगीतों का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज सुबह 10:30 पर कार्यक्रम जागरूक श्रोता प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज श्रोताओं से बातचीत का विषय रहेगा आपातकाल और उसका प्रभाव। तो इस कार्यक्रम में हमें कॉल करके आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9457078288। नंबर पुनः सुन लीजिए, 9457078288। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित व्हाट्सएप संदेश और पत्रों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नमित राज और मेरे साथ हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज नमित राज जी के साथ और हमारे सभी श्रोताओं के साथ हूं मैं आपकी दोस्त अलका सिंह।
0: तो अलका, देखिए एक बड़ा ही ऐसा कार्यक्रम है जिसका जो हमारे श्रोता हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है, कार्यक्रम को जल्दी से शुरू करना है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें कार्यक्रम में जो हमारे नए श्रोता जुड़ रहे हैं उन्हें बताना है कि हमारा कौन सा नंबर है जिस पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम का हिस्सा हमारे श्रोता बन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको लिखकर भेजना है अपना नाम, पता और अपनी पसंद का गीत, और भेज देना है हमारे नंबर जो है 9457078288 पर। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9457078288 पर आपको हमें मैसेज लिखकर भेजने हैं। तो जल्दी कीजिए और तब तक नमित जी हम पढ़ लेते हैं हमारे श्रोताओं के मैसेज।
0: जी अलका, ये पहला जो गीत हमें सुनने की फरमाइश हमें की है, तो ये गीत फिल्म आबरू का है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का गीत है, बड़ा खूबसूरत गीत है। और इस गीत के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता जिनके नाम हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला जो व्हाट्सएप संदेश हमें मिला है, ये नाम हमारे इन श्रोता ने नहीं लिखा है।
1: ये लिखने वाले हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से लिख रहे हैं आफरीन खान, जमीर खान और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप।
1: अगला मैसेज हमें लिखकर भेज रहे हैं प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया और जालना शहर से लिख रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव।
0: इसी गीत के ख्वाहिशमंद हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
1: इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से लिख रहे हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही जिंदल परिवार।
0: ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से फरमाइश करता है राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
1: अगली फरमाइश हमारे पास इस गीत के लिए आई है गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी और बेबी वामिका और वाणी थांडी।
0: शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात, अदीब और कादिर चौधरी।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव फरांसी जिला हिसार से लिख रहे हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती कुमारी और ओम कुमार।
1: गांधी चौक रोपार पंजाब से महा हरदेव मीका बलविंदर वीरक जय तेग वीरक और मीका वीरक।
0: और इस गीत की अंतिम फरमाइश मगनपुर झारखंड से हमें लिखकर भेजी है। आप हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और इनके सभी मित्रगण। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आबरू फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और हमारे पास नमित जी निरंतर मैसेज आ रहे हैं हमारे श्रोताओं के,
1: बहुत स्पीडली सारे ही मैसेज हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो
0: पहले पहला मैसेज
1: जी बिल्कुल
0: ये भेजा है हमें, लिखने वाले हैं राजधानी रायपुर से नीलू, मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। अगला मैसेज हमें लिखकर भेज रहे हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, लिख रहे हैं बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेवी आराध्या। अगला मैसेज हमें भेजा है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। ये मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। अगला मैसेज हमारे पास आया है नमित जी जो हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राजशी राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का।
1: ग्राम नजीमपुर जिला बिजनौर से ये पत्र हम बीच में ले रहे हैं, ये पत्र हमें भेजा है योगेश कुमार, उमेश देवी, पूर्णिंदु और अर्धनेंदु ने। ग्राम नंगला उभन नजीबाबाद जिला बिजनौर से आप हैं ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और इनके परिवार के सभी सदस्य। एक पत्र हमें फतेहपुर नौबाद बिजनौर से भी प्राप्त हुआ है, आप हैं बिजेंद्र कुमार उर्फ बिंदे, कुड़िया देवी, प्रीत, सिमरन और दीपांशु। तेलंगाना निज़ामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। और दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।
0: अगला मैसेज हमें भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, पा ढिंगिया। अगला मैसेज हमारे पास आया है दंतरेंगी से, लिखने वाले हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। अगला मैसेज हम भेज रहे हैं ग्राम अमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और ये अंतिम मैसेज हमारे पास आया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिदा गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और टुकटुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर।
1: श्रोताओं आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मुगले आजम का खूबसूरत गीत जो लता मंगेशकर की आवाज़ में है
0: जी,
1: और तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत जी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वागत है एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का। और नमित जी, अगला गीत जो हम हमारे श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं उसकी फरमाइश हमें आई है। और गीत जो है वो हम पहले बता देते हैं, जो है हमने लिया है फिल्म कल की आवाज से। इसे आवाज दी है कुमार सानू और आशा भोसले ने। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से। लिखने वाले हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और मोहम्मद जैन, जन्नत और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगली फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम गाधा रोना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। मदन गिरी, विमला गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधु गिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी की। मेन जिला मुरादाबाद, ग्राम ध्यानपुर, साबिर अली से ये लिख रहे हैं, अली बोल रहा हूँ, और ये मैसेज कर रहे हैं और अपनी पसंद का गाना सुनवाना चाहते हैं और इन्होंने सिर्फ अपना ही नाम लिख कर भेजा है। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है मंसूरी, रेडियो लिसनर्स क्लब से, बाजार रोड, मंगीसापुर से। ये लिख रहे हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी की। अगली
4: इसी गीत को सुनना चाह रहे श्रोताओं उड़ीसा से विजय, विपिन, ममता, सुनेली और मिति ने। तो आपकी फरमाइश को भी हम पूरा कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ अन्य श्रोताओं के नाम और शामिल कर रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है फाजिल का पंजाब से। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, आरबी खेड़ा, टिवांची खेड़ा, शालिनी खेड़ा, जीवन बुक, लाडी खेड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आप हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा।
3: गांव जौखोल राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। लिखने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता।
4: और इस गीत की अंतिम फरमाइश श्रोताओं कासगंज से हमें मिली है मास्टर राधे श्याम शाक्य
3: और इनके परिवार
4: के सभी सदस्यों की। तो लीजिए श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको कल की आवाज फिल्म का ये गीत।
3: आवाज ये कुमार सानू और आशा भोसले की।

0: श्रोताओं, कल की आवाज़ फिल्म से एक खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और आशा भोसले के युगल स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत जो आप लोगों ने सुनना चाहा है वो है फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौड़वाल और उदित नारायण की, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये श्रोता जिनके नाम हम अब पढ़ रहे हैं। जनकपुरी सहारनपुर से आप हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश हमें भेजी है मोहल्ला फरमान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने।
1: इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है कोह का भिलाई से। लिखने वाले हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल की। अगला मैसेज हमारे पास आया है शिवाजी नगर भटिंडा देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर खोबरखेड़े, इंदिराताई खोबरखेड़े, कुलीताई खोबरखेड़े, खंडवी बुलढाणा से दीपावली रामधाड़े और स्वराज रामधाड़े की। थिलोरी अमरावती से लिख रहे हैं सुनैना पवन भोड़े, तनुज पवन भोड़े। अगली मैसेज हमारे पास है सप्तरंग श्रोता परिवार से कुम्हार गली श्रीरामपुर से। लिखने वाले हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जवीका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से आप हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। और इस गीत की अंतिम फरमाइश हमें लिखकर भेजी है आप हैं कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रीतिशा संधू और मैक्स।
1: तो चलिए इन सबकी फरमाइश पर सुनवा देते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का ये प्यारा सा गीत, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने।

0: वहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जागरूक श्रोता।
1: जागरूक श्रोता सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा, मेरा यानी अलका सिंह और मेरे
0: नमित राज का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज देखिए कार्यक्रम हमेशा से खास रहा है अलका
1: जी।
0: और इस कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो कार्यक्रम में कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, हमसे बात करते हैं, अलग अलग विषय अलग अलग दिन पर रहते हैं
1: जी।
0: तो हमेशा से खास रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा खास हम इसलिए इसे कह सकते हैं क्योंकि आज का टॉपिक बेहद खास है
1: जी।
0: आज। श्रोताओं हम इस कार्यक्रम में आपसे बात करने जा रहे हैं आपातकाल और उसके प्रभावों के बारे में कि उसके क्या प्रभाव देखे गए। और
1: बात करेंगे हमारे श्रोताओं से इसी विषय पर कि
0: जी
1: वे इस विषय में कितने जागरूक हैं और क्या क्या जानकारी उनके पास है ना। तो नंबर हम पहले बता देते हैं हमारे श्रोताओं को।
0: जी बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9457078288 पर। तो आपको जल्दी से लगा देनी है कॉल। और हमारा एक नंबर और है मनमित जी,
0: जी
1: जो है 0341-230-105।
0: तो नंबर अलका ने आप लोगों को बता ही दिए हैं श्रोताओं, अब जल्दी से मतलब देर बिल्कुल मत कीजिए, कॉल हमें करना शुरू कीजिए। और हम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको ये अवश्य बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से आपातकाल की ये बात हो रही है अलका। तो देखिए हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला 1962 में लगा था जब भारत चीन का युद्ध हुआ था
1: जी।
0: दूसरा लगा था 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और तीसरा लगा था 1975 में जो जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं जो आंतरिक अशांति के चलते लगाया गया था
1: संविधान हत्या दिवस के संदर्भ में
0: जी। तो एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं
1: तो ले लेते हैं उन्हें लाइन पर।
0: जी बिल्कुल।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हाँ हेलो।
1: हेलो नमस्कार सर।
2: जय हिंद।
1: जय हिंद सर। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं हिराकुंड चौड़ वाला से जगदीश चंद खरदोनिया बोल रहा हूँ।
1: जगदीश चंद जी कैसे हैं आप?
2: ठीक है।
1: और आपके घर परिवार में सब कैसे हैं?
2: सब सही हैं।
1: तो जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आपातकाल की।
2: हाँ।
1: तो जगदीश जी आप बताना चाहेंगे कि आपातकाल होता क्या है?
2: आपातकाल कोई परेशानी में कोई परेशानी होती है ना, जैसे किसी को परेशानी होती है उसका आपातकाल लगा दिया जाता है, जैसे लॉकडाउन लगा था।
1: लॉकडाउन थोड़ा अलग होता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि ऐसी अचानक से एक स्थिति, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें जान माल का खतरा होता है या उसको टालने की आवश्यकता होती है। इस दौरान सरकार देश को बचाने के लिए कुछ समय के लिए आम लोगों के मौलिक अधिकारों जैसे घूमने या बोलने की आजादी पर रोक लगा सकती है और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकती है जिससे कि देश में कोई गलत गतिविधियां ना हो और हमारे देश में शांति बनी रहे।
2: आपातकाल लगाया था
1: जी।
0: जगदीश जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र

0: में जगदीश जी ने अपनी बात खत्म कर दी है
1: जी बिल्कुल। तो देखिए अलका लाइन में हमारे अन्य श्रोता भी हैं, तो
0: जी,
1: उनको
0: तो
1: लाइन में
0: बहुत
1: लेते
0: बहुत
1: हैं।
0: धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। हेलो जागरूक श्रोता,
2: नमस्कार अलका मैडम और हमारे नमित राज जी को भी, इस यंग जोड़ी को प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी प्यार भरा नमस्कार।
2: और
0: कौन?
2: साथ में जो रात कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी उनका अंदाज बहुत अच्छा था, उनको भी बधाई देता हूँ आपके द्वारा।
0: धन्यवाद सर। तो कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं ग्राम जुझेला
0: जी,
2: थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी राशिद जी, कैसे हैं आप?
2: सब खैरियत से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे आकाशवाणी पर।
0: जी बिल्कुल। तो जैसे कि राशिद जी आप जानते ही हैं, आज हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। अच्छा, तो हम आपसे बहुत सरल सा प्रश्न करने वाले हैं, ये बताइए आपातकाल की घोषणा कौन करता है?
2: आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं हम,
0: जी,
2: और वो भी करते हैं संसद के अनुरोध पर।
0: जी जी जी देखिए हमारे
1: बिल्कुल,
0: श्रोता बिल्कुल
1: हमारे
0: जागरूक है ना वीर
1: बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल।
2: और मैडम मैं बताना चाहता हूँ कि आपातकाल को आम भाषा में इमरजेंसी कहते हैं,
0: जी
2: तो
0: बिल्कुल
2: सारे
0: सही कहा
2: श्रोता जो
0: आपने।
2: है आसानी से समझ जाएंगे कि इमरजेंसी क्या है।
0: जी
2: और ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है, वो तीन स्थितियों में जो है राष्ट्रपति लगा सकते हैं।
0: जी क्या बात है, तो बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को वो स्थिति कौन कौन सी होती है?
2: जी, देखिए एक तो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय
0: जी,
2: वो आर्टिकल 352 में, 352 में
0: जी
2: वो युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय लगाया जा सकता है या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए।
0: जी
2: दूसरा जो इमरजेंसी लगाई जाती है राज्य आपातकाल में लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन वगैरह हो जाए।
0: जी
2: और तीसरा जो है वो वित्तीय आपात में लगाई जा सकती है कि देश में धन का संकट,
0: जी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए।
2: जी हाँ, अनुच्छेद 360 में।
0: जी
2: और तो हमारे देश में अभी तक राष्ट्रीय आपात तो तीन बार लग चुका है।
0: तीन बार लग चुका है, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और इसमें जो है राष्ट्रीय आपात, आज का टॉपिक जो है आपका यह है कि आपातकाल के बाद की जो है स्थिति क्या होती है।
0: जी
2: तो इसमें जो है आम जनता के मौलिक अधिकारों को जो है छीन लिया जाते हैं उनमें। जैसे ये फंडामेंटल राइट होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार,
0: जी
2: फ्रीडम और रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, एजुकेशन राइट, संस्कृति, शिक्षा संबंधी और सोशल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, ये संवैधानिक उपचारों को छीन लिया जाता है।
0: देखिए नवीन जी हमारे श्रोता बहुत जागरूक हैं।
1: बिल्कुल बहुत जागरूक हैं और बहुत ज्यादा
0: सरल
1: मतलब
0: शब्दों में भी इन्होंने समझा दिया है हमारे श्रोता भी।
1: बिल्कुल। और राशिद जी की अलका मैं बात कहूँगा कि राशिद जी बहुत ही पुराने हमारे श्रोता हैं, और क्योंकि वो जो उनका पेशा है वो एक अध्यापक है,
0: अध्यापक है
1: जी,
0: जी,
1: तो पढ़ाते हैं तो इसलिए नॉलेज
0: वो
1: भी उनकी
0: समझ
1: काफी
0: में आता
1: अच्छी
0: है
1: है।
0: कि कितने सरल शब्दों में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी तो
2: और सरल शब्दों में नमित राज में समझाना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे कानून बना देती है जो सामान्य स्थिति में नहीं बना जा सकते हैं।
1: जी अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा राशि जी आपसे कि हम क्योंकि बात कर रहे हैं 1975 में जो आपातकाल लगा था, तो ये किस लिए लगा था, मतलब रीज़न क्या था उसका?
2: इसका रीज़न ये था कि जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय की,
1: जी
2: उनके अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं।
1: अच्छा,
2: तो 25 जून को उन्होंने आपातकाल लगा दिया था, तो सारी शक्तियाँ जो है सरकार के हाथ में आ गई थी।
1: जी
2: और उसी को जो हम आज काल दिवस मनाते हैं, जैसे आपने कल हमारा टॉपिक भी था
1: जी,
2: सुबह के समय सूरज के साथ साथ में, सरकार कुछ भी कर सकती है।
1: जी आपने जो मतलब अपनी जो आपको नॉलेज है उस हिसाब से आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। लेकिन जो आपातकाल लगा था वो लगा था आंतरिक अशांति के लिए। दरअसल क्या हुआ था कि जो एलिगेशन लगे थे इंदिरा गांधी जी पे, तो वो ठीक है उसका कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस दौरान जो विपक्षी दल थे उन्होंने काफी ज्यादा हड़ताल वगैरह उस दौरान हो गई थी अलका, और उस चीज से
0: आर्थिक
1: उस
0: तंगी भी
1: हाँ
0: देश में
1: तो
0: रही
1: उस
0: थी।
1: स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल लगा था कि ऐसा डर था कि कुछ आंतरिक अशांति यहाँ पे देश में फैल सकती है।
2: यहाँ जैसे राष्ट्रीय आपात यही था कि सशस्त्र विद्रोह या कुछ भी हो सकता है।
1: बिल्कुल
2: अशांति,
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा राशि जी आपसे बात करके,
0: बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। तो नमित जी देर नहीं करते हैं और हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं, तो
1: जी
0: ले
1: बिल्कुल
0: लेते हैं अगली कॉल।
1: बिल्कुल। हेलो जागरूक श्रोता, हेलो,

0: लगता है हमारे श्रोता हमें सुन नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, जब तक कि हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़े।
1: जुड़ गए हैं,
0: हेलो जागरूक श्रोता,
1: कनेक्शन में लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है नवीन जी।
0: जी तो जब तक हमारे श्रोता हमसे जुड़ नहीं जाते तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अलका देखिए, आपातकाल के बारे में कि आपातकाल क्यों लगा था, ये तो हमने अभी जब राशिद जी से बात कर रहे थे वो हमने बताया,
1: जी
0: और उसके क्या प्रभाव रहे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा बनती है।
1: बिल्कुल
0: तो देखिए, अगर इसके प्रभावों के बारे में हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे पर पड़ा था, और इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में कड़ा अनुशासन देखा गया था।
1: बिल्कुल, और सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी बढ़ी थी,
0: जी
1: लेकिन दूसरी तरफ नागरिकों को आम अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीमाएं लगाई गई थीं।
0: बिल्कुल, तो ये कुछ प्रभाव थे श्रोताओं। इस बीच हमें एक कॉलर और जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो जागरूक श्रोता
2: हेलो जागरूक श्रोता,
0: जी, कौन सा बात कर रहे हैं?
2: ये मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: मध्य प्रदेश से तोमर जी बात कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर जी।
0: हम आपसे बातों को शुरू करें उससे पहले आपकी उम्र जानना चाहेंगे।
2: मेरी उम्र है 75 वर्ष।
0: 75 वर्ष, तो बिल्कुल
2: जी
0: आप इस जो हमारा टॉपिक है आज उसके बारे में सही से बता पाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में, उस दौरान क्या
2: जी
0: स्थिति बनी थी इंडिया में?
2: उस दौरान सारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था।
0: जी
2: ऐसी देश में कोई स्थिति नहीं थी, न कोई संवैधानिक संकट था, न कोई आंतरिक कलह थी, न कोई बाहरी दुश्मनों ने आक्रमण किया था देश पे। केवल गद्दी बचाने के लिए उस समय आपातकाल लगाया गया। उस समय इसके इतने बुरे प्रभाव पड़े,
0: जी
2: लोगों को जबरन जेल में बंद कर दिया गया, जबरन फैमिली प्लानिंग लागू किया गया लोगों पे। इसके लोगों की भावनाएं आहत हुई और बहुत बुरा ही असर पड़ा उस समय आपातकाल का।
0: जी अच्छा, तोमर जी देखिए, हर सिक्के के दो पहलू
1: पहलू
0: होते हैं, तो
1: होते हैं
0: कुछ कुछ चीज़ें अगर कुछ भी कोई फैसला सरकार ले रही है तो उसका कुछ फायदा पहुंचता है, कुछ नुकसान पहुंचता है, तो हम जानना चाहेंगे कि उस समय सकारात्मक क्या कुछ हुआ था।
2: सर जी। सकारात्मक मेरी समझ में तो कुछ नहीं हुआ था। मैं तो उस समय कॉलेज लाइफ से छूटा ही था, बस आखिरी समय था कॉलेज लाइफ का।
0: जी तो
2: मेरे हिसाब से कुछ सकारात्मक,
0: वो तो फिर एज आपकी ऐसी थी ना, उस समय तो और भी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं।
2: जी
0: जी
2: तो सकारात्मक तो मुझे तो कुछ नहीं दिखाई
1: तो
2: दिया
1: तोमर
2: उसमें
1: जी,
2: सर
1: हम आपसे
2: जी।
1: जानना चाहेंगे आपातकाल के समय, जैसे कि आप अपने कॉलेज टाइम में थे, तो उस समय की स्थिति कैसी थी, आपके आसपास का जो माहौल था, जैसे आप अपने दोस्तों वगैरह से बातें करते थे, या मतलब निकलने का आप निकल पाते थे बचकर, कि आप भी उस आपातकाल में मतलब जो है सारे नियम मानते थे।
2: नहीं, नियम तो मैं मानता था लेकिन बच
1: जी
2: के मुझे कोई प्रतिबंध नहीं था। जो लोग नेता थे उनके लिए प्रतिबंध था, वो नहीं निकल पाते थे, जबरन
1: जी
2: उन्होंने जेल में बंद कर दिया गया था सभी को।
0: जी
1: जी
2: जैसे जयप्रकाश जी जैसे नेता थे हमारे, कई नेता बंद कर दिए गए थे, क्या नाम गिनाऊं। तो उस समय सब कुछ वैसे तो शांति थी, कर्मचारियों पे नियंत्रण था, ऑफिस समय से खुलते थे, ये बस सकारात्मकता थी। ऑफिस समय पर खुलते थे, लोग अच्छे ढंग से काम करते थे, लेकिन मौलिक अधिकार बिल्कुल है ना हो चुका था मौलिक अधिकारों
1: वो
2: का।
1: आपातकाल की विशेषता यही होती है कि कुछ समय के लिए मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं ताकि जनता विद्रोह ना कर सके या कोई ऐसी स्थिति ना आ सके जो नियंत्रण से बाहर हो जाए।
0: अच्छा देखिए, बातों से
2: जी
0: ही बात निकलती है अलका।
1: जी
0: हमारे जो श्रोता हैं तोमर जी,
1: जी
0: उन्होंने आपातकाल के समय जो बुराइयां थी उसकी वो बताई हैं,
1: जी और अच्छाई भी
0: लेकिन
1: बताई है
0: लेकिन हाँ, लेकिन उन्हीं
1: कि
0: की बात से निकल कर आ रहा है कि सरकारी कार्यालयों
1: कार्यालय
0: में जो है
1: से
0: अनुशासन बढ़ा था, थोड़ी सी सख्ती थी जिसकी
1: जी
0: वजह से अपराधों में कमी आ गई
1: कमी
0: थी,
1: आई।
0: है ना? तो ये सकारात्मक चीज़ हो
2: जी
0: सकती है। और इसके अलावा जो फैक्ट था वो ये था कि हड़ताल जो उस समय हो रही थी उस पर रोक लगी थी, उसकी वजह से क्या हुआ
1: जी
0: कि जो लोग हड़ताल में मतलब
1: काम को
0: खेती
1: छोड़
0: खेती
1: रहे
0: बाड़ी
1: थे।
0: छोड़कर हड़ताल का हिस्सा बन रहे थे तो वो वापस अपने काम पर पहुंच गए थे, और इस वजह से देश में जो उत्पादन था उसमें वृद्धि हुई थी, साथ ही जो महंगाई उस दौरान बढ़ गई थी उस पर कमी आई थी।
2: उसमें अंकुश लगा था, ये
0: जी
2: बात कुछ हुई थी, अच्छी बातें हुई थी कुछ।
0: जी तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके तोमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: तो नमित जी, हमारे पास अगली कॉल आ रही है,
0: जी
1: ले लेते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: लीजिए।
1: हेलो जागरूक श्रोता,
3: हेलो जागरूक होता,
1: नमस्कार सर।
3: नमस्कार जी, नमित राज जी और अलका सिंह को मेरी नमस्कार।
1: जी आपको भी। कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
3: मैं ग्राम गाधरोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
1: मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम जागरूक श्रोता में।
3: जी जी जी, और विषय मुझे पता है
1: जी,
3: और मैं बताना चाहता हूँ आपके पूछने से पहले ही
1: जी,
3: 25 जून 1975 में वो काला दिन था जब हमारे ऊपर आपातकाल थोपा गया। इस दिन को हम भूल नहीं सकते, और जो जायती हुई नागरिकों के साथ, नेताओं के साथ, वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। हमारे बड़े बड़े नेताओं को, जिन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए संघर्ष किया, और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता को, जिन्होंने अंग्रेजों की जेल तोड़कर जो चले गए थे, भाग निकले थे, और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल में क्या, काल कोठरी में डाला गया। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, चंद्रशेखर जैसे नेताओं को इस प्रकार यातना दी गई
1: जी।
3: जो मैं आज सोच भी नहीं सकता। हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ नेता अपने नेताओं को आगे आने वाले को, कि जो हुआ है वो भविष्य में न हो, मैं यही कामना करता हूँ। सद्बुद्धि दे हमारे नेताओं को, कि जो काला अध्याय 25 जून को शुरू हुआ था और 21 मार्च और 1977 में जो समाप्त हुआ, और हमने जो है चैन की सांस ली, तो मैं तो यही कहूँगा, ये बहुत ही बुरा वक्त था और बहुत ही बुरे दिन थे जब लोगों को जेलों में और नसबंदी कराई गई, जबरदस्ती युवाओं की, अविवाहितों की नसबंदी की गई। बहुत ही बुरे दिन थे
1: जी।
3: तो मैं नमित राज जी और उनका सिंह जी को यही, आपके माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति फिर हमारे देश में न हो, यही मेरी प्रार्थना।
0: अच्छा मदन गिरी जी, हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि उस समय नसबंदी कराई गई थी, और ये बड़ा एक व्यापक मुद्दा बन गया था, बहुत ज़्यादा विवादास्पद भी रहा था, तो इस, क्योंकि आप हरिद्वार के रहने वाले हैं और आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपकी उम्र भी काफ़ी है, उस दौरान आपने काफ़ी कुछ देखा है, तो आप उस समय की हकीकत बताइए कि क्या कुछ हुआ था उस समय?
3: जी, उस समय लोग इतने डरे हुए और सहमे हुए थे
0: जी,
3: कि अगर गांव में गाड़ी आ जाती थी, मेरे ध्यान है
0: जी,
3: मैं छोटा भी नहीं था और बड़ा भी नहीं था,
0: हाँ जी,
3: लेकिन मेरे बिल्कुल ध्यान है, अच्छी तरह ध्यान है आपातकाल, तो जब उसकी गाड़ी आ जाती थी पुलिस की
0: जी,
3: तो लोग डर के मारे सहम कर और घरों में घुस जाते थे। बड़ा ही डरावना उस समय दृश्य था, बड़ा ही
0: डरावना दृश्य था। लेकिन जैसे हम नसबंदी के बारे में बात कर रहे थे, उसके पीछे क्या रीजन क्या देते थे वो, जैसे आपने कहा कि पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई,
1: और क्या नियम उन्होंने बनाए थे कि नसबंदी
0: उसका, हाँ, जनसंख्या का कारण दिया गया या क्या दिया गया?
3: जनसंख्या का ही कारण दिया गया है उस समय, तो वैसे अब तो दुगनी हो गई है, 62 करोड़ जनसंख्या थी उस समय
0: जी,
3: ये आपातकाल लगाया गया, 62 करोड़ थी, 1 अरब 40 करोड़ हो रही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: दुगनी थी, लेकिन कर्मचारियों को टारगेट दिया गया, पटवारी, डब्ल्यू सेक्रेटरी और जो बाबू थे, मैं उन्हें उन्हें कहा गया कि इतने तुम्हें जो है देने हैं
1: जी, उनको टारगेट दिया जाता था कि आपको इतने लोगों की नसबंदी करानी है,
3: हाँ जी, इतनी करवानी चाहिए, इतनी करवानी है तुम्हें
1: जी।
0: मुख्य चीज ये है कि लोग चाहते नहीं थे, लेकिन उनकी जबरदस्ती कराएगी तो
3: ये,
0: हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा मदन गिरी जी आपसे बात करके, आपने अपने विचार साझा किए हमसे।
1: और नमित जी कॉल हमारे पास अभी भी आ रही है, ले लेते हैं अगले कॉलर को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, श्रोता इंतजार कर रहे हैं आपका।
4: हेलो
0: हेलो, जागरूक श्रोता
4: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन सा बात कर रहे हैं
4: जी? प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
4: जी
0: जी, बहुत
4: नागदा जिला उज्जैन से,
0: जिला उज्जैन से आप बात कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में
4: जी। तो मैं बताना चाहूंगा सर, आपातकालीन के बारे में जब श्रोता बता रहे हैं, सभी अलग अलग राय बता रहे हैं
0: जी
4: जी, तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमने ऐसी आपातकालीन स्थिति नहीं देखी है, और मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे देश में अभी कभी भी ऐसी आपातकालीन स्थिति ना आए।
0: अच्छा, आप अपनी बात रख रहे हैं, उस मतलब बीच में रोकते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये कार्यक्रम जागरूक श्रोता है और इसमें हम जानते हैं कि हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं, तो अलका एक दो सवाल हो जाए सर से।
1: जी, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे प्रेम सिंह जी कि आपातकाल के बाद किसकी सरकार बनी थी, क्योंकि उस समय आपातकाल हो चुका था और ये उस समय थी भी नहीं, लेकिन आपातकाल हटाने के बाद भी क्योंकि सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ था और हम जानना चाहेंगे कि किसकी सरकार उस समय आई थी।
4: जी अलका जी, मुझे इस बारे में याद नहीं है, बट मुझे ना ये कार्यक्रम में सुन रहा था मोबाइल ऐप पे, तो श्रोता अपनी अपनी बात रख रहे थे, कुछ मतलब बताया श्रोता ने कि कैसी स्थिति उस समय पे हो गई थी, बस इसीलिए मैंने कॉल लगाया था।
0: बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत बहुत सही है।
1: हम बता देते हैं 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद आम चुनाव हुए और जिसमें कांग्रेस की हार हुई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया था और मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
4: जी,
1: तो हमारे सभी श्रोता भी समझ गए होंगे कि आपातकाल के बाद भी स्थिति निरंतर में आ गई थी और सरकार बदल चुकी थी।
4: जी बिल्कुल,
0: और कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे सर?
1: चलिए नमित जी, कॉल हमारे पास अभी भी आ रही है, ले लेते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो जागरूक श्रोता।
0: हेलो जागरूक श्रोता, हेलो
5: हेलो,
0: कौन सा बात कर रहे हैं?
5: सर जी नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से बोल रहा
0: हूँ। जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अंसारी जी, आज कार्यक्रम आप सुन रहे हैं?
5: जी हाँ, कार्यक्रम आपका चल रहा है मेरे रेडियो शहर पर। जी, आप तालीम के विषय में आप लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा विषय है।
0: जी,
5: और कभी कभी क्या अक्सर ये होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो एक ही पहलू के बारे में सोचते हैं, दूसरे पहलू के बारे में नहीं सोचते हैं।
0: बिल्कुल,
5: तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई भी काम करें, चाहे वो अपना घर बनाए, चाहे कोई चीज खरीदे, तो हमें दूसरे पहलू के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर हमारा किसी वजह से काम बिगड़ता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे।
0: बिल्कुल सही बात।
5: तो अगर ये सारी बातें हमारे जहन में होंगी तो आपातकालीन अगर स्थिति हमसे पड़ भी जाएगी, आ भी जाएगी, तो हम उससे निपटने के लिए ज्यादा हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
5: सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, चाहे वो घर का निर्माण करें, चाहे वो कोई भी ऐसा काम करें, तो एक मतलब ऐसा एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उसकी पहले से ही तैयारी कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा।
0: देखिए, अब जैसी स्थिति, उस जैसी स्थिति हो सकता ना आए, क्योंकि कुछ नियम कायदे बदले गए उसके बाद, संविधान में संशोधन हुए, तो इजीली आपातकाल कोई भी सरकार नहीं लगा सकती है। हाँ, जैसे आपने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये हो सकता है कि जैसे आपातकाल, कुछ हमारे श्रोताओं ने ये कहा कि सीधे सीधे इंदिरा गांधी जी को दोष दे दिया, तो ऐसा नहीं था। देखिए, कोई भी सरकार कोई भी डिसीजन अगर लेती है तो उसमें उस समय की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, तो जो भी
5: जिस तरीके की परिस्थितियां होती हैं उसी हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाता है, उसी हिसाब से काम किया जाता है।
0: बिल्कुल, तो उस समय क्या परिस्थितियां रही हैं ये हमें नहीं पता है। और दरअसल 1973 या 74 के आसपास एक्चुअली क्या हुआ था कि एक तो तेल संकट हो गया था और तेल की कीमतें जो हैं एकदम से बढ़ गई थी और अकाल भी पड़ा था उस दौरान, तो देश में कुछ चीज़ें चल रही थी पहले से और उसकी वजह से भी दिक्कतें आई, महंगाई जो है लगभग 20% हल्का बढ़ गई थी उस दौरान। तो इस ऐसे समय में स्थिति को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, तो क्या परिस्थितियां रही ये हमें नहीं पता उस समय, क्यों आपातकाल लगाया गया था।
1: और अंसारी जी, इस दौरान एक सकारात्मक प्रभाव ये भी बोल सकते हैं कि उस समय भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों, लोकतंत्र की कीमत समझाई गई। इस दौरान देश की न्यायिक, न्यायपालिका, मीडिया और आम जनता अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक और सशक्त होकर उभरी थी।
5: जी, एक बात और मैंने मतलब खबरों में पढ़ी थी कि जैसे मान लीजिए तेल संकट आया था, तो उस समय में उस संकट से निपटने के लिए कोयले पर ज्यादा ध्यान दिया गया था कि कोयले से खाना बनाना, कोयले से बिजली बनाना, बहुत सारे काम कोयले से हो सकते थे क्योंकि कोयला हमारे देश में पैदा होता है। तो इसी तरीके से आज जो संकट है वो आज के हिसाब से है, वो उस समय संकट था तो उस समय के हिसाब से था, और कोई भी डिसीजन या कोई काम किया जाता है तो उस समय जो मौजूदा मतलब परिस्थितियां होती है उस आधार पे किया जाता है, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी राय हमें दी, बहुत अच्छे विचार लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
5: हमें भी सर बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद इस कार्यक्रम में मुझे मौका मिला बोलने का, मुझे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
5: शुक्रिया सर।
1: तो नमित जी, कॉल हमारे पास अभी भी आ रही है, ले लेते हैं अपने अगले कॉलर को।
0: बिल्कुल,
1: हेलो जागरूक श्रोता।
6: हेलो
1: हेलो
6: हेलो जागरूक मंच,
1: जागरूक श्रोता नमस्कार।
6: जी मैम नमस्कार मैम, मैं बहापुर पुराने बस स्टैंड से एम ताहिर बोल रहा हूँ।
1: मैम ताहिर जी,
6: एम ताहिर, मोहम्मद ताहिर।
1: अच्छा मोहम्मद ताहिर जी, कैसे हैं आप?
6: बस दुआएं हैं, नजरें आए थे मैम, सब कुछ ऑल इज वेल।
1: चलिए वही चाहिए। तो ताहिर जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं आपातकाल की।
6: जी मैम।
1: तो आप ये बताइए कि जैसे आपातकाल लग जाता है तो उसके बाद जो कानून लागू होता है उसमें आम नागरिकों को किस तरह से अपना भाग देना चाहिए या किस तरह से उस समय लोगों ने दिया था?
6: जी, सरकार का साथ देना चाहिए, ये फर्ज बनता है, क्योंकि सरकार का अगर साथ देंगे तो फिर उसके फायदेमंद होगा, जो देश हित में भी होगा और नागरिकों के लिए भी होगा।
1: जी,
6: सभी के लिए फायदेमंद होगा जी,
1: क्योंकि सरकार आर्थिक संकटों में और जो देश की अर्थव्यवस्था थी उस समय चरमरा गई थी और वित्तीय स्थिरता जो थी वो खतरे में थी। जी
6: हाँ जी,
1: तो कुछ कहना चाहेंगे?
6: बहुत वक्त लगा था
1: जी,
6: लेकिन लोगों की अपने देश के प्रति जो वफादारी और प्यार था उसने सब जख्म भुला दिए और आज हमारा देश एक बहुत ही ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुका है।
1: जी,
6: आप खुद देख रहे हो, मेरे कहने से पहले, आप खुद जानते हो इस बात को बखूबी।
1: जी बिल्कुल, और निरंतर प्रगति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो दौर गया है वो उससे पिछड़े हैं, उससे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और प्रगति करते जा रहे हैं और आशा करते हैं कि धीरे धीरे हमारा देश जो है एक डेवलप कंट्री बन पाए और हमारे देश के सभी नागरिक अपनी सरकार का साथ दें जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था,
6: हमारा हक बनता है जी, पूरी पूर्ण रूप से।
1: और उस समय भी सरकार यही चाह रही थी कि देश के नागरिक सरकार का साथ दें और आपातकाल की स्थिति में शांति बनाए रखें।
6: बिल्कुल बनी और देश आज इस मुकाम पर है
1: जी।
0: अच्छा, हमारा एक प्रश्न आपसे यहाँ पे जरूर है कि आपातकाल जो उस दौरान लगा तो कितने समय के लिए लगा था वो?
7: हेलो सर
0: जी, अलका,
1: तो मैं आपको बता देती हूँ, ये लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी कि लगभग 20 महीने।
0: 21 महीने
1: जी,
0: 21 महीने का वक्त था जिस दौरान लगा था। और ताहिर जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि उस दौरान अगर आपने, जैसा कि आपकी आवाज़ ये बता रही कि आपकी उम्र कम है उस हिसाब से
1: जी,
0: तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो थे वो क्या रहे आपके हिसाब से, कि सही था या गलत था, या गलत था तो क्यों था और सही था तो क्यों था?
6: नहीं सर, उस दौर की बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो शायद हमसे पहले की बात है।
0: चलिए,
6: क्योंकि वो जो चीज देखी ना हो, परखी ना हो, उस बारे में अच्छा और बुरा
0: बिल्कुल
6: कोई भी शब्द कहना बेकार है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
6: ओके सर
0: जी।
1: तो नवीन जी, जल्दी से ले लेते हैं अपनी अंतिम कॉल।
0: हेलो जागरूक श्रोता।
8: हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन सा आप बात कर रहे हैं?
8: जी सर, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से।
0: संभल से सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
8: जी धन्यवाद सर, आपके और अलका मैम की प्रस्तुति हमें बहुत अच्छी लगती है और जागरूक श्रोता में आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो आप हमें ये बताइए, हमने ये तो सुन लिया कि इसमें मतलब जनता को बोलना नहीं होता है, ये इसके नाम से ही पता पड़ता है, तो आप ये बताइए कि आपातकाल जब घोषित किया जाता है
0: जी,
8: तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है?
1: तो हम बताना चाहेंगे सचिन जी कि आपातकाल जब लगता है तो सबसे ज्यादा योगदान देश की जनता, आप, हम आपसे चाहेंगे कि आप रेडियो से थोड़ा दूर आ जाएं।
8: जी जी, बंद कर दिया
1: जी। हाँ, तो हम आपको बताएंगे कि जो आपातकाल में सबसे ज्यादा साथ देना होता है वो देश की जनता का ही होता है, क्योंकि अगर जनता विद्रोह कर देगी तो देश में संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए सरकार ये उम्मीद करती है कि जो हमारे देश की जनता है वो सरकार के साथ खड़ी रहे। जैसे कोरोना समय में हुआ था, उस समय भी एक तरह की स्थिति हो गई थी कि घरों से बाहर ना निकले लोग, और लोगों ने पूरा समर्थन दिया था। तो आपातकाल में भी सरकार यही चाहती है कि समर्थन दें और मतलब जो है सरकार का विद्रोह ना करें, उल्टे सीधे दंगे फसाद ना करें, जिससे सरकार में और अस्थिरता आ जाए और स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाए।
8: जी,
1: इसलिए बोलने का अधिकार बंद करने का मतलब ये होता है कि गलत चीजों पे विवाद ना करें, गलत बयान ना दें, भड़काऊ भाषण ना दें, दूसरे लोगों को सरकार के खिलाफ ना भड़काएं जिससे दंगे फसाद हो जाएं, इसलिए वो अधिकार छीन लिए जाते हैं जी।
8: मतलब जो भी एक्शन लेती है वो सरकार सोच समझ कर ही लेती है
1: जी।
0: सचिन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं?
8: जी सर, अब पढ़ाई चल रही है, अपना इंटर तो हो गया, अब आईटीआई करेंगे और अपना किराने की दुकान है, खेती किसानी भी है।
0: अच्छा, 12th तक की आपने पढ़ाई की है, तो आपने इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा
8: जी?
0: आपातकाल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा 1975 में जो आपातकाल हुआ था?
8: नहीं सर, ऐसा तो हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है।
0: अच्छा, कभी किसी से सुना हो अपने आसपास के लोगों से या बड़ों से?
8: नहीं सर, ऐसा तो इधर कुछ किसी ने हमें बताया नहीं है, बस रेडियो सेट पे ही सुन लेते थे जो पहले भी टॉपिक रह चुका है।
0: चलिए, तो रेडियो पे आप आज जागरूक श्रोता सुन रहे हैं और आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए,
8: धन्यवाद।
0: तो अलका, देखिए कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्ति की ओर है, धीरे धीरे 11 बजने को ही है, तो अब और इस कार्यक्रम को हम लंबा नहीं खींच सकते और श्रोताओं की कॉल शामिल नहीं कर सकते,
1: तो ले लेते हैं हमारे श्रोताओं से विदा और उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह भी हम हमसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही जागरूकता के साथ हमारे कार्यक्रम

0: व्यक्ति। नमस्कार।
1: नमस्कार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। सुबह के 11 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति ने। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था मिथुन का। और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए,
4: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आपसे मुलाकात का हर पल खास लगता है, जो दिल को कोई नया एहसास लगता है। जी हाँ श्रोताओं, अगर हमारे अपने हमसे मिल जाएं तो हमारे दिल में अलग ही खुशी होने लगती है, और लगता है कि वो आए हैं तो बाहर आई है और सारे जहाँ की खुशियाँ हमें अपनी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है तुम मिल गए तो सब कुछ मिल गया, है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म है लव इन टोक्यो, गीत हसरत जयपुरी का है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

अभी आपने सुना फिल्म लव इन टोक्यो का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। वो शख्स हो आप जिनके साथ दो पल बिताने के लिए हम लाखों पलों का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपने जो होते हैं ना, यदि वो हमसे दूर हैं तो लगता है कि वो पल जल्दी से आ जाए जिस पल में वो हमारे साथ रहे, और वो पल जब आते हैं तो ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। और उन्हीं पलों का हम ना जाने कब से इंतज़ार करते हैं, और कभी कभी सोचते हैं कि इतनी दूरियां हैं, अब आप ही बता दीजिए कि हम आपको चाहें या ना चाहें, है ना? क्योंकि वो दूरियां कहीं ना कहीं हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है जीत गांगुली का, और इसे आवाज़ें दी हैं अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल ने।

फिल्म आशिकी 2 में अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल को। बात इतनी सी थी कि आप अच्छे लगते थे, अब बात इतनी बढ़ गई है कि आपके बिना कोई अच्छा नहीं लगता। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपने जब हमें कभी कभी दूर पहले तो सभी लोग पराए होते हैं या फिर अनजान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनसे बातें होने लगती हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं तो

वो अच्छे लगने लगते हैं, ये नॉर्मल बात होती है। और कभी कभी हमें उनसे प्यार हो जाता है, और वो प्यार जब हमें दिखता है कि ये हो गया है और हम कश्मकश में होने लगते हैं कि क्या करें, ये अजब सी टेंशन हो जाती है, अजब गजब सा इश्क इश्क हो जाता है। तो चलिए इसी पर सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से। आवाज़ दी है राहत फ़तेह अली खान ने।

अभी आपने सुना फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन का ये गीत, जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था सोहेल सेन का और आवाज़ दी थी राहत फ़तेह अली खान ने। आपके रहमो करम से रोशन है मेरे इश्क का जहां, जो बात आप में है वो और किसी में कहां। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपनों की खासियत यही होती है कि हमें उनकी सब क्वालिटीज़ ही दिखाई देती है, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि हमेशा इंसान को दूसरों में निगेटिविटी ही नहीं देखनी चाहिए, है ना। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद, और सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार

0: क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: हाँ।

अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास

0: वापस ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से

0: मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
1: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
2: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
2: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
10: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
11: हाँ।
10: गुड़िया गौरव सब तैयार?
12: हाँ जी बाजी, हम तैयार हैं।
10: वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
12: आग का गोला?
10: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
11: सूरज।
10: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
12: बहुत आसान पूछते हो।
10: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
12: अगली बार में

0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
1: हाँ।
0: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
1: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
2: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक,
3: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही एकदम सही,
2: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
1: धूप से हाँ। इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
1: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
2: और
0: अच्छे।
2: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ
3: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और हाँ। कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, हाँ। तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं।
1: हाँ।
0: लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
2: और हाँ। जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है इसलिए,
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन,
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है,
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
4: धरती काटे चक्कर इसके,
0: लगे ये चलता जाता है,
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
4: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
2: नहीं, जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा,
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
1: वो भी दस
0: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
1: है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 12 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक और प्रायोजित कार्यक्रम, हमारी बेड़िया।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
1: तो दोस्तों, आइए हम आपको लेके चलते हैं एक कहानी की तरफ, जो कि है एक लड़की के बारे में। वो लड़की गौरी, जो बचपन से अपने सपने संजोती है, शादी के सपने। तो आइए हम जानते हैं उसके सपनों की हकीकत के बारे में। शादी, हाँ दोस्तों, शादी लड़की का सपना होता है। वो बचपन से ही अपने राजकुमार के सपने सजाती है। छोटी उम्र में ही वह गुड्डे गुड़ियों की शादी कराती है। ये सपना हकीकत में देखने लगती है। कहते हैं हर लड़की का एक नहीं बल्कि दो परिवार होता है, पहला जहां वो पैदा होती है और दूसरा जहां उसकी शादी होती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की गौरी की कहानी है, जो शादी के सपने सजा रही थी। पढ़ाई लिखाई खत्म होने पर गौरी के माँ बाप उसके लिए एक लड़की की तलाश में लग गए। वो लड़का जो उसका हमसफर बन सके। गौरी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। आइए सुनते हैं।

0: बेटा गौरी, अब देख, जब हम तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, पर तू भी बता दे तुझे कैसा लड़का चाहिए।
1: हाँ बेटा देख, हम तो चाहते हैं लड़का खानदानी हो, पढ़ा लिखा हो और घर में इकलौता हो, ताकि तुझे किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो, तू रानी बन के रहे बेटा, रानी।
2: नहीं नहीं पिताजी, मुझे अमीरी गरीबी नहीं देखना, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे अपनी कमाई में भी खुश रखे और हम छोटे से घर में एक साथ अपने सुख दुख बांट सके, और कुछ नहीं चाहिए।
0: अरे तू बावली हो गई है क्या गौरी, ये सब तो सिनेमा की बातें हैं जो बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती हैं। आज के जमाने में पैसा ही खुशियों को खरीदता है। अब बस हमें जैसा लड़का ढूंढना है, हम तेरे लिए ढूंढ रहे हैं, तू चिंता मत कर।
3: ये सच है कि हर माता पिता अपनी बेटी के लिए एक आलीशान ससुराल चाहते हैं, जहां वो रानी बन के रहे, पर क्या पैसा प्यार से ज्यादा कीमती होता है?
2: अरे अंकल, आप नमस्ते अंकल, आइए बैठिए, मैं पिताजी को बुलाकर लाती हूँ। पिताजी।
1: आया बेटे। अरे रमेश, कैसे आना हुआ तुम्हारा, बताओ कोई मेरे लायक काम है तो आओ बैठो।
4: अरे भाई साहब, मुझे पता चला कि आप अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एक लड़के के बारे में बता सकता हूँ?
1: हाँ, मगर हम ऐसे लड़के की तलाश में हैं जो घर में इकलौता रहे और सरकारी नौकरी भी करता हो, बाकी हमारी कोई और इच्छा नहीं है।
4: हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, बिल्कुल यही खूबियां हैं, अगर आप कहें तो मिला दूं उससे।
3: और रमेश गौरी के पिता से उस लड़के को और उसके परिवार को मिलवाता है। गौरी और उस लड़के दिनेश की शादी हफ्ते भर में ही हो जाती है, शादी के कुछ ही दिनों बाद।
5: अरे गौरी, तुम इतनी रात तक क्यों जग रही हो? देखो मैं तो अपने दफ्तर से देर से आता हूँ, तुम मेरा इंतजार मत किया करो, खाना बना के खा के सो जाया करो।
3: शादी के बाद जो प्यार एक लड़की अपने पति से चाहती है, वो प्यार गौरी को नहीं मिल पाता, और थोड़े समय बाद तो दिनेश पूरे दिन घर नहीं आता था, और रात को देर से शराब पीकर घर में घुसता था।
2: आप आज शराब पीकर आए हैं? आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी चिंता होती है, आप देर से आते हैं और आज तो आपने शराब भी पी ली, आप शराब मत पिया कीजिए।
5: तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? रुक, मैं तुझे बताता हूँ।
2: अरे मत मारो मुझे, मेरे बाल, प्लीज मत मारो।
3: दिनेश गौरी को नशे में खूब मारता है और गौरी रोती है, चिल्लाती है, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। सुबह उठकर गौरी दिनेश की माता को रात के बारे में बताती है।
0: अच्छा बहू, तू मुझे ये सब बता रही है, अगर ये समय तू काम में लगाती तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। मुझे तो पता है मेरे बेटे का शौक है पीना, और उससे तू जबान लड़ाएगी तो गुस्सा ही करेगा ना, हाथ ही उठाएगा ना, बड़ी भोली बनती फिरती है घर में।
3: गौरी बहुत निराश हो जाती है, और ये सोचकर कि उसके माता पिता भी परेशान होंगे, वो उन्हें भी नहीं बताती। पर हाँ, दिनेश अब अपनी हदों से आगे बढ़ गया था, वो रोज देर रात से शराब पीकर आता और गौरी को जानवरों की तरह मारता था। अब तो जैसे गौरी टूट ही चुकी थी। समय जरूर बीत गया था, पर हाँ, परिस्थितियां अभी भी बदली नहीं थी। एक दिन गौरी की पुरानी सहेली उसे बाजार में मिलती है।
6: अरे गौरी, तू कैसी है?
2: अरे प्रिया, मैं अच्छी हूँ, तू सुना?
6: मैं भी अच्छी हूँ, मुझे माफ करना यार, तेरी शादी में नहीं आ पाई, कहीं बाहर गई हुई थी परीक्षा देने को।
2: अच्छा,
6: पर तू अब ये बता, जीजू कैसे हैं?
2: हाँ ठीक है वो।
6: और सुना है तेरा नया ससुराल, वो तो बहुत ही बड़ा है।
2: हाँ।
6: काफी पैसे वाले लोग लगते हैं।
2: हाँ वो तो है, लेकिन
6: तो तेरी शादी काफी अमीर खानदान में हुई है।
2: तू वो सब छोड़, लेकिन मैं समझ सकती हूँ यार, तू क्यों नहीं आई होगी। इसके पीछे जरूरी कोई काम होगा। चल चल, अब मैं घर जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। अब हम कहीं और मिलेंगे।
6: अरे रुक तो सही, क्या बात है? तेरे चेहरे पे ऐसी उदासी क्यों छाई हुई है? मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ, इतनी उदास पहले तो कभी नहीं रहती थी। तू लगता है मुझसे कुछ छुपा रही है। देख, मैं तेरी सहेली हूँ, मैं तेरे को बचपन से जानती हूँ। हंसते रहने वाली लड़की कभी उदास चेहरे में ऐसे अच्छी नहीं लगती। बता क्या बात है?
3: और गौरी रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियों का बयान प्रिया को करती है।
6: देख गौरी, तू रो मत और कमजोर मत पड़, क्योंकि लड़की व पत्नी को मारना शादी के बाद कानूनी जुर्म है। हम इसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने हिम्मत रखी और तूने मुझे बताया, वरना आजकल की लड़कियां इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि ऐसी परिस्थितियों को देखकर अपनी जान दे देती हैं। पर क्या ये एक समस्या का हल है? नहीं, समस्याओं से लड़ना ही हिम्मत का काम होता है, ना कि उससे डरकर जान दे देना।
3: गौरी को प्रिया की बातें सुनकर और हिम्मत मिलती है और वो दोनों उसी समय दिनेश के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। गौरी छुपके से अपना सामान लेके अपने ससुराल से निकल जाती है और अपने माता पिता के पास पहुंचती है।
0: बेटी, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना?
3: तभी गौरी सारी बातें और हुई घटना के बारे में अपने माता पिता को बताती है।
1: बेटी हमें माफ कर दे, हमने अपनी बच्ची के जीवन को बर्बाद कर दिया। काश हम पैसे और शान शौकत नहीं, पर एक प्यार करने वाला लड़का अगर अपनी बेटी के लिए ढूंढते जैसा उसे चाहिए था। तूने हमारी वजह से कितना सहा, फिर भी यह सोचकर कि हम परेशान होंगे, हमें पता तक लगने नहीं दिया। बेटा, आज तूने बता दिया कि लड़कियों में कितनी सहन शक्ति होती है और वो अपनी परिस्थितियों को अंत तक बदलने की कोशिश करती है और आखिर में अपनी बहादुरी से निर्णय लेती है।
3: हाँ, ये बिल्कुल सही है कि लड़कियों में सहन शक्ति वह परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत होती है। पर यह भी सच है कि हर लड़की गौरी नहीं होती, पर बहुत से जीवन है जो रेल की पटरी पर लेटकर, आग में झुलसकर और पंखे पर लटककर अपने आप को खत्म कर देते हैं। पर क्या यही समस्याओं से बचने का हल है? नहीं, हम भी इतनी हिम्मत रखें कि हमारी बहादुरी और हमारा आत्मविश्वास ही हमें हमारी परिस्थितियों का हल बताए, ना कि जीवन का अंत। ये कहानी हर माता पिता के लिए एक प्रेरणा है कि हमारी बेटियां कीमती हैं, उन्हें पैसों की कीमत नहीं परंतु कीमती हाथों में दें। और हर लड़की अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि परिस्थितियों से भागना ही उसका हल नहीं होता। अगर गौरी भी ऐसा करती तो शायद उसे बहादुर लड़की हम नहीं कहते, जिसने परिस्थितियों से भागकर नहीं पर उससे लड़कर उसका हल निकालना चाहा।
1: दोस्तों, ऐसी ही कई गौरियां हमारे समाज में यहां वहां विद्यमान हैं, जो ऐसी कई परेशानियों से जूझ रही हैं। अगर आपके पास या आपके नजदीक में कोई, अगर आपको ऐसा घटना मिले तो दोस्तों आप उसकी जिम्मेदारी लें और उसके उत्थान के लिए आप आगे बढ़ें।

0: अब श्रोताओं, समय है कि कुछ श्रोताओं के नाम आपके सामने हम रखें जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं। और फूलग्राम जिला भिवानी से कुछ लिसनर्स हैं, कुछ श्रोतागण हैं जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और दूसरों को भी हमारे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। तो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मुन्नीलाल प्रजापति, सुमित्रा देवी जी, जय भगवान प्रजापति जी, मट्रो रणबीर, रणबीर प्रजापति जी, गुड्डी, संतोष जी, शंकर मास्टर और अनुप। ये हमारे श्रोता हैं जो फूलपुर ग्राम जिला भिवानी से हैं, हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में आपका नाम प्रसारित हो, या फिर आप कविता या फिर कहानी लिखने का शौक रखते हैं, तो हमें जरूर बताएं। तो आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद।
1: छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा।
2: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी बहनों को थारी बहन नीतू की प्यार भरी राम राम। भाई सबसे पहले मुझे ये बताए दो सभी बहनों की कैसी हैं भाई मेरी बहनें, और घर परिवार में सब राजी खुशी। और भाई बहनों आज मैं फिर से थारे वास्ते ना बातों का ढेर सारा पिटारा लेके आई हूँ, तो खूब सारी बातें करेंगे और चिट्ठी भी तो पढ़ूंगी भाई मेरी बहनें जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज का क्रम है चिट्ठी थारे नाम की। पर बहनों पहले सुने यो जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: भाई बहनों, गर्मी तो बहुत चल रही, और भाई ऐसे में जरूरी हो भाई अपने स्वास्थ्य का सभी बहनें और सभी खूब ख्याल रखें। और भाई गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सूखा कुछ भी हो, किसी भी हाल में स्वास्थ्य का ख्याल तो वैसे भी रखना जरूरी हो भाई। बहनों स्वास्थ्य जो यो ही तो इंसान की सबसे बड़ी पूंजी हो वे, है कि नहीं? पर बहनों लोग हैं कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज ना आवे भाई, कुछ ना तो मादक पदार्थों का ही सेवन करने लगे। और बहनों आज यानी 26 जून को ना ड्रग मतलब नशा और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जावे। बहनों शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन, ड्रग्स, ये सब जो होवे ना, ये सारी नशे की चीजें होवे, नशे होवे ये सब। और जो इनका सेवन करे ना, उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से तमाम बीमारियां घेर लेवे। वो व्यक्ति बीमार हो जावे जो कि इनका जो है बिल्कुल लत का शिकार हो जावे। अच्छा, जो नशा करे ना बहनों, उसके तो परिवार में भी कलह का माहौल बन जा, परिवार की आर्थिक स्थिति वो बड़ी कमजोर हो जावे। भाई जो आदमी नशा करेगा वो कुछ करे धरेगा तो है नहीं, बस नशा करता रहेगा जो ज्यादा नशा करने लगे, और ऊपर से जो घर में भी पैसा हो जो भी हो उसे बेच बेच के वो नशा करने लगे, तो उससे कलेश तो होवेगी घर में, और भाई धन पैसे की भी कमी होवेगी। और बहनों जिसको भी इसकी लत लग जावे ना, वो अपराध और हिंसा करने से भी बतेरी दफे चूके ना आए भाई। उसे तो किसी भी तरह से नशा करना रहे, उसका दिमाग कहाँ काम करे? जो आदमी नशा करे दिमाग उसका कमजोर हो जावे, उसे समझ में ना आवे क्या अच्छा क्या बुरा। और बहनों जो ड्रग्स और नशा यो केवल व्यक्ति को ही ना है, पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र को प्रभावित करे भाई, सभी तो इससे प्रभावित हो गए, एक ही व्यक्ति से सारा परिवार तितर बितर हो जावे। और बहनों यो आज का दिन है ना 26 जून का, यो दिवस हमें यो ही संकल्प लेने की प्रेरणा देवे कि हम स्वयं भी नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। बहनों एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त समाज का निर्माण यो तो हम सभी की जिम्मेदारी होवे भाई। हम सबको प्रयास करना होवे कि कोई भी ना परिवार में नशा ना करे, और सबको इसके प्रति जागरूक करना जरूरी होवे। अगर हम किसी को देखें वो नशा कर रहा तो उसे समझाना भी हमारी जिम्मेदारी होवे। और भाई हमारी बहनें तो बहुत सारी समझदार हैं। और बहनों अब हम चलेंगे अपने क्रम की ओर, चिट्ठी थारे नाम की। भाई बहनों की बहुत सारी चिट्ठियां हैं मेरे हाथ में, पर पहले यो जरूरी संदेश।
7: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
8: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
9: बन गया बजट?
8: हाँ,
9: 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले?
9: ना,
8: पिछले महीने तो ली थी।
9: एक और?
8: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
9: बढ़िया, जाओ भाई।
10: RBI कहता है,
11: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: तो बहनों अब देखें भाई, यो पहली चिट्ठी जो मेरे हाथ में है यो कहाँ से आई और किसने लिखी? तो यो चिट्ठी है गांव गोला, थाना कोतवाली, जनपद लखीमपुर खीरी से, और यो लिखी विद्या, जूली, पूजा, पूनम, और किरण ने, ये हम सबको नमस्ते बोले, राम राम बोले, और ये बोला हम वैसे तो सारे कार्यक्रम सुने पर घर संसार जो हमारा पसंदीदा कार्यक्रम हो गए। तो सबसे पहले तो विद्या, जूली, पूजा, पूनम और किरण सभी को नमस्ते, राम राम। और भाई बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे सारे कार्यक्रम सुनो और आपने हमें चिट्ठी लिखी, इसके लिए धन्यवाद। आगे ये लिखे हैं कि इन्हें लघु नाटिका बहुत अच्छी लगे। भाई यू सामाजिक और पारिवारिक विषयों, बुराइयों, चुनौतियों पर जो हम हैं, हमारी बहनें सभी जो हमारे आकाशवाणी से नाटिका के माध्यम से श्रोता बहनों तक संदेश देवें, सभी को जागरूक करने का काम करें, इसकी ये हमारी, हम ये जो बहनें हमें जिन्होंने हमें चिट्ठी लिखी ये हम सबकी सराहना करें। आगे ये लिखे हैं इस महीने प्रसारित जो लघु नाटिका हुई थी सपने और इच्छाएं, इन्हें बहुत अच्छी लगी। और ये लिखे हैं कि भाई इनकी माँ भी कुछ करना चाहवे थी लेकिन उनके परिवार ने, आसपास के लोगों ने उन्हें वो करने ना ही दिया, और जो भी इनकी माँ करना चाहती थी, पर इनके माता पिता ने कभी अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों पर नहीं लादा और इन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और ये सही बात है कि भाई कभी भी अपनी जो इच्छाएं हैं माता पिता को अपने बच्चों पे थोपनी नहीं चाहिए, बच्चों के भी अपने सपने होवे जो पूरे होने बहुत जरूरी होवे। और बहनों आपने हमें चिट्ठी लिखी इसके लिए बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम सुनती रहा करो और हमें चिट्ठी लिखती रहा करो। और अब देखें यो अगली चिट्ठी हमें कहाँ से मिली, तो यो है झालू बिजनौर से, और यो हमें लिखी पिंकी, अनीशा, ललिता, मीनू और कविता ने। यह हमें सबको नमस्ते बोले और बोले कि भाई इनके घर में तो सभी को रेडियो के जो भी कार्यक्रम हो में वो बहुत अच्छे लगे हैं, पर इन्हें सबसे अच्छा लगे हमारा कार्यक्रम घर संसार। तो भाई पिंकी, अनीशा, ललिता, मीनू, कविता, सबसे पहले सभी को राम राम, आप सब राजी खुशी रहें और आप हमारा कार्यक्रम सुने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। भाई हमारा तो जो मकसद हो गए, उद्देश्य हो गए, वो होता ही हो है कि हम अपनी बहनों के अनुरूप, अपनी श्रोता बहनों के अनुरूप कार्यक्रम बनावे। आगे ये लिखे हैं इनके घर में सभी को लोकगीत बहुत पसंद आवे, और आज जब सब लोग ना फिल्मी गाने सुनने ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लोकगीत की तो अपनी पहचान हो गए, लोकगीतों में जो प्रेम, मधुरता, परंपराएं देखने को मिले वो अन्य गीतों में कहाँ। और ये लिखे हैं भाई इनकी दादी तो खटिया पे बैठे बैठे ही लोकगीतों पे थिरकती रह गए। अरे भाई ये तो आपने बहुत अच्छी बात लिखी, और सच में लोकगीतों में जो प्रेम हो गए, जो हमारे तीज त्योहार परंपराएं सभी कुछ तो देखने को मिले, सच में बहुत अच्छी बात है। और जो भाई दादी की क्या बात करो भाई, बहनों लोकगीत पे तो कौन ना थिरके भाई।

यकीन करो बहनों, जब यो लोकगीत हम सुनवावे ना, हम भी अपने स्टूडियो में बैठे बैठे थिरकते रहवे। और आज भी हम अपनी बहनों को निराश थोड़ी करेंगे, और अपनी दादी से कह दो तैयार हो जावे थिरकने के लिए, क्योंकि हम सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा, एक प्यारा सा लोकगीत।

तो सब बहनें लोकगीत का मजा ले रही ना, और दादी ने तो खूब नाच किया होगा आज लोकगीत पर, है नहीं? और बहनों हमें ना चिट्ठी पत्री लिख के बता दियो कि भाई आज का कार्यक्रम कैसा लगा। और हमारा पता है, कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन 2467 63। और बहनों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457707888। एक बार फिर से 9457707888। भाई फोन सबके हाथ में हो, जरूर मैसेज कर दियो, है ना? और हमारा ईमेल पता है akashwaninajibabad@gmail.com। और बहनों इसी के साथ अपनी बहन नीतू को दो अनुमति। राम।

अभी आप सुन रहे थे घर संसार, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि निर्यात लाइव चौपाल का एपिसोड 8। इसका संचालन करेंगे सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह। समय याद रखिएगा, आज दिन में 1:15 पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है मिड डे मेलोडी। मिड डे मेलोडी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। चूड़ी भी जिद पे आई है और पायल ने शोर मचाया है, अब तो आजा परदेसी, मिलने का महीना आया है। जी हाँ श्रोताओं, जब हमारे अपने कहीं दूर चले जाते हैं तो लगता है कि बस जब वो आएंगे तभी बाहर आ जाएगी, और हर मौसम में अपनों के आने से बाहर तो आ ही जाती है। और ऐसे में अगर हम कहीं गुम हो जाएं तो हमें लगता है कि हमारा दिल तो कहीं परदेसी नहीं हो गया है, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से। इसे आवाज़ दी है कुमार सानू और लता मंगेशकर ने। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है नुसरत फतेह अली खां का।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आपके मिलने से पहले ये मालूम ना था कि ऐसी दीवानगी भी हो सकती है किसी के लिए। जी हाँ श्रोताओं, ये जो दीवानगी होती है ना वो किसी किसी के लिए ही होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है, या ये बोलें कि सिर्फ किसी एक के लिए ही होती है। और ऐसी दीवानगी अगर किसी को मिल जाए तो उसे अच्छी क्या बात है, कोई अपना हमें अच्छे से चाह रहा है, रख रहा है, हमारी केयर कर रहा है, हमें प्रायोरिटी दे रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात है ना श्रोताओं। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दीवाना से। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का और आवाजें हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की।

आकाशवाणी के हम नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि दोपहर 1:15 से किसान भाई सुनेंगे कृषि निर्यात लाइन का, जिसे आज हम जनपद सहारनपुर के मुजफ्फराबाद ब्लॉक से गांव कोसी बहलोलपुर से प्रसारित करेंगे। तो समय याद रखिएगा अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 1:15।

0: एक बार अपने साथियों को, श्रोताओं को हम पुनः बता दें कि आज भी हमारी जो कृषि निर्यात लाइव चौपाल है उसका सजीव प्रसारण आप सुनेंगे दोपहर 1:15 से जनपद सहारनपुर के मुजफ्फराबाद ब्लॉक की कोठड़ी बहलोलपुर ग्राम पंचायत से। सुनना ना भूले दोपहर 1:15।
1: अभी आपने सुना फिल्म डाग दी फायर का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। संगीत था राजेश रोशन का और गीत लिखा था समीर ने। तेरे रहमो करम से रोशन है मेरे इश्क का जहां, जो बात तुझ में है भला और किसी में कहां। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपनों में जो बात होती है वो वैसे भी किसी में नहीं होती है, और हमारे अपनों की खूबियाँ ही यही होती हैं कि वो हमें सबसे प्यारे लगते हैं, और शायद उनकी दुनिया में भी हम ही प्यारे हैं, है ना। तो चलिए कि आपकी दुनिया भी ऐसे ही प्यार से हंसती रहे, खुश रहे, बाहर आपके प्यार में आती रहे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से महकती रहे, यही उम्मीद करते हैं। और सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुम से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, संगीत है समीर का, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: अभी आप सुन रहे थे मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं लवली निकम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है।

भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लॉरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं जनपद सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद के ग्राम कोठड़ी बहलोलपुर में, जहां उपस्थित हैं हमारे टीम के सदस्य कार्यक्रम अधिशासी अंकित सैनी और उनके साथ हैं सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
3: यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: किसान भाइयों को फसल उत्पादन के साथ साथ संगठित होकर किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ बनाना है और अपनी फसल को स्वयं खरीद कर दूसरे देशों को निर्यात करना है। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान BEDF मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: अब नहीं रहेगा कोई भी सवाल
3: जब किसान भाई सुनेंगे
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से
5: लाइव चौपाल।
6: किसान भाइयों नमस्कार, इस समय हम आ पहुंचे हैं कृषि निर्यात लाइव चौपाल के अंतर्गत जनपद सहारनपुर विकासखंड मुजफ्फराबाद के गांव कोठड़ी बहरोलपुर में, और आकाशवाणी की टीम यहां पर आ पहुंची है। आकाशवाणी टीम के साथ कार्यक्रम अधिशासी अंकित जी के साथ मैं सुरेंद्र सिंह और मेरे साथी जितेंद्र कुमार और प्रमोद सिंह के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहां पर हम जनपद सहारनपुर के विकासखंड मुजफ्फराबाद में कोठड़ी बहलोलपुर ग्राम पंचायत में आ गए हैं। तो प्रमोद जी, कैसा लग रहा है आपको?
7: जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी सुनने वालों को करता हूँ राम राम। और देखिए, जैसा आपने बताया है कि आज हम जनपद सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद के गांव कोठड़ी बहलोलपुर में आ गए हैं और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा ये लग रहा है कि देखिए कितना वालों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो गांव है कोठड़ी बहलोलपुर, ये सहनसना नदी के तट पर बसा हुआ गांव है और बहुत बड़ी ये नदी है इसका। और एक और बात यहाँ पर है सुबेंद्र जी कि माता शाकुंभरी देवी जी के बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ बहुत अच्छी जो है खेतीबाड़ी भी हो रही है, बागवानी बहुत अच्छी है, यहाँ वन क्षेत्र भी है। तो देखिए, कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि आज हम एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर प्रकृति का एक बहुत ही बढ़िया मनोरम लाइव चौपाल लगी हुई है, कृषि निर्यात लाइव चौपाल। इसका उद्देश्य ये है कि हम खेतीबाड़ी करते हैं और हमें बाजार भी मिले और जो हमारे कृषि उत्पाद है हम उन्हें दूसरे देशों में निर्यात करें, निर्यात को हम बढ़ावा दे सकें। बिल्कुल, देखिए आज हमारी इस कृषि निर्यात लाइव चौपाल का यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे कृषि के उत्पाद हैं उसको हम लोकल मंडी में तो भेज ही रहे हैं, अगर हम अपने उस उत्पाद को देश के बाहर विदेश में निर्यात करना शुरू कर देंगे और किसी भी रूप में हम उसको, चाहे अगर हम फल पट्टी की बात करें क्योंकि ये एक बहुत अच्छी फल पट्टी भी है जहां पर आम के बहुत ज्यादा बाग हैं, लीची के बाग हैं, इसको भी अगर हम निर्यात करना शुरू करेंगे तो हमारे किसान भाइयों की आमदनी तो बढ़ेगी।
6: और देखिए, यहाँ पर चौपाल में बहुत सारे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उत्साह है उन्हें बात करने का, और इन सभी का स्वागत करने के लिए अब हम चलते हैं हमारे कार्यक्रम अधिशासी अंकित सैनी जी के पास। जी सर,
8: धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारी कृषि चौपाल में मौजूद सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि ये एक लाइव निर्यात चौपाल है, इसमें ये हमने जो बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ है उसके द्वारा संचालित है, और निर्यात क्यों करना है और निर्यात करने के क्या लाभ है, इन सब बातों पर ही हम इस तरीके की चौपाल में बात करते हैं। और उनका जवाब देने के लिए ही BEDF से हमारे साथ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान वैज्ञानिक प्रमोद तोमर जी, और जो बाजार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर से ही मुकुल पवार जी, जो कि सीनियर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं। मुकुल पवार जी, वो आपके मार्केटिंग से जुड़े हुए सवालों का जवाब देंगे। और असल में होता क्या है कि निर्यात क्यों करना है, निर्यात की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लाभ होंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, निर्यात की जरूरत इसलिए है, अगर आज हम आज के समय को भी देखें, आपने देखा कि सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, तो आपने डॉलर डॉलर सुना, आगे सोना कम खरीदो जिससे कि हमारा डॉलर कम खर्च हो, उत्पादों को बाहर भेज के एक तो डॉलर कमा सकते हैं जिससे कि हम हमारी जो और मार्केटिंग है वो और स्मूथ चलती रहे, दूसरा हमारे किसानों की आय एक उससे बढ़ेगी, और जब किसानों की आय बढ़ेगी तो जो हमारा जो यूथ है, जो हमारा युवा है, जो हमारे जो पारंपरिक एक उससे दूर होता जा रहा है, तो वो दोबारा उससे जुड़ेगा, ठीक है। और निर्यात के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप अगर लोकल में भी निर्यात भी छोड़ें, अपने प्रोडक्ट को बाहर आसपास की मंडी में भी भेजते हैं, तो जो आपका अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा उसको आपको अच्छा दाम मिलेगा। तो निर्यात के लिए भी यही चीज है, जो आपका प्रोडक्ट में जाएगा और उसका। लेकिन आपने अभी देखा होगा कि कुछ हाल फिलहाल के दिनों में न्यूज आई थी कि हमारे कुछ उत्पाद भारत के, जैसे कि आम हो गया या और कुछ मसाले वगैरह हो गए, उनको एक्सपोर्ट या निर्यात में कुछ देशों ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसमें जो जो केमिकल्स की जो मानक इससे ज्यादा चाहिए, उसकी जो जांच है वो भी आप कहां से करा सकते हैं, क्या उनका मानक होना चाहिए, उसके बारे में भी हमारे वैज्ञानिक प्रमोद तोमर जी बताएंगे। और सबसे अच्छा है तरीका क्वालिटी बढ़ाने का, जो आजकल सब जगह में ट्रेंड में है, जैविक ऑर्गेनिक। तो आप अपने उत्पादों को जैविक कैसे बनाएं, जैविक का देखो, जैविक बनाने से करने से तो आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, तो वो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसीजर है, इन सब तरीके ऐसी बातों को ही बताने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए इस तरीके की चौपाल हम आयोजित करते हैं। और आज हम आपके बीच में आए हैं और हमारे साथ इस चौपाल का एक बहुत ही, जो मैं कहूं कि आज का मुख्य केंद्र रहेगा, हमारे बीच में एक निर्यातक ऑलरेडी मौजूद है, राहुल काम्बोज जी, जो कि यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ से गुड़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जानेंगे कि क्या क्या बाधाएं आती हैं और किस तरीके से, जो अगर आप भी उनके सामने बाधाएं आ रही हैं तो वो कैसे दूर की जा सकती हैं, उन सब बातों के जवाब देने के लिए ही हमारे पास मुकुल पवार जी और डॉक्टर प्रमोद तोमर जी हमारे साथ हैं। जी सुरेंद्र जी,
9: बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। और देखिए प्रमोद भाई, चौपाल यहाँ पर लगी हुई है
8: बिल्कुल,
9: और हर किसान जो है इस समय उत्साहित है बातचीत करने के लिए, अपने प्रश्न को जानने के लिए।
10: बिल्कुल, आपने सुबेंद्र जी बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे किसान उपस्थित हैं, जैसे अभी हमारे कार्यक्रम अधिशाषी अंकित सैनी जी ने भी ये बताया कि आज हमारे इस चौपाल पर हमारे एक निर्यातक भी यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छे अच्छे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ में ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक भी यहाँ इस चौपाल पर हैं, और जो इस चौपाल के प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ के डॉक्टर प्रमोद तोमर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो भाई देखिए, अब तो इस चौपाल के आगे बढ़ाते हुए भाई
9: आ गया कि हम ये जान लें कि हम किस तरीके से एक किसान से सकते हैं। उत्पादक तो हम है ही, खेती बाड़ी तो हम कर रहे हैं, फसल को उगा रहे हैं, लेकिन वो हमें किस तरीके से अच्छे बाजार में भेजना है, कैसे हमें दूसरे देशों में उसके निर्यात करना है, किस तरीके से हमें विदेश की मुद्रा अर्जित करनी है और देश के विकास में अपना सहयोग देना है। प्रमोद तोमर जी इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें दे रहे हैं। जी डॉक्टर
11: नमस्कार। किसान भाइयों, आज की चौपाल में बासमती एक्सपो डेवलपमेंट फाउंडेशन मोदीपुरम मेरठ और एपीडा की तरफ से आप सबका स्वागत है, और आशा करते हैं कि इस चौपाल में जो भी डिस्कशन होगा आपको उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 7% से ज्यादा जनसंख्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से खेती पर आधारित है, और हम लोग अपने देश की जनता का पेट भरने के साथ साथ में बहुत सारे देशों को अपने कृषि उत्पाद को निर्यात भी करते हैं। यदि हम बात करें कृषि क्षेत्र के निर्यात की, तो भारत से बहुत सारे ऐसे उत्पाद है जो विभिन्न बोर्डों द्वारा निर्यात किए जाते हैं, साथ में एपीडा भी कृषि क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है। भारत के टोटल कृषि निर्यात में एपीडा का 52% से ज्यादा भागीदारी है। और यदि हम बात करें धान्य फसलों में बासमती की क्षेत्र से, तो 10% धान्य फसलों की साझेदारी है कृषि क्षेत्र के निर्यात में, और भी लगभग कुल बासमती की साझेदारी है। और यदि बासमती से मिलने वाले विदेशी मुद्रा की हम बात करें, पिछले साल हमने 65 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया है 2025-26 में, जिससे हमारे 50,137 करोड़ रुपए के करीब विदेशी मुद्रा हमें मिली है। तो ऐसे ही आप धान्य फसलों में बासमती, क्योंकि सहारनपुर बासमती बेल्ट में आता है, फल बेल्ट पट्टी है यहाँ पे, तो आप आम के निर्यात में, लीची के निर्यात में, या इनके द्वारा बने हुए उत्पाद प्रोसेस फूड के निर्यात में आप अपने जिले का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे जब बढ़ेगा, जब आपके पास गुणवत्ता युक्त उत्पाद होगा। क्योंकि हम पैदा तो बहुत ज्यादा कर ले रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब हम उस उत्पाद को रखते हैं तो वहां पे पेस्टिसाइड इशू बन के आता है। कई बार वो इतना ज्यादा होता है कि वो माल हमें ना वापिस मिलता और ना वो बिकता, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो उसमें हमारे एक्सपोर्टर लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो पेस्टिसाइड रेजिड्यू को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि हमारे किसान भाई जागरूक हो, समझदार हो, जो भी दवाइयां अपने खेतों में लगाते हैं चाहे वो फसल कोई भी हो, उसका पहले पता कर ले कि वो कितनी मात्रा में कब लगानी चाहिए, ताकि उसके अवशेष द्वारा पैदा किए गए उत्पाद के ऊपर इसका एक टाइम बॉन्ड होता है। इसलिए जितने भी रसायन आप खरीदते हैं उनके साथ में उनके साथ मिलने वाला एक लव लेटर बोलते हैं, लीफ लेट बोलते हैं, कागज बोलते हैं, वो जरूर लाएं और उसमें पढ़ के तब इस्तेमाल करें। तो बहुत सारी दवाइयां तो आप वापसी दुकान वाले को दे आओगे, क्योंकि होता क्या है कि दवाई कॉटन में लगनी थी कपास में, लगा दी बासमती में, दवाई गन्ने में लगनी थी लगा दी आपने बासमती में, दवाई बासमती में लगनी थी आपने लगा दी आम से, फिर मात्रा भी कम ज्यादा कर ली। तो इसका थोड़ा सावधानी करके आप इस्तेमाल करोगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने हर उत्पाद को बेच सकते हैं और अपनी साख बना सकते। आप अपने सहारनपुर जिले की साख भी अपने द्वारा किए गए उत्पाद के निर्यात के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे बहुत पहले था कि देहरादून की लीची, देहरादून का बासमती, ऐसी सहारनपुर की लीची, सहारनपुर का आम, सहारनपुर का बासमती आपका नाम बन सकता है जिले का। और ये बनेगा जब जब आप संगठित होंगे, क्योंकि अकेला किसान सारे काम नहीं कर सकता और ना उसके पास इतना उत्पाद होगा कि वो एक कंटेनर को एकदम भेज दे। तो आप संगठित हो गए, और संगठित होने का तरीका है कि आप एफपीओ बनाओ, एफपीसी बनाओ, और आज का कार्यक्रम आपके यहाँ एक एफपीओ के माध्यम से ही हो रहा है। तो आप एफपीओ से जुड़े और आपकी कोई भी समस्या निर्यात को लेकर है तो हमसे फिर भी बात करें।
12: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, देखिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और हम अभी अपने सभी सुनने वालों को ये भी बताना चाहेंगे कि आज जो ये कृषि निर्यात लाइव चौपाल गांव कोठली बहलोलपुर में आयोजित की जा रही है, ये एक एफपीओ के माध्यम से यहाँ पर है और उस एफपीओ का नाम है सुस्वास्थ्य प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं सीईओ, ये हैं आशीष काम्बोज जी।
13: तो भाई देखिए एफपीओ हमें तैयार करना है और एफपीओ में हम शामिल होकर भाई देखिए इकट्ठे हो सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं और जो हमारी उपज है उसको हम बाहर भेज सकते हैं, उसका निर्यात कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर एफपीओ मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये एफपीओ तैयार हुआ है और उसकी क्या प्रगति है, किस तरह की जो बाहर निर्यात किया जा रहा है, तो इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। जी आपका परिचय?
14: नाम आशीष मेरा और मैं एज ए सीईओ इस एफपीओ को भी डील कर रहा हूँ। ये डिजाइन तो किसी और ने किया था शुरू में, लास्ट में फिर 3 साल बाद में इसमें ऐड हुआ एज ए मेंबर, फिर धीरे धीरे एज ए सीईओ की पोस्ट तक पहुंचा।
13: तो काम्बोजी हम जानना चाहेंगे कि इस समय की अगर हम बात करें, वर्तमान की बात करते हैं, तो क्या प्रगति है आपके एफपीओ की?
14: हम पिछले 6 साल से हमारा एफपीओ है और पिछले 2 साल से हम मैंगो पे और गुड़ पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इस समय जो मैंगो का कार्य है, मैंगो पे जब बोर आता है, बोर आने से लेकर कंजम्पशन जहाँ लास्ट तक वो पहुंचा, टीको कैसे इम्प्रूव किया जाए, पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा पड़ती है, उस पेस्टिसाइड को कम करने के लिए हम इस पर एक प्रोटेक्शन बैग चढ़ाते हैं। उस प्रोटेक्शन बैग से जब चढ़ जाता है वो लगभग जब बोर आया, बोर आने के बाद दाना बन जाता, दाने के बाद साइज उसका जब होने लगता है 50 से 100 ग्राम के बीच, तब वो चढ़ता है और 45 से 50 डेज तक काम पर रहता है, जिससे डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आता पेस्टिसाइड के और पेस्टिसाइड की मात्रा रिड्यूस हो जाती है।
12: जी आशीष जी बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस आम के फल को तैयार करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको बेचने की क्या व्यवस्था करते हैं, क्या उसको निर्यात भी किया जाता है?
14: एट प्रेजेंट तो ऐसी किसी कंट्रीब्यूशन के तहत हम कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन ई कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट हो गया, ब्लिंकिट हो गया आपका, इनके तहत मिलकर हम कुछ कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं।
13: अच्छा आपने गुड़ की बात बताई, तो गुड़ में आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं?
14: गुड़ में हमारे साथ का लड़का जो एज ए डायरेक्टर है राहुल काम्बोजी, थोड़ा सा वो बताएंगे। वो पूरी टीम गुड़ का काम वही देती है।
13: बिल्कुल, तो देखिए आम में इस तरीके से उसकी गुणवत्ता को ठीक किया जा रहा है, क्योंकि गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो हमारे जो उत्पाद है, जो हमारे फल है, वो बाहर निर्यात किए जा सकते हैं। और देखिए गुड़ की अगर हम बात करते हैं तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा गन्ना उत्पादक है, तो गुड़ यहाँ से बाहर जा सकता है, निर्यात हो सकता है। काम यदि आपके एस्टिमेशन में कितने किसान है जुड़े हुए?
15: एट प्रेजेंट 300 प्लस हैं, मतलब शेयर होल्डर हैं। कितने किसान हमारे साथ?
16: राहुल जी, जैसे अभी हमें पता लग रहा है कि आप गुड़ को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो इसको कहाँ बेचते हैं और क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है?
15: एक्सपोर्ट करने के लिए जब हमने स्टार्टिंग में गुड़ की प्रोसेसिंग शुरू की, तब बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए, जैसे गुड़ की सेल्फ लाइफ को लेकर के 2-3-4 महीने तक ही टिक पाया, तो ये सब चीजें एक्सपोर्ट में नहीं चल पाई। उसके बाद इसका इम्प्रूवमेंट किया, गुड़ को कैसे, मतलब उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, कैसी इसकी पैकेजिंग रखनी चाहिए, किस टेम्परेचर में इसको निकालना है, ये सब बाधाएं थी जो अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं।
13: अच्छा, ये तो बात रही है कि हमें किस तरीके से अपने माल को तैयार करना है कि वो सही हो सके, बाहर भेजा जा सके। हम जानना चाहेंगे कि देखिए आप निर्यातक बने, तो ऐसी क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत एक किसान, एक आम किसान निर्यातक बन सकता है?
15: एक आम किसान जब संगठित मतलब कार्य करेगा
13: जी,
15: तो वो निर्यातक तक पहुंच सकता है। निर्यातक बनने के लिए जो मेन कंडीशन है ये है कि हमारे पास क्वांटिटी में और क्वालिटी में माल होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं।
16: तो ये जो आप गुड़ आप बाहर भेज रहे हैं, इसको आप खुद ही तैयार करते हैं या आप तो कहीं से बाजार से लेकर आते हैं, इकट्ठा करते हैं किसानों का?
15: खुद प्रोसेस करते हैं, गन्ना परचेज करते हैं हम, जितने भी हमारे किसान है जो एफपीओ में मेंबर है, कुछ उनका भी होता है, कुछ जनरली जो नॉर्मल किसान है उनसे भी गन्ना परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद गुड़ बना के एक्सपोर्ट करते हैं।
13: तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो एफपीओ में आपके जो मेंबर हैं, जो किसान हैं, तो उनको किस तरह का फायदा होता है?
15: उनको ये फायदा रहता है, उनका जो गन्ने का रेट है वो पहले ही डिसाइड हो जाता है, और मील से जो मील का रेट है उससे लगभग 100 रुपए के लगभग एक्स्ट्रा हमसे जाता है गन्ना किसानों।
13: अच्छा, तो 100 रुपए अतिरिक्त हमें आमदनी होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए इसी तरीके से हमें संगठित होना है, एकत्र होना है और एफपीओ तैयार करना है।
16: बिल्कुल, देखिए एफपीओ हमें तैयार करना है, और एफपीओ तैयार करने के लिए हमें किस किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, एपिडा उसमें क्या हमारी सहायता कर, जानकारी लेंगे ही। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे किसान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और जैसे हमने कहा कि ये फल पट्टी है, आम के बहुत सारे यहाँ उत्पादक हैं, तो आम के बाग यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं, और यहाँ एक हमारे बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, उनसे हम मिलते हैं। आपका नाम?
17: महिपाल सिंह नाम मेरा है, मेरा भी अपना एक एक्टिव चलता है बिहार के नाम से
16: जी।
17: हमने आम और लीची को इंग्लैंड में टेस्टिंग के लिए भेजा था, तो हमारा पास हुआ, कुछ किसानों का माल वहाँ पहुँच पाया है, डीएम साहब का और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से हमारा माल वहाँ पहुंचा है। तो आगे की प्रक्रिया हमने किसी एक दूसरे बायर के माध्यम से ही पहुंचाया, डायरेक्ट अपनी प्रक्रिया नहीं, लेकिन मुख्य रूप से सहारनपुर जिले के इस भेज तहसील के अंदर एक फल पट्टी है, उस फल पट्टी के अंदर लीची आम की कई प्रकार के आम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ की जो मुख्य समस्या है कि जो पका हुआ आम, इसके किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता, कोई मूल्य नहीं मिल पाता। अगर यहाँ पर ऐसी कोई छोटी छोटी इकाई प्रोसेस लगे जिसमें पल्प तैयार हो और उससे किसानों को लाभ होना प्रारंभ हो जाए।
13: बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो हमारा आम होता है जल्दी जो है नष्ट हो जाता है, उपयोग नहीं हो पाता है, तो किस तरीके से हम ऐसी क्या प्रक्रिया की जाए, उसका क्या किया जाए कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और उसको निर्यात किया जा सके, तो इस बारे में जानकारी के लिए हम चलते हैं डॉक्टर प्रमोद तोमर जी के पास।
11: यदि आप लोग अपने फ्रूट को फ्रेश बेचना चाहते हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश के जेवर में एक एयरपोर्ट बना है, वो एक्सपोर्ट के पर्पज से ही यूज होगा आप सबको, उसके द्वारा आप फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी वजह से आप अपने फ्रूट को तो उस समय फ्रेश नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप राइस करके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या उसको प्रोसेस करके करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा आपके यहाँ का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनको प्रोसेस यूनिट के लिए अनुदान देने का भी होता है, साथ में अन्नाबाद बैंक। जब आप एफपीओ बन जाओगे और आप IECRRCMC ले लोगे, क्योंकि एक ये प्रोसेस है अभी आप लोगों के पास नहीं है, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, तो आप अपने एफपीओ को पहले एज ए एक्सपोर्टर रजिस्टर कराएं। उसका प्रोसेस क्या है, कि आपने एफपीओ को जो रजिस्टर कराया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा कराया है, एफपीओ का एक लोगो दिया है, एफपीओ का नाम दिया है, सारे आपके पास पैन कार्ड बना लिया है, सब कुछ है, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको डीजीएसटी की साइट पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कर सकते हैं, 500 रुपये इसमें फीस है। उसमें जो भी डाटा भरना है उसको पीडीएफ फाइल में बना के रख लीजिए, उसमें डायरेक्टर्स के नेम, उनके पैन

0: मैन्युफैक्चर बन रहे हैं तो उसका 1 ईयर की होगी, उसके बाद में आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। जैसे ही आप अभी जैसे जुड़ जाएंगे तो आप उसमें फिर बायर सेलेक्ट कर सकते हो, आपका भी प्रोडक्ट इसमें शो होंगे कि भाई हमारे पास ये एफपीओ है, इनके पास ये प्रोडक्ट है, ऐसे इसमें बायर शो होते हैं। और एपिडा समय समय पर बायर सेलर मीट BSM बोलते हैं उसको, उसको ऑर्गेनाइज करता है। इंडिया के अंदर तो आपका हार्ट लगता है इसमें, आपका इंडेक्स लगता है उसमें, सेल लगता है उसमें, और बाहर दुबई में या अदर कंट्रियों में लगता है, जिस जिस प्रोडक्ट को लेके लगता है उसके लिए। यदि आपके पास वो प्रोडक्ट है, अभी आप उदाहरण समझ लो जैगरी के 3 FPO को जर्मनी ने भेजा गया था एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए, तो आप लोग भी जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे थ्रू प्रॉपर चैनल, अपने आप को रजिस्टर कराए और आगे बढ़े और अपनी यूनिटी को बढ़ाए। दूसरा, FPO में डेडिकेशन रखे, जो आपके किसान मेंबर बनेंगे, किसान बनेंगे, जितना ज्यादा उनका डेडिकेशन आपको मिलेगा उतनी जल्दी आपका FPO आगे बढ़ेगा। क्योंकि हर आदमी, आप विदेश की बात छोड़िए, अपनी कंट्री में भी आदमी गुणवत्ता तलाशने लगा, अच्छा माल देखने लगा, तो आप अपना यदि उत्पाद अच्छा पैदा करोगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने देश की और अपनी दोनों की साख बना सकते।
1: तो इस तरीके से हम जो है निर्यातक बन सकते हैं, और एपिडा और DGFTA की साइट पर जाकर हम ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको। और प्रमोद भाई,
2: हाँ देखिए सुभेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे डॉक्टर ये दी है कि हम किस तरीके से निर्यातक बन सकते हैं। कि हमारे किसान भाई इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं, तो अभी किसान भाइयों से बातचीत और कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, प्रश्न आ रहे हैं कि वो भी FPO बनाना चाहेंगे या अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे। जी आपका परिचय?
3: जी हमारा शुभ नाम करण सिंह चौहान है, गाँव अपना कोहबीतुलसी है। हम लोग ये चाहते हैं जो हमारी फसलें हैं, जैसे मक्का है, मूंगफली है, बाजरा है, ज्वार है, इनका हमें अच्छा मूल्य मिले और बाजार में हम इसे किस तरीके से एक्सपोर्ट करें। और जैसे कि हमारी इन फसलों में कीटनाशक आते हैं, ये सुंडी वगैरह आती है, इनकी हमें दवाइयां जो है सस्ते रेट पे उपलब्ध हों, ये कैसे उपलब्ध हों, इसकी हमारी जानकारी जरूर।
1: बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी बात है, इसकी फसलें हैं, इनको अच्छा बाजार किस तरीके से मिले और कैसे हम इसका बाहर भी निर्यात कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारे मार्केटिंग ग्रुप,
2: हाँ देखिए वो कह रहे हैं कि हम मूंगफली की खेती भी कर रहे हैं और दूसरी फसलें भी उगा लेने के लिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी है। तो भाई अब तो हमें चलना होगा ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक जो कि जनपद सहारनपुर में वो पोस्टेड है, मुकुल पंवार जी, उनके पास में चलते हैं, वो भला इस बारे में क्या बताते हैं।
1: बिल्कुल जी, तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मैं ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक सहारनपुर। सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही करने में कठिन है, उसका कारण है कि हमारे पास एक तो गुणवत्ता युक्त उत्पाद जो बाहर के

0: से कम हो। एफपीओ के माध्यम से काफी निर्यात कराया गया है और सहारनपुर से आम का काफी निर्यात होता है। पिछले सत्र में भी हमने ब्रिटेन को निर्यात कराया, यूके को कराया। इस बार जापान ने फल मक्खी की वजह से, फ्रूट फ्लाई की वजह से निर्यात पर रोक लगाई है, जिसके लिए सरकार विचार कर रही है कि किन कारणों से उसको रोका जाए और निर्यात को बढ़ाया जाए। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि समय समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं और किसानों को इस विषय में जागरूक भी किया जाता है। आपको यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार से हूँ। हमारा मुख्य कार्य निर्यात कराना ही है, निर्यात के बारे में जानकारी देते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एपीडा एक बायर सेलर मीट कराता है, तो इसी तरह हमारा विभाग भी आपके यूपीआईटीएस नोएडा में जो आयोजित होता है इंटरनेशनल ट्रेड शो, इंडस फूड आहार जो प्रगति मैदान में लगता है, इसके अलावा हमने भी बर्लिन जर्मनी में भी किसानों को भेजा, दुबई में भेजा, और किसानों को हम ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जिससे किसान और बायर मिले, अपनी जानकारी साझा करें और अपने उत्पादों को निर्यात कर सकें, ताकि निर्यात करने से देश की छवि सुधरती है, अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है और किसान भाइयों को भी इसका काफी लाभ मिलता है। तो सरकार और विभाग दोनों तत्पर हैं कि निर्यात अधिक से अधिक करा जाए और किसानों को इसका लाभ मिले।
1: जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति है वो क्या है।
0: देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 में जो सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को सीधे, देखिए हमारे जो निर्यातक हैं वो तो बहुत पहले से निर्यात करते आ रहे हैं, लेकिन जो किसान है, किसान निर्यात करने में उतना सक्षम नहीं है।
1: जी
0: तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि निर्यात नीति बनाई, जिसके तहत उसने ये ऐसी व्यवस्था बनाई कि किसान जो अपना उत्पाद तैयार करता है वो अपने उत्पाद को सीधे निर्यात कर सके। इस नीति के तहत हम लोग एक्टिव से क्लस्टर बनवाते हैं। 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल जितना होता है, यदि आम की कोई फल पट्टी है, आम का 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, या बासमती धान है या अन्य कोई सब्जी है, तो उसका हम लोग क्लस्टर बनवाते हैं। क्लस्टर बनवाने के बाद सरकार द्वारा 10 लाख का अनुदान दिया जाता है विभाग के द्वारा, जिसमें प्रथम वर्ष 4 लाख यानी 30%, 4 लाख कैसे, जो उत्पाद आपने तैयार किया उस उत्पाद का 30%, जी उत्पादन का 30% आपको निर्यात करना होगा, तभी ये आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अभी जो प्रोसेसिंग यूनिट की बात की गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विभाग से प्रोसेसिंग यूनिट का भी प्रावधान है। किसान जब निर्यात करेगा तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए वो आवेदन कर सकता है और निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी, जिसके लिए सरकार अनुदान देगी। और उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के तहत किसानों के लिए समस्त सुविधाएं सरकार बायर सेलर मीट कराती है, एग्जीबिशन में प्रतिभाग कराती है, सारी अनुदान व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती है, एफपीओ को अनेकों प्रशिक्षण भी कृषि निर्यात के दिए गए हैं और अनेकों प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी गई है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। और इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को इन सब सुविधाओं का लाभ उठाना है और जो विपणन विभाग द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उनका हमें लाभ लेना है। और प्रमोद जी, देखिए हमारे जो किसान भाई हैं
0: जी जी
1: उन्हें खेती बाड़ी तो करनी है, लेकिन जैसे हम एक निगाह अपने खेत पर रखते हैं तो एक निगाह हमें अपने बाजार पर भी रखनी है।
2: वो बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना है, जैसे कि भी हम कहते हैं ना कि हमारा जो खेती का आकार है वो कम होता चला जा रहा है, उत्पादन हमारा भाई, उसको बढ़ाने के लिए हमें कैसे करना होगा, क्या काम करना होगा, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा, तो अगर हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना है, एफपीओ से हमें जुड़ना होगा, अपने उत्पाद को निर्यात करना होगा। और हमारे जो ये किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं।
1: और देखिए, जानते हैं कि एफपीओ के बारे में इनके क्या विचार हैं और निर्यातक हमारे किसान भाई बन सके उसके बारे में क्या विचारधारा हमारे भाइयों के मन में चल रही है। तो आइए कुछ किसान भाई से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। जी, आपका परिचय?
3: अंजेश कुमार का हूँ, जहानपुर।
1: पास में गाँव है आपका?
3: जी, पास में ही।
1: अच्छा, एफपीओ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप भी एफपीओ में जुड़ना चाहते हैं?
3: जी, अगर हमें अपने मूल्य अच्छे लेने तो जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो इन मंडियों में हम लूट रहे हैं। मंडी में जाते हैं, पहले तो जो बीच में दलाल है वही हमारे रेट नहीं देखता, उसके बाद आड़ती लोग बैठे हैं और उचित मूल्य ना मिलने पर किसान परेशान है
1: जी।
3: और अगर हम अपना उचित मूल्य चाहते हैं तो हमें एफपीओ से जुड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा।
2: बहुत अच्छी बात आपने की है। तो जो आपकी ये खेती बाड़ी है, इसमें जो भी आप फसल पैदा कर रहे हैं, आप एफपीओ से जुड़कर उसको कभी आपने सोचा कि उसको निर्यात भी करें और विदेशी मुद्रा हमारे देश में आए?
3: अभी तो यानी अगर साथ ही जो है वे जुड़े हुए हैं

0: गन्ना लगाते हैं तो गुड़ और शक्कर हम उनके द्वारा निर्यात करेंगे।
1: बहुत अच्छी बात
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी सोच है। देखिए हमें जो भी उत्पाद हम लेते हैं चाहे कोई भी फसल हो तो उसका हमें निर्यात करना है, अच्छे हमें बाजार में भेजना है, तभी देखिए हमें उसका सही लाभ मिल सकता है, सही मूल्य मिल सकता है। एक और हमारे साथ में किसान भाई हैं, उनसे हम मिलते हैं। जी आपका नाम?
2: मेरा नाम मदन पाल सैनी है, ग्राम दौड़मपुर से, ब्लॉक मुजफ्फराबाद, जिला सहारनपुर से हूँ। सर एक किसान के पास एक समस्या बहुत जबरदस्त है, क्योंकि तो किसान को प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वो ना एफपीओ से जुड़ पाता है और ना ऑर्गेनिक खेती कर पाता है, क्योंकि जब तक ये चीजें किसान को बार बार नहीं मिलेगी तब तक वो कर नहीं पाएगा। तो इस चीज का मैं भी चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी फसलों को ऑर्गेनिक पैदा करे और बाहर एक्सपोर्ट करे, क्योंकि देखो जब वो विषैले हो जाएंगे, जहरीले होंगे तो एक्सपोर्ट

0: किसान भाई इस समय सुन रहे हैं
1: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ
0: द्वारा
2: लाइव चौपाल।
3: अरे मुखिया जी, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है
4: फिर भी उदास बैठे हो भाई, क्या बात है?
5: अरे मास्टर जी, फसल तो बढ़िया हुई है पर सोच रहा हूँ बिकेगी कैसे। फसल का दाम भी तो अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो किसान की मेहनत उसके घर तक आएगी।
3: मुखिया जी, अब हम किसानों को जागरूक होना है और आसपास के किसानों को इकट्ठा करके संगठन बनाना है, यानी अपना FPO तैयार करना है।
5: FPO तैयार करना है? अरे मास्टर जी, इससे क्या होगा?
3: मुखिया जी, FPO तैयार करके हम अपनी फसल को खुद खरीदेंगे, खुद बेचेंगे और खुद दूसरे देशों को निर्यात भी करेंगे।
5: अरे वाह मास्टर जी, इससे तो विदेशी मुद्रा भी देश में आएगी और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
6: किसान भाइयों को फसल उत्पादन के साथ साथ संगठित होकर किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO बनाना है और अपनी फसल को स्वयं खरीद कर दूसरे देशों को निर्यात करना है। बासमती निर्यात विकास।
7: बिल्कुल, और जब मिलेगी खेती बाड़ी में इस चीज का ध्यान रखेंगे, रसायन मुक्त खेती, अच्छा मूल्य भी मिलेगा, हम निर्यात करेंगे तो अच्छे जो विदेशी मुद्रा है वो भी हम लेकर आएंगे और जैविक खेती की ओर हमें बढ़ना ही होगा।
8: और देखिए, हमारे और भी किसान भाई यहाँ, और इस चौपाल के बारे में हम बता दें कि ये जो चौपाल आज की लगी हुई है ये जनपद सहारनपुर के विकासखंड मुजफ्फराबाद के गांव कोठड़ी बहलोलपुर में लगी हुई है और सहस्त्रा नदी के तट पर लगी है। यहाँ पर ये फार्म हाउस है, बहुत ही प्राकृतिक छटा यहाँ पर बिखेर रही है। क्यों प्रमोद जी?
7: बिल्कुल, देखिए बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। किसान भाई बहुत ही, ये मैं तो कहूंगा कि प्रकृति का आनंद यहाँ बैठे हुए ले रहे हैं, बातचीत हो रही है, चौपाल का आनंद ले रहे हैं, जानकारी मिली रही है। और भाई जो भी काम यहाँ कर रहे हैं, जो भी जानकारी हम अपने तक पहुंचा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाएं, कृषि के जो उत्पाद है उसको निर्यात करें।
8: अब देखिए प्रश्न ये आता है कि जो हम फसल उगाते हैं, जो हमारे उत्पाद होते हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, तो इस बारे में हम डॉक्टर प्रमोद तोमर जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि अधिकतर हमारे भाइयों क्या रहे हैं।
9: जब हम खेती करते हैं और वो भी रसायन मुक्त करते हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद आपने तैयार कर लिया, लेकिन जो आपसे खरीदेगा या आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें वो पूछेगा कि भाई ऑर्गेनिक है तो आपके पास क्या इसकी जांच है, पहचान है, तो उसके लिए एपीडा द्वारा EDF जो बनाया गया है वहाँ पे ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैब भी है और उसने उत्पादों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। पहले हम सिर्फ बासमती के उत्पाद की ही टेस्ट करते थे, अब हम धान्य फसलों के सभी उत्पाद और फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स का भी हम टेस्टिंग करेंगे। आप हमारे यहाँ ऑर्गेनिक के लिए अपने सैंपल को भेजिए और आपको लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी, आप उसको भेज सकते।

0: और आप टेस्ट कराएं, उससे ये भी पता चलेगा कि जो चीजें आप डाल रहे हो वो वाकई में उसी लिमिट में डली है नहीं डली है। तीसरा क्या है कि आपका खर्चा कम होगा। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आप आजकल जो एक हमारा अभियान चला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, खेत बचाओ अभियान, 1 जून से 30 जून तक खेती बचाओ अभियान चला हुआ है। वो इसलिए चला है कि हम उसमें जो उसको चाहिए था ना सस्ता उत्पाद जैविक खेती में जो आप डालते हो वो ही देने के लिए वो अभियान चला है कि ताकि हमारे किसान फिर से ऑर्गेनिक की तरफ आए, जैविक उत्पादों को खेती में लगाए। फसल उगाते हुए भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें रसायनों का यूज नहीं करना पड़ता और आपकी फसल गुणवत्ता युक्त पैदा होती है। और ऐसी फसल को पैदा करके आप यदि चाहें तो उसके सैंपल टेस्ट करा के पक्का भी कर सकते हो कि भी हमारा जो उत्पाद है वो ऑर्गेनिक है। और ऐसी एपिडा के द्वारा एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पूरे भारत में चला हुआ है और हमारे एपिडा में एनपीओपी का एक सचिवालय बना हुआ है। जैसे आप एक्सपोर्ट करते ना भारत के अंदर ही करिए तो उसके लिए टीजीएस मेथड है, हर स्टेट में वो एजेंसी बनाई हुई है, वो टेस्टिंग और रिपोर्ट आपको दे देगी। जब आपको एक्सपोर्ट करना है तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट एनपीओपी के द्वारा, एपिडा के द्वारा आपको ऑर्गेनिक के लिए मिलेगा तो आप अपने उत्पाद को बाहर निर्यात कर सकते हैं। हमारा हमारे जो चेयरमैन है जो अभिश्री अभिषेक देव जी, उनका उद्देश्य भी है यार, पूरे देश का सपना है कि अपना देश पूरी दुनिया के लिए खाद्यान्न की टोकरी बने, मतलब अपने देश में पैदा हो और पूरी दुनिया में हम उसको बेचें और वो भी गुणवत्ता युक्त उत्पाद।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस तरीके से हमें गुणवत्ता युक्त उत्पाद पैदा करने हैं और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि हम उसका एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और उससे तय हो जाएगा कि जो हमारा उत्पाद है, जो फल है, सब्जी है, अनाज है, वो जैविक है, उसमें किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया है और फिर उसको हम निर्यात कर सकते हैं तो हमें मुनाफा मिलेगा।
2: और सुभेंद्र भाई देखिए चौपाल पर बैठे हुए जो किसान हैं वो इशारा कर रहे हैं कि हमें कुछ कहना है, देखते हैं किसान भाई क्या कहना चाह रहे हैं।
3: सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक योजना थी प्रधानमंत्री की, उसके तहत मैंने एक ट्रेनिंग करी थी ऑर्गेनिक की और एक गाय और 150 बीघे जमीन में बताया गया था उसमें कि उससे खेती हो सकती है, पर किसान के पास वो चीज है रही नहीं आज के डेट में और किसान दाए बाएं पेस्टिसाइड और खाद वगैरह डाल रहा है, उससे कुछ नहीं होता क्योंकि हमारे जो पोषक तत्व है जमीन के वो सारे खत्म हो चुके हैं, जबकि हमारी जमीन के अंदर 18 पोषक तत्व है 17 और आज की डेट में अगर चेक कराओगे 7 या 8 ही होंगे, तो इसलिए हमारी जो पैदावार है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है।
2: हाँ देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और जो हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो उसके लिए तो हमें अपने खेतों की मिट्टी की जांच करानी बहुत जरूरी होती है, उसी से पता चलता है कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्व हैं। और सुभेंद्र भैया देखिए अब हमारे जो किसान बातें हमने कर ली हैं और एपिडा से भी हमारी बातचीत हुई है, हमारी बातचीत कृषि विपणन निरीक्षक से भी हुई है, अब हमारे जो चौपाल पर उपस्थित किसान भाई हैं और हमारे जो यहाँ अतिथि आए हुए हैं उनका धन्यवाद चलते हैं अपने कार्यक्रम अधिशासी अंकित सैनी जी के पास।
1: जी बिल्कुल, तो आभार व्यक्त करने के लिए अंकित सैनी जी,
4: यहाँ पर मौजूद सभी किसान भाइयों और बीडीएफ से आए हमारे वैज्ञानिक प्रमोद तोमर जी और हमारे मार्केटिंग सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर मुकुल पवार जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन तरीके की चौपाल से और आज ही चौपाल से एक बात निकलकर सामने आती है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए, जो एक मार्केट में चल रहा है ऑर्गेनिक जिसको जैविक बोले वो हमारा प्रोडक्ट जैविक होना चाहिए। जैविक का सर्टिफिकेट आप कहाँ से लेंगे वो आज हमें पता चला कि आज एपिडा बीडीएफ मेरठ में उस तरीके की फैसिलिटी आज मौजूद है। और जैसा कि कहा कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो ऐसे ही किसानों को संगठित होकर के एफपीओ बनाना है, करके क्लस्टर बनाना है, तो ये पहल आप लोगों के बीच में से ही करनी होगी और करनी भी होगी। इसमें ऐसे 2-3 शख्स मौजूद हैं, राहुल जी हैं और एक जो लीची और आम के निर्यातक आपके बीच में मौजूद हैं, तो आप लोगों को भी कहीं नहीं जाना, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, आपके सामने मौजूद है, उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ आगे आप लोग जुड़ते हैं और आप और भी श्रोता जो है वो इनसे जुड़ पाते तभी हमारी इस तरीके की चौपाल आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो सफल होगा। एक बार फिर मैं आप सभी का, यहाँ मौजूद सभी लोगों का और जो आकाशवाणी

0: रेडियो के माध्यम से हमें। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सैनी साहब और सुभेंद्र भैया। देखिए आज की चौपाल पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अब इस चौपाल को यहीं पर संपन्न करते हैं और अपने सभी सुनने वालों को लिए चलते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के स्टूडियो में।
0: बिल्कुल, और देखिए आज की जो हमारी चौपाल लगी हुई थी वो थी जनपद सहारनपुर के विकास खंड मुजफ्फराबाद के गांव कोठली बहलोलपुर में, और हमारी आज की चौपाल का सफर बस यहीं तक। और कार्यक्रम अधिशासी अंकित सैनी जी के साथ हमारे साथ जितेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह के साथ मैं सुरेंद्र सिंह आप सभी को स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। किसान भाइयों नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: किसान भाइयों को फसल उत्पादन के साथ साथ संगठित होकर किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO बनाना है और अपनी फसल को स्वयं खरीद कर दूसरे देशों को निर्यात करना है। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान BEDF मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
3: अब नहीं रहेगा कोई भी सवाल
2: जब किसान भाई सुनेंगे
4: आकाशवाणी नजीबाबाद से
5: लाइव चौपाल।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
4: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
3: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
4: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
6: अभी आप सुन रहे थे कृषि निर्यात लाइव चौपाल जिसके प्रायोजक थे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ, जिसमें आज हम आपको लेकर गए जनपद सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद के गांव कोठड़ी बहलोलपुर में, जहां उपस्थित थे हमारे टीम के सदस्य कार्यक्रम अधिशासी अंकित सैनी और उनके साथ दे रहे थे सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं आपको पुनः याद दिला दें आज शाम 7:32 पर सुनेंगे आप सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए नौहे। कानूनी सलाह सुनेंगे आप आज शाम 6:45 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे एडवोकेट खुर्शीद मोहन जैदी से एस की नौटियाल की बातचीत, जिसका विषय रहेगा बाल विवाह निषेध कानून। हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आज संध्या 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आज शाम 5:15 पर, जिसमें आज के क्रम होंगे बुझो तो जाने, कुछ खास है आज, ये शाम गजलों के नाम, यंग अचीवर्स, रहस्य सीरीज और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। मेरा सपना उन्नत भारत में सुनेंगे आप नशा मुक्त भारत अभियान, समय रहेगा आज शाम 5:00। फिल्मी कव्वालिया सुनेंगे आप आज दोपहर 2:30 पर। फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर सुनिएगा आज रात 10:30 पर। हेलो नजीबाबाद सुनेंगे आप आज रात 9:30 पर। एक ही फिल्म से सुनिएगा आज रात 8:30 पर। गीत संध्या का समय रहेगा आज रात 8:00 और छाया गीत सुनेंगे आप आज शाम 6:55 पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर।

0: पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल

0: शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद्र स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी कव्वालियाँ। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियों में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त अलका सिंह। तो चलिए श्रोताओं, सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम की पहली कव्वाली, जिसे हमने लिया है फिल्म दीवार से। इसे आवाजें दी हैं आशा भोसले और साथियों ने। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है RD वर्मन का।

0: और पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए,
0: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
0: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियों में। ये श्रोताओं पेश है कार्यक्रम की ये अगली कव्वाली, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है और आवाजें दी हैं, फिल्म है धर्मा।

0: अभी आपने सुनी फिल्म धर्मा की ये कव्वाली, जिसे आवाज़ें दी थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। कव्वाली लिखी थी वर्मा मलिक ने और संगीत में पिरोया था सोनिक ओमी ने। और अब आपको सुनवाते हैं ये ज़रूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतज़ार किस बात का?
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और लीजिए पेश खिदमत है ये अगली कव्वाली, जिसे आवाज़ें दी हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। कव्वाली लिखी है हसन कमाल ने और संगीत में पिरोया है रवि ने।

लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम की ये अंतिम कव्वाली, जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने, इसे आवाज़ दी है मन्ना डे ने और फिल्म है जंजीर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी कव्वालियाँ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर दिन के 3 बज रहे हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा संपन्न होती है। आज शाम 5 बजे हमारी संध्याकालीन सभा में आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय संध्या के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत।

आकाशवाणी की संध्याकालीन सभा के प्रथम कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये अंक लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो साथी फरीना। श्रोताओ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है नशा मुक्त भारत अभियान। श्रोताओ, उन्नत भारत का सपना केवल देश की आर्थिक प्रगति से पूरा नहीं होता है, इसके लिए हमें एक स्वस्थ, जागरूक और सकारात्मक समाज के निर्माण की भी जरूरत होती है। लेकिन आज हमारे देश और समाज के सामने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। नशे की बुरी आदत केवल किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उस बंदे से जुड़े परिवार की खुशियां, देश के युवाओं के भविष्य और राष्ट्रीय की प्रगति पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर डालती है। हमारे देश में मादक पदार्थों और शराब की लत लंबे समय से चिंता का विषय बनी रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारी भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश की जनता को नशे के बुरे प्रभावों के प्रति जागरूक करना है और साथ ही उन्हें नशे मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करना है। पिछले कुछ वर्षों से ये अभियान केवल एक सरकारी पहल नहीं रह गया है, अब ये अभियान जन भागीदारी का एक सशक्त आंदोलन बन गया है। इसी क्रम में 17 जून 2026 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा नशा

मुक्त भारत सप्ताह 2026 के लिए एक विशेष डैशबोर्ड और लघु फिल्म का भी शुभारंभ किया गया। 17 जून से 26 जून तक चलने वाली ये पहल हम सभी की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान को बखूबी आगे बढ़ा रही है। श्रोताओं, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अनेक समस्याओं की शुरुआत है। ये आपके सपनों को छीन लेता है, आपकी सोच और शारीरिक क्षमता को भी कमजोर कर देता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खुद भी नशे से दूर रहें और अपने परिवार, दोस्तों, समाज को भी इसके प्रति सचेत करें, तभी उन्नत भारत का सपना साकार हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हमारे देश के युवाओं की ऊर्जा नशे में नहीं बल्कि शिक्षा, खेल, विज्ञान और राष्ट्र के निर्माण में नजर आए। इन्हीं भावों से बुना एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो हर पल आपसे यही कहता है कि सुबह बुरा है, शाम बुरा है, सुबह बुरा है, शाम बुरा है, नशे का तो हर पल अंजाम बुरा है।

श्रोताओं, अभी आपने एक संदेशपूर्ण गीत सुना जिसने हमें बड़े ही सरल शब्दों में ये समझाया कि हमारा ये जीवन अनमोल है और इस जीवन के हर सपने को पूरा करने के लिए हमें हौसले की जरूरत होती है, ना कि नशे की। क्योंकि नशा पल भर की राहत का भ्रम देता है, वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दर्द की दास्तान बन जाता है। नशा कभी भी किसी का सच्चा साथी नहीं बनता, ये मुस्कुराते चेहरों से खुशियां और घरों से सुकून छीन लेता है। जिंदगी अनमोल है, इसे धुएं में मत उड़ाइए, अपनी उम्मीदों को यूं ना ठुकराइए, क्योंकि जिंदगी की खुशियां इस नशे के सामने फीकी पड़ जाती हैं। आज हम सबको आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने युवाओं को सही दिशा दें और सही दिशा देकर उन्हें जीवन के सकारात्मक मूल्य से जोड़ें, उनके

के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें जहां वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और परिश्रम का सहारा ले, न कि अपने जीवन को नशे के आदि बनकर अपने जीवन को खराब करें, तबाह करें। श्रोताओं, नशे से दूरी रखना हम सब के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नशा एक आदमी की जिंदगी खराब नहीं करता है। नशे से दूरी बनाना अपने सपनों को पूरा करना है। नशे से दूरी बनाइए, अपने सपनों से नाता निभाइए, क्योंकि नशे से दूरी रखने में ही समझदारी है और यही उन्नत भारत की सबसे अच्छी तैयारी है। तो आज हमने जो आपको जानकारी दी है नशा मुक्त भारत अभियान की, हमें उम्मीद है कि आप आज की ये जानकारी सुनकर अपने जीवन को नशे से दूर रखेंगे और दो पल की धुएं की इस मस्ती से दूर रहेंगे। तो चलते चलते आपसे यही कहना चाहते हैं कि नशे से अपनी ज़िंदगी को दूर रखें, धुएं में अपनी ज़िंदगी को ना गवाएं और हमेशा जीवन में नशे को आप ना कहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हाँ कहिए। इसी के साथ मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की।

रात के हमसफर फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा आज रात 10:30 पर। और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बातें करेंगे आपकी गुदगुदाती हंसाती यादों के बारे में। फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। एक ही फिल्म से सुनिएगा रात 8:30 पर। गीत संध्या रात्रि 8 बजे और छाया गीत का समय रहेगा शाम 6:55 पर।

कानूनी सलाह कार्यक्रम में एडवोकेट खुर्शीद मोहन जैदी से एसके नौटियाल की बाल विवाह निषेध कानून पर पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर। किसान भाई अपना लोकप्रिय कार्यक्रम सुनेंगे रोजाना की तरह ही संध्या 6:05 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत किसान भाइयों की खेती और पशुपालन संबंधी पत्रोत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री सुनिएगा और साथ ही सुनिएगा खेतों की मेड़बंदी का लाभ और लखपति दीदी योजना पर चर्चा। समय एक बार फिर बता देते हैं संध्या 6:05 पर।

सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की सौगातें होंगी बुझो तो जाने। कुछ खास है आज ये शाम, गजलों के नाम, यंग अचीवर्स, लव स्टोरीज, रहस्य सीरीज और बूस्टर। इसके साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का समय वही संध्या 5:15 पर।

संध्या 7:32 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के स्वर में नोहे।

0: आवाज में अपनापन हो तो बात बन जाती है, दिल से निकली दुआ मुलाकात बन जाती है, और जब साथ हो आप जैसे लिसनर्स का तो हर महफिल यादगार बन जाती है।
1: जी हाँ, हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आज प्रोग्राम में आप सभी के बीच हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सना।
0: हेलो दोस्तों, सना और आप सभी के साथ प्रोग्राम से जुड़ गई हूँ मैं आपकी अपनी साथी शिवानी। वैसे सना एक बात कहूँ?
1: बिल्कुल कहो शिवानी।
0: सना, सफर चाहे लंबा हो या छोटा, साथ अगर अच्छा हो तो यादगार बन जाता है ना?
1: वाकई, और पता है उन पलों में जब साथ हो पसंदीदा संगीत का तो हर पल खास भी बन जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, और आज के इस खूबसूरत सफर को और भी खास बनाएंगे
1: वो ऐसे दोस्तों, शाम की खामोशी में कुछ नगमे बिखेरेंगे, दिल की अनकहीं बातों को सुरों में समेटेंगे।
0: जो कहना मुश्किल हो लफ्जों में कभी, उसे आज हम गजलों के जरिए कहेंगे।
1: बिल्कुल, आज है फ्राइडे स्पेशल सेगमेंट ये शाम गजलों के नाम, तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत सफर के लिए हम दोनों के साथ।
0: लेकिन सना, क्यों ना इस खूबसूरत सफर से पहले दोस्तों से पूछ लेते हैं आज का सवाल। और सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है?
1: और इस सवाल का सही जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: और आइए अब इस सफर को और यादगार बनाते हैं इस पहली प्यारी गजल के साथ।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
5: अरे भाई साहब, थोड़ा सा पीछे होके खड़े हो जाइए।
7: अरे मैडम, देख रही हैं आप, बस में भीड़ इतनी है, कहाँ खड़ा हूँ तुम बता दो।
5: अरे अरे अरे, मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो बदतमीज, क्या कर रहे हो ये?
7: अरे मैडम, मैं तो आईटीआई कर रहा हूँ। और आप?
6: जी हाँ, मजा आ गया।
5: जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, अगर उनमें नशा आ जाए तो सिर्फ एक युवा नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है।
8: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि पूरे समाज, देश और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है।
5: हमारा आज का विषय है नशे के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
8: फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नशा आखिर है क्या।
5: नशा केवल शराब या सिगरेट तक सीमित नहीं है दोस्तों। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी लत इंसान के शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाए और जिसके बिना वो सामान्य महसूस ही ना करे, नशीला पदार्थ कहलाता है।
8: आज सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर युवा नशे की ओर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं।
5: इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे दोस्तों का दबाव, सोशल मीडिया और फिल्म का प्रभाव, तनाव और मानसिक दबाव, पढ़ाई या करियर की चिंता, गलत संगति या फिर जिज्ञासा कि बस एक बार ट्राई करके देखते हैं।
8: लेकिन याद रखिए दोस्तों, नशे की शुरुआत अक्सर सिर्फ एक बार से ही होती है और धीरे धीरे वही आदत भी बन जाती है।
5: अब इसके बाद जानते हैं अवैध तस्करी क्या होती है। जब नशीले पदार्थ का उत्पादन, खरीद, बिक्री या एक स्थान से दूसरे जगह तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचाया जाता है तो उसे अवैध तस्करी कहते हैं।
8: नशा पल भर का सुकून देता है दोस्तों, लेकिन पूरी जिंदगी का चैन भी छीन लेता है।
5: आइए दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके दुरुपयोग के बारे में जागरूक करेंगे और एक सुरक्षित, स्वास्थ्य और नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे।
8: इसी के साथ कुछ खास है आज में, बस दोस्तों आज इतना ही। और दोस्तों, अब समय है हमारे खास सेगमेंट यंग अचीवर्स का। इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी युवा प्रतिभा से जिसने अपनी मेहनत, लगन और सटीक निशाने से आर्चरी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए सुनते हैं हमारे इस होनहार युवा साथी इशिका से रुमान परवीन की खास बातचीत।
9: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट यंग अचीवर्स में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं यंग अचीवर्स से। जी हाँ दोस्तों, जो कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, ऐसे ही एक यंग अचीवर आज हमारे बीच मौजूद है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
10: इशिका।
9: इशिका, कैसी हैं आप?
10: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
9: हम भी बहुत बढ़िया है। वैसे इशिका, पहले हमारे लिसनर्स को भी बता दो, क्योंकि हमारे लिसनर्स अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिर आपने अचीवमेंट क्या हासिल की है।
10: मैं नेशनल प्लेयर हूँ और इंटरनेशनल खेलने के लिए जाऊंगी आर्चरी में।
9: ओह, तो आप आर्चरी प्लेयर हैं?
10: यस।
9: बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको कि आप इंटरनेशनल खेलने जा रही हैं।
10: जी।
9: इशिका, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं?
10: मैं सादीपुर से बिलोंग करती हूँ।
9: और आपकी स्टडीज कहाँ से हुई है?
10: वो भी मथुरा में ही चल रही है, मथुरा में ही स्टडी करती हूँ।
9: अच्छा, क्या कर रही हैं आप आजकल?
10: मैं 10th है इस बार।
9: अभी आप 10th की स्टूडेंट हैं?
10: जी।
9: ओके, तो इशिका आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि आपका ये आर्चरी में जो इंटरेस्ट है ये कैसे हुआ?
10: मेरी बहन निष्ठा है, वो भी नेशनल पार्टिसिपेट है। पापा ने बोला कि आप भी एक बार ट्राई करके देखो, तो मैंने करा, फिर मैं नेशनल चैंपियन बनी।
9: अच्छा, तो आपने अपना पहला मैच कहाँ पर खेला था?
10: मैंने अपना पहला मैच सोनीपत में खेला था।
9: कैसा लग रहा था जब आप पहला मैच खेलने जा रही थी?
10: फर्स्ट मैच में डर तो लग रहा था, पर फिर जब खेला तो फिर कॉन्फिडेंस आया एक, फिर अगले मैच में और अच्छा हुआ, फिर जब नेशनल मेडल लिया उसके बाद फिर और अच्छा कॉन्फिडेंस आया।
9: अच्छा अच्छा, तो आप हमें बताइए कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा है पूरी जर्नी में?
10: इसमें यही रहा है, ओलंपिक मेडलिस्ट।
9: अच्छा, ओलंपिक जीतना है आपको?
10: यस,
9: होप सो कि आप जीते। तो इशिका, जैसे कि आपने पढ़ाई के साथ में अपना मेडल्स और अपनी आर्चरी की जो जर्नी रही है उसको मेंटेन करके रखा है, तो कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली है आपने?
10: यस, मथुरा में ट्रेनिंग चलती है, पढ़ाई वढ़ाई भी वहीं कंटिन्यू रहती है उसमें।
9: अच्छा अच्छा, तो आपका जो स्कूल है वहीं पर आपकी ट्रेनिंग? जी जी जी। तो आपके कोच वगैरह वहीं पर होंगे?
10: जी, मेरे कोच वहीं पर हैं मथुरा में।
9: अच्छा, तो जैसे कि हमारे लिसनर्स हैं वो यंग अचीवर्स में आज आपको सुन रहे हैं, वो भी आगे इस फील्ड में अगर जाना चाहें तो वो किस तरह आ सकते हैं आगे?
10: वो आ सकते हैं इस चीज में, ना एज का वो कुछ होता है ना किसी हाइट वाइट का, इसमें आ सकते हैं, बहुत अच्छा गेम है।
9: ओके, तो उन्हें पहले कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी होगी या कहाँ से सीख सकते हैं?
10: नहीं, वो मथुरा में अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, वहीं से कर सकते हैं। ट्रेनिंग भी कंटिन्यू वहीं पर होती है, शुरू से ट्रेनिंग कराते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब पूरा बॉडी पोस्चर हर चीज बनने लग जाती है उसके बाद फिर धनुष का इवेंट उन्हें दिलाते हैं सर।
9: अच्छा
10: जी,
9: तो आपको पहला धनुष का इवेंट कब मिला था?
10: मुझे पहला इवेंट अभी कुछ टाइम पहले ही मिला था, क्योंकि मैं अभी गई थी। अच्छा। अभी तो 2 ही साल हुए हैं।
9: और घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा?
10: घर वालों का मेरे पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे हमेशा, हार जीत तो इसमें रहती है, पापा ने हार में भी साथ दिया और जीत में भी, दोनों में बहुत अच्छा सपोर्ट करा है मेरा।
9: इशिका, जैसे कि आपका लाइफ स्केड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, स्कूलिंग्स को आर्चरी के साथ में आप मेंटेन कर चलती हैं, तो उसके बीच में जब बहुत ज्यादा आप बिजी या हैक्टिक लाइफ को फील करती हैं तो क्या करती हैं आप कुछ एंटरटेनमेंट के लिए या खुद को फील कराने के
10: तब लिए? मैं गीता पढ़ती हूँ।
9: गीता पढ़ती हूँ
10: जी,
9: बहुत अच्छी बात है।

0: और गीता के साथ में आपकी कुछ हॉबीज या कुछ?
1: मेरी हॉबीज तो सॉन्ग
0: सॉन्ग सुनना आपको पसंद
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आज हम अपने लिसनर्स को वही सुनवाएंगे।
1: मेरा फेवरेट सॉन्ग है दूरू दूरू
0: दूरों दूरों में नया सॉन्ग जो आया
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: बिल्कुल आज हम अपने लिसनर्स को फिर वही गाना सुनवाएंगे।
2: दूरों दूरों में।

0: पर आप हमें बताइए कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं।
1: मेरे आगे का यही प्लान्स है, मुझे कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करना है, और अब इस बार इंटरनेशनल खेलने का एशिया कप में सिलेक्शन लेना है, और कैडेट भी ट्रायल होता है, कैडेट ट्रायल में भी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन लेना है और ओलंपिक तक जाना है।
0: ओलंपिक तक जाना है, आई होप कि आप ओलंपिक तक जाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
1: थैंक यू।
0: इशिका, तो आप जैसे कि कह रही हैं आपको इंटरनेशनल खेलना है, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है?
1: जी, अब यहाँ से जाने के बाद फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है
0: उसके बाद। प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल। तो इशिका, जैसे कि हम अपने लिस्टर्स को बता चुके हैं कि आप नेशनल चैंपियन रही हैं, तो आपने लास्ट मैच कहाँ पर खेला?
1: मैंने अपना लास्ट मैच गुजरात में खेला था।
0: और क्या क्या मुश्किल आई थी आपको?
1: मुश्किल तो बहुत आई थी, क्योंकि मेरे स्कैपला में इंजरी हो चुकी है, मतलब अपनी शूटिंग पे भी बहुत फोकस करा, सब कुछ करा, क्योंकि इवेंट उठा नहीं रही थी कुछ टाइम से, क्योंकि दर्द इतना हो रहा था,
0: बहुत मुश्किल
1: रहा, बहुत मुश्किल रहा है।
0: और ऋषिका, आज तक का आपका सबसे ज्यादा यादगार सफर वाला कौन सा मैच रहा है?
1: वो मेरा आंध्र देश का रहा है, जिसमें मैंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करा था, उसमें मैंने बहुत मतलब मेडल भी लिया था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस टाइम मेरा।
0: बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस
1: वंस अगेन। थैंक यू।
0: तो इशिका, आपको आज हमारे साथ जुड़कर कैसा लग रहा है?
1: मुझे अच्छा लगा।
0: आपको अच्छा लगा? हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। थैंक यू,
1: वेलकम।
2: शाम की इस खामोशी में अगर आपको कोई अनजानी आहट सुनाई दे तो घबराइएगा नहीं, हो सकता है वो सिर्फ एक कहानी हो या शायद कुछ और। जी हाँ, मेरी इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट रहस्य सीरीज का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूल भुलैया सीजन 2 एपिसोड 2, जिसे लिखा है हमारे साथी मोहम्मद आदिल सैफी ने।
3: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है भूल भुलैया, और यह है रहस्य सीरीज की दूसरी कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 2।

अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। 9 अगस्त सन 2008 राजस्थान के पोखरण कस्बे में मौजूद हवेली में अब से 3 दिन बाद यानी 12 अगस्त को फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला था, क्योंकि राजा गोवर्धन सिंह का इकलौता बेटा कुंवर राजवर्धन अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस इंडिया लौट रहा था। पार्टी में शामिल होने के लिए देश के बड़े बड़े वीआईपीज और शाही मेहमानों को इनवाइट किया जाता है, लेकिन इस चकाचौंध और खुशी के बीच राजा गोवर्धन सिंह एक अजीब अनजाने खौफ से जूझ रहे थे। उन्हें पल पल ये डरावना एहसास हो रहा था कि कोई अनदेखा साया उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कुछ तो है जो हवेली के लंबे गलियाप में उनके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। अब पार्टी से एक दिन पहले यानी 11 अगस्त सन 2008 की रात के तकरीबन 10:12 पर राजा साहब उस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन हवेली में फंक्शन जो था, लेकिन राजा साहब को नींद नहीं आ रही थी।

वो अपने बिस्तर पर करवटे बदल रहे थे। तभी एक आवाज उनके कानों से टकराती है। कोई बहुत धीमी आवाज में हवेली के बंद कमरों में बात कर रहा है। कभी किसी के सिसकने की आवाज है, तो कभी किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज। राजा साहब उस वक्त पसीने से पूरी तरह लथपथ हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। राजा साहब अपने पहरेदारों को आवाज लगाते हैं उनका नाम लेकर और उनको पुकारते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। राजा साहब तलवार म्यान में से निकालते हैं और उन आवाजों के पीछे चल पड़ते हैं। आवाजों को सुनते सुनते राजा साहब अब उस कमरे के आगे आकर खड़े हो जाते हैं जो कमरा सालों से बंद था। देखने पर यूं तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के चारों ओर और उसके आसपास बिखरा हुआ सिंदूर और कुछ चूड़ियां वगैरह ये इशारा कर रही थी कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। महल में उस कमरे को लेकर मान्यता थी कि कोई भी उस कमरे को नहीं खोलेगा। उस कमरे के दूसरी ओर एक ऐसा राज दफन था जिस पर से कोई भी पर्दा नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि वो राज बहुत ही डरावना था। तभी राजा साहब को हवेली के दूसरी ओर से वही सब आवाजें आनी शुरू होती है, किसी के हंसने की, किसी के रोने की। राजा साहब फिर से उन सभी आवाजों का पीछा करते हैं और एक पुराने कमरे में पहुंच जाते हैं। उस कमरे में धुई थी, मकड़ी के जाले थे, कोई इंसान वहां हो ही नहीं सकता था। तभी उन्हें अपने ठीक पीछे किसी की ठंडी सांस होता एहसास होता है। वो झटके से मुड़ते हैं। एक काली परछाई उन्हें दिखाई पड़ती है जो कि खिड़की के रास्ते से गायब हो चुकी थी। यह सब देखने के बाद राजा साहब पूरी तरह पसीने से तर हो जाते हैं। रात के तकरीबन 11:30 बजे सभी हवेली में मौजूद नौकर चाकर और मजदूरों को एक बहुत तेज चीख सुनाई पड़ती है। पूरी हवेली में भगदड़ मच जाती है। तभी एक मुलाजिम को एक कमरे में राजा साहब बेहोशी की हालत में मिलते हैं। वो पूरी तरह से पसीने में लथपथ थे, लेकिन सवाल सभी के मन में ये था कि आखिर राजा साहब इतनी रात को उस कमरे में कैसे पहुंचे और ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उन्होंने चीख मारी। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे रहस्य सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स में। सो हमारे युवाणी प्रोग्राम को सुनना ना भूलें।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
0: जी हाँ, मजा आ गया
3: यार सुरेश।

0: तुझे पता है, मैंने अपनी वाइफ को ना 12th करवाया, फिर बीए, फिर एमए, और तो और भाई उसकी सरकारी जॉब भी लगवा दी। तू बता सुरेश, अब और क्या करूं मैं?
1: रमेश, अब तू एक काम कर, अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करा दे।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: शिवानी, जब प्यार भरी गजलों की बात चल ही रही है, तो क्यों ना अब अपने दोस्तों को सुनवा दें अपना अगला सेगमेंट लव स्टोरीज, जिसमें दोस्तों आज आप सुनेंगे लव स्टोरी चित्रलेखा, जिसका आज एपिसोड है 5।
4: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।

पिछले भाग में आपने सुना कि कुमार गिरी अपने मन के संघर्ष में उलझ चुके थे और चित्रलेखा भी अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने की कोशिश कर रही थी। वहीं बीजगुप्त ने प्रेम में अधिकार नहीं बल्कि त्याग का रास्ता चुना था। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कुमार गिरी अब पूरी तरह चित्रलेखा के मुंह में बन चुके थे। वो उसे पाना चाहते थे, लेकिन चित्रलेखा धीरे धीरे समझने लगी कि कुमार गिरी का प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं बल्कि आकर्षण और वासना बन चुका है। जिस योगी को वो महान समझती थी उसका संयम टूट चुका था। कुछ समय बाद चित्रलेखा को पता चला कि कुमार गिरी ने उससे झूठ कहा था। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया था कि बीजगुप्त अब उससे दूर हो चुका है और उसका जीवन बदल गया है। सच्चाई जानने के लिए चित्रलेखा ने विशाल देव को भेजा। विशाल देव जब बीजगुप्त के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि बीजगुप्त का प्रेम आज भी वैसा का वैसा ही है। ये जानकर चित्रलेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुमार गिरी का आश्रम छोड़ दिया और अपने घर लौट आई। उसने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता बल्कि विश्वास और सम्मान देता है। कुछ समय बाद श्वेतांग और यशोधरा का विवाह तय हो गया। बीजगुप्त ने अपने मित्र और श्वेतांग के सुख के लिए स्वयं त्याग किया, अपने राज्य वैभव और सुख सुविधाओं से दूर जाने का निर्णय ले लिया। विवाह के बाद एक रात चित्रलेखा बीजगुप्त से मिलने पहुंची। उसने अपनी सभी भ्रम और गलत फहमियों के लिए क्षमा मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन बीजगुप्त मुस्कुरा दिया और बोला, चित्रलेखा, प्रेम में कोई अपराध नहीं होता और ना ही कोई अपराधी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चित्रलेखा की आंखें भर आईं। फिर बीजगुप्त ने संसार के सारे वैभव का त्याग कर दिया। चित्रलेखा ने भी अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। दोनों ने एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। अब उनके चेहरे पर वो शांति थी जो धन दौलत से नहीं बल्कि जीवन के सत्य को समझने से मिलती है। कुछ समय बाद दोनों शिष्य अपने गुरु रत्नांबर के पास लौटे। गुरु ने उनसे पूछा, तो बताओ पाप क्या है और पुण्य क्या है। दोनों शिष्य कुछ देर तक चुप रहे। अब उनके पास पहले जैसी निश्चित राय नहीं थी। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य अपने स्वभाव और परिस्थितियों का दास होता है। कोई जन्म से पापी नहीं होता और कोई हमेशा पुण्यात्मा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं तो इंसान भी बदल जाता है। इसलिए किसी को सिर्फ उसके बाहरी जीवन को देखकर अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। अब दोनों शिष्य को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि पाप और पुण्य का फैसला करना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। और यही थी चित्रलेखा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसान को उसके कपड़ों, उसके पेशे, उसकी पहचान या उसके बाहरी जीवन से नहीं बल्कि उसके विचारों, परिस्थितियों और कर्मों से समझना चाहिए। क्योंकि कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे बड़ा पापी दिखाई देता है वही सबसे बड़ा इंसान निकलता है, और जो सबसे बड़ा संत दिखाई देता है वो इंसान कमजोरियों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। तो दोस्तों, चित्रलेखा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसान और उसकी सोच को समझने का एक सफर है। क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा होता है, इसलिए किसी को जल्दी से सही या गलत ठहराना आसान नहीं होता। याद रखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हर इंसान के भीतर एक अनकहा संघर्ष। इसी सोच के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है। हमने आपसे जो पूछा था पूछो तो जाने का सवाल, उसका सही जवाब हमें किन किन साथियों ने लिखकर भेजा है। तो सवाल था दोस्तों आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, जिसका सही जवाब है भाग 2।
1: आइए जान लेते हैं सही जवाब देने वाले लिसनर्स के नाम। मुकेश कश्यप, प्रवीण चौहान, आसिफ चौधरी, सुरेश वगरेजा, शशमुल कमर, रवि कुमार, महाराज कीर्तनपुरी, राजकुमार डूडी, गुरमीत सिंह, भावत चौबे, अशोक सिंह, राजेश वर्मा, मसरूर हसन, अभिजीत, राधेश्याम पांडे, धीरज भाई, नवी हसन, राजकुमार रेवाड़, आकाश रस्तोगी, शाहरुनूर अंसारी, मुजफ्फर अली खान, वलीउल्ला अंसारी, सोहन जोशी, बबलेश पवार, गजानन येले, इरशाद अहमद, सत्येंद्र निसार सलमानी, विठल सुरेशे, हल्के जयपाल, मोहम्मद रफीक पवार, बलवंत कुमार, दिग्दर्शन शाह, आफताब अंसारी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनिल बी गोड़के, संजय डिगनिया, बी आई धाकड़, उत्तम कुमार, जाकिर मंसूर, शाहजी भोड़के, फागुराम यादव, जगदीश, मोहम्मद जाहिद अली, नरेंद्र शर्मा, विजय सुलरकर, लाल मोहम्मद अंसारी, देवशंकर तमूरिया, हीरामणि वर्मा, मिसबा शमसी, ताज अंसारी, दिनेश वर्मा, धर्मेंद्र छीपा, सुदर्शन शाह, नदीम बाकी, नंद कुमार, मोहम्मद सईद अब्बासी और जॉन डिकैस्ट्रो।
0: और दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं इस प्यारी सी गजल की ओर।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए। और खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युवानी अनुभाग, द्वारक के निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सारे प्रोग्राम के लिए अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां और आने वाले सभी प्रोग्राम्स आप हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी साथी सना
0: और शिवानी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: सोचा 1 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। आई श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। रात के हम सफर, फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम आज सुनेंगे आप रात 10:30 पर। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आपसे आपकी हस्ती गुनगुनाती यादों के बारे में। फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद सुनिएगा रात 9:30 पर। एक ही फिल्म से में आज आप सुनेंगे फिल्म मेरे महबूब के गीत। कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:30 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। किसान भाई अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह
1: और आपके भैया हिमांशु रंजन की
0: राम राम। और हिमांशु भैया कैसे हाल चाल हैं आपके? राजी खुशी भी हो?
1: बस भैया सब ठीक ठाक है। और बताओ आपके कैसे हाल चाल है भैया?
0: भाई हाल चाल बढ़िया है, काम धाम भी ठीक है। बस एक गड़बड़ थोड़ी सी हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
1: बिल्कुल भैया गर्मी बहुत हो रही है। और भैया देखो हमारी तो गन्ने की फसल भैया थोड़ी थोड़ी उसकी पत्ती सूखने लग गई भैया।
0: भैया ये ज्यादा तापमान का नतीजा है। और देखो गन्ने की जो फंगल है ना भैया, वो सभी की सूख रही है, चाहे वो पौध गन्ना हो पेड़ी गन्ना हो। और भैया जब इतना तापमान चल रहा है भाई, आज का भी लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो भैया ऐसे में गन्ने की चोटी सूखेगी तो ही, चाहे आप उसमें पानी दे लो।
1: बिल्कुल भैया।
0: लेकिन भाई देखिए, जैसे आने वाला सीजन बरसात का है और कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यहाँ भी जो है 2-4 दिन के बाद बारिश आएगी।
1: बिल्कुल भैया। और भैया यो बात अगर भैया है तो हमारा तो भैया देखो हम तो अभी अपने खेतों में क्या करेंगे भैया, नमी बना के रखेंगे।
0: हाँ लेकिन भैया बात तो सही कह रहे हो तुम, नमी तो बना के रखनी है गर्मी की वजह से। लेकिन भैया बारिश से पहले पहले एक मेन काम और होता, मुख्य बात होती।
1: अच्छा भैया, भैया वो कौन सी है?
0: अब भैया मुख्य बात ये होती है कि जो हमारे खेत की मेड़ होती ना
1: हाँ बिल्कुल
0: भैया, उन्हें हमें मजबूत रखना पड़ता।
1: बिल्कुल भैया हम थारी बात समझ गए, यानी कि भैया आप बात कर रहे हो मेड़बंदी की। तो भैया देखो हमारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं भाई, बरसात से पहले वो इस काम को करो लें।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि भैया ये समय जो है धान की रोपाई का होता।
0: बिल्कुल। और भैया धान की रोपाई तभी संभव है जब खेत में पानी रुके।
1: बिल्कुल।
0: और खेत में पानी तभी रुकेगा जब चारों तरफ होगी मेड़।
1: बिल्कुल भैया। अब देखो भैया मेड़बंदी के कई सारे फायदे हैं।
0: हाँ
1: एक तो भैया हमारे खेत का पानी हमारे खेत में रह जा।
0: बिल्कुल। उससे जो है मृदा और जल संरक्षण के सिद्धांतों का पालन भी हो जा।
1: बिल्कुल। अब भैया देखो हमारे खेत में है पोषक तत्व बढ़िया, और हमने भैया मेड़बंदी नहीं करी
0: जी,
1: और हमने उसमें भर दिया पानी या भैया हो गई बारिश, तो हमारे खेत के जो पोषक तत्व है वो दूसरे के खेत में चले जाएंगे।
0: बिल्कुल चले जाएंगे। और भैया आप कह रहे हैं ना मेड़बंदी नहीं करी, भाई मेड़बंदी तो पहली पुरानी भी रहे।
1: हाँ
0: लेकिन भैया हम जो है चूहों की मुस्केर और पुराने बिल और ये जो है, यानी के कहने का मतलब है कि हमें पानी लगाने से पहले या वर्षा से पहले अपने खेत की मेड़ को मजबूत कर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल। क्योंकि भैया देखो यूं कह रहे हैं कि वर्षा का जल अगर हमें संचयन करना तो मेड़बंदी हमें जरूर करनी।
0: बिल्कुल। और भैया जब जल संरक्षण होगा, यानी कि जल संरक्षण में ये सिद्धांत होते हैं कि बहते हुए पानी को रेंगता हुआ करना, और जो रेंगता हुआ पानी है उसको स्थिर करना यानी कि रोकना।
1: बिल्कुल।
0: यही जल संरक्षण के सिद्धांत होते हैं।
1: बिल्कुल। अब भैया देखो मेड़बंदी अगर हमने कर ली तो एक तो पानी की बचत हो जाएगी।
0: अच्छा।
1: दूसरा भैया यो कि हमारे खेत में जो बाहर से खरपतवार पानी के साथ बहकर आने वाले थे भैया वो नहीं आनेगे।
0: हाँ वो भी नहीं आएंगे। और भैया हमारे जो पोषक तत्व हैं वो भी बाहर नहीं जाएंगे। तो भाई वैसे तो किसान भाई हमारे सब जानते हैं, अब सब लगभग शिक्षित हो गए हैं, युवा किसान भाई हैं। और भाई वो जो है अपने काम को, आजकल जो मोबाइल है ना ये, इसे देख के भी वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं आजकल के युवा।
1: बिल्कुल भैया। जब से भैया ये देखो मोबाइल चला बड़ा वाला, तो एक तो भैया इसमें हमें वैज्ञानिक जानकारी मिलती रहे।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा भैया मौसम की जानकारी भी इसी से मिल जा।
0: हाँ तो भैया मौसम की जानकारी तो हमारे पास रोज ही रहती है। तो हिमांशु भाई देखिए, किसान भाई अपनी खेती बाड़ी में जो है अपने खेतों की मेड़ मजबूत करेंगे, चाहे वो धान की क्या जो हमारी गन्ने की और जो मेड़ है खेतों की।
1: बिल्कुल।
0: भैया वे भी मजबूत रखें, अपने बंदे भी मजबूत रखें, और चक्रोड के पास की भी मिट्टी वो मजबूत रखें, ताकि जो है एक खेत से दूसरे खेत में पानी न जाए।
1: बिल्कुल। और इसके साथ नरेश पाल भैया एक बात का और छोटी सी बात मैं कहूंगा यहाँ पर कि हमें अपने जो खेत है भैया उसको समतल अवश्य करा लेना।
0: बिल्कुल। समतल खेत तो भैया बहुत ही आज की पुकार है, क्योंकि समतल खेत में देखियो सिंचाई का पानी जो है समान रूप से लगता है, और जो हमारी फसल होती है उनको समान रूप से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है।
1: बिल्कुल।
0: और भैया किसान का पैसा भी बचता है, इसमें पानी की भी कम आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: और भाई दूसरी बात यह है कि भाई खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को और भी तो बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जानकारी रखनी चाहिए।
1: अच्छा भैया, तो भैया क्या क्या जानकारी है ये तो बता दो आज।
0: भैया जानकारी का मतलब यही है, आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, अपनी खेती बाड़ी में क्या हो रहा है, अपने परिवार में क्या हो रहा है। तो भैया आप परिवार की भी बात करें, यानी कि कुछ बात ऐसी हो
1: हाँ
0: कि भैया जो सरकारी योजनाओं से हमारा परिवार जुड़ा रहता।
1: अच्छा भैया,
0: और भैया उनमें एक योजना है लखपति दीदी योजना।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे,
0: क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में रोज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और भैया जो प्रधानमंत्री फसल दुर्घटना बीमा है वो हो गया, और भैया जो किसान दुर्घटना बीमा हो उसकी बात करते हैं,
1: हाँ हाँ
0: पशु बीमे की बात करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो कृषि से ना जुड़कर सभी के लिए होती हैं, जो किसानों के लिए भी होती हैं और भैया आम नागरिक के लिए।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे हो तुम। और भैया भारत सरकार की अगर हम बात करें लखपति दीदी योजना की, तो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है ये।
0: बिल्कुल, और भैया इसमें जो है इतना बढ़िया हिसाब किताब है कि सरकार जो ग्रामीण महिला होती है ना,
1: हाँ हाँ
0: उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें जो है कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है महिलाओं को।
1: अच्छा भैया,
0: और भैया जो वार्षिक आय है उनकी 1 लाख,
1: अच्छा
0: यानी के 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक उसको पहुंचाना है।
1: अच्छा,
0: यानी कम से कम 1 लाख रुपए एक साल में उनकी आमदनी तो हो ही जावे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और भैया इसमें 1 लाख से 5 लाख तक का लोन भी हमारी महिलाओं को मिल सकता है,
1: हाँ
0: और स्वरोजगार के लिए जो तैयार है वो जो है इससे स्वरोजगार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा भैया नरेश पाल भैया, इस योजना में क्या महिलाओं को एक FPO से जुड़ने की भी कुछ दी गई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, FPO की बात ना करके यदि हम स्वयं सहायता समूह की बात करें,
1: हाँ
0: यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ना इसके लिए महिलाओं का आवश्यक है
1: जी।
0: और भैया जो प्रशिक्षण की बात है तो इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण जब हमारी महिला को दिया जाता है तो इसमें प्लम्बिंग, LED बल्ब और LED बल्ब यानी कि बनाना,
1: अच्छा,
0: और सिलाई बुनाई, खेती और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न कौशल सिखाए जाते हैं।
1: अच्छा भैया, ये तो भैया बहुत अच्छी बात है। तो भैया इसके लिए कुछ पात्रता जरूर होगी, तो भैया वो पात्रता क्या है हमारे जो किसान बहन भाई हैं, जो हमारी महिला किसान है उनके लिए भैया बता दो जरा पात्रता क्या है इसकी।
0: हाँ, तो जो ये इसमें महिलाएं या जो बहनें इसमें पात्रता की जानकारी चाहें तो भैया वे किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है उनका।
1: अच्छा,
0: और परिवार का उनके कोई भी सदस्य सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा भैया,
0: बस इसमें ये बात है। और भाई इसमें जहां तक दस्तावेजों की बात है ना,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो दस्तावेज भी सामान्य से हैं, जैसे महिलाओं का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज के फोटो,
1: हाँ,
0: और भैया कोई मोबाइल नंबर ऐसा जो चालू हो, यानी कि सक्रिय मोबाइल नंबर।
1: बिल्कुल, यानी कि भैया उसमें OTP अगर आएगा तो पता लग जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, और तो समूह से जुड़े होने का प्रमाण पत्र जो है इसमें भी ये भी चाहिए।
1: तो भैया ये मुख्य दस्तावेज हमें बिल्कुल तैयार रखने हैं।
0: और भैया और अधिक जानकारी यदि हमारी महिलाएं या हमारे किसान भाई या हमारे श्रोता चाहें तो भैया खंड विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव से जाकर संपर्क कर सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, तो भैया इस योजना को भैया किसान भाई जान गए होंगे कि भैया इस योजना से क्या लाभ ले सकें।
0: बिल्कुल।
1: अब नरेश पाल भैया देखो एक बात और बड़ी जरूरी है।
0: हाँ भैया, वो क्या
1: भैया जरूरी बात यो है कि आज यो बताओ तुम भैया दिन कौन सा जरा।
0: भैया दिन तो है आज शुक्रवार। और भैया जून माह का कौन सा शुक्रवार है भला?
1: भैया चौथा।
0: हाँ, और भैया जून माह के या कोई सी भी माह के चौथे शुक्रवार को हमारे किसान भाई किस इंतजार में रहते हैं?
1: भैया हमारे किसान भाई सुनते हैं किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्रिका इंतजार करते हैं भैया।
0: जिसमें हम अपने किसान भाइयों की शंका और समाधान का, जो कृषि से जुड़ी हुई या बागवानी से जुड़ी हुई या पशुपालन से जुड़ी हुई होती है ना, तो भैया वो शंका हम दूर करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हम नित नई जानकारी अपने किसान भाइयों को दें।
1: बिल्कुल, अब भैया देखो तुमने ये पत्र तो रख रखे हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन भैया कुछ किसान भैया ऐसे हैं जो भैया पत्र भेजना भूल गए हैं, या भैया किसी कारण से उन्होंने नहीं भेजा,
0: तो भैया उसका भी हमारे कार्यक्रम में इंतजाम है।
1: बिल्कुल भैया, तो भैया हमारे किसान भैया हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं, और इसके लिए भला नंबर क्या है ये बता दो तुम।
0: भैया हमारा वही जाना पहचाना नंबर है 94-57-07-82-88।
1: बिल्कुल,
0: तो भैया इस जो व्हाट्सएप संदेश हमारे किसान भाई भेजना चाहें तो वो इस नंबर पर भेज सकते हैं।
1: हाँ।
0: और भाई ज्यादा देर न करते हुए अब कार्यक्रम तो शुरू हम कर ही रहे हैं,
1: हाँ हाँ,
0: लेकिन क्यों ना उससे पहले किसान भाइयों को सुनवा दें ये जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
7: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
8: देश की धरती तो ना उगले, उगले हीरे मोती।
6: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
7: खुशहाली का नया प्रयोग।
9: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
0: तो किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश हिमांशु भाई।
1: बिल्कुल भैया,
0: और संदेश के बाद अब कार्यक्रम शुरू करते हैं
1: चिट्ठी पत्री।
0: तो भैया देखिए, ज्यादा देर न करते हुए हिमांशु भाई, ये खत उठाओ और देखो ये कहां से आया है।
1: बिल्कुल भैया, देखो जो पहला पत्र हमें मिला है भैया, ये हमें मिला है ग्राम मुंडाखेड़ी, पोस्ट कोलासागर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर से। और भैया लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सीताराम, बबलू, महेंद्र सिंह, परवेंद्र सिंह, संगीता, उत्कर्षा और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
0: जी भैया, क्या लिखते हैं?
1: भैया सबसे पहले तो ये हमें राम राम लिखते हैं।
0: तो भैया हमारी भी इन्हें राम राम।
1: और भैया इन्होंने जो अपनी खेती किसानी से संबंधित भैया जानकारी या समस्या लिखकर भेजी है भैया, वो ये है कि ये धान की रोपाई करना चाहते हैं।
0: हाँ।
1: और ये जानना चाहते हैं कि धान की रोपाई करते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है भैया इन्हें।
0: जी भाई, जो ये हमारे श्रोता हैं, हमारे किसान भाई हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इस समय जो है समसामयिक इन्होंने प्रश्न पूछा है, सीताराम, बबलू, महेंद्र सिंह आदि ने। तो इन्हें बता दें कि सबसे पहले जो इनकी धान की पौध है जहां से अपना पनीर उखाड़ेंगे, तो भैया उस क्यारी में पानी अवश्य दे दें।
1: अच्छा भैया।
0: भैया सूखे खेत से आप धान की पौध बिल्कुल ना उखाड़ें, क्योंकि सूखे खेत से धान की पौध उखाड़ने में एक तो हमारी पौध टूट जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दूसरा भैया, उसमें जब आगे चलकर हम पौध की रोपाई करते हैं तो एक बकैना रोग होता है, बकैना रोग लगने की संभावना होती है।
1: बिल्कुल भैया।
0: और भाई रोपाई से पहले तो पहली बात तो अपने ये धान की जो पौध है उसमें, उस क्यारी में पानी भर दें, और जब इसको उखाड़ें या लगभग जो है 23 से 25 दिन का पनीर जो है बहुत अच्छा रहता है रोपाई के लिए।
1: बिल्कुल।
0: और भैया इसको ये उखाड़ कर गुच्छियां बना लेते हैं, और गुच्छियां बनाने के बाद इसकी आप यदि कवकनाशी से उपचारित कर दें तो ये बहुत अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल भैया,
0: क्योंकि कवक से बहुत सा रोग आता है, और भाई इसके उपचार के लिए कोई ज्यादा हमें हुज्जत करने की जरूरत नहीं है।
1: हाँ।
0: जो हमारी सिंचाई की नाली ना भैया, उसमें पानी भरो और आगे उसमें बंद लगा दो
1: हाँ।
0: और जब उसमें कार्बन डाइजिम और मैंकोजेब दवाई घोलकर रात भर उसमें ये गुच्छियां रख दें और सुबह निकाल कर भैया उनकी रोपाई कर दी जाए।
1: बिल्कुल।
0: और भाई एक दूसरी बात ये है कि जब हम रोपाई करते हैं ना धान की
1: हाँ हाँ।
0: तो पडलिंग के कम से कम 5-6 घंटे बाद या रात अगर उसके ऊपर बीत जाए
1: बिल्कुल
0: पडलिंग के बाद जो कीचड़ है तो तब हम यदि धान की रोपाई करें
1: हाँ।
0: तो बहुत अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल भैया,
0: क्योंकि भैया धान की जो टिलरिंग होती है ना
1: हाँ हाँ
0: तो जड़ के पास से होती है, ये गांठ होती है जड़ के पास।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वहां से कल्ले फूटते हैं
1: हाँ।
0: और जब हाथों हाथ हम ट्रैक्टर से पडलिंग करते हैं या दूसरे किसी यंत्र से पडलिंग करते हैं तो किसान भाई देखते होंगे कि ट्रैक्टर बाहर निकला
1: हाँ।
0: और तुरंत जो है धान की रोपाई जो लेबर होती है वो धान की रोपाई करने लग जा।
1: बिल्कुल भैया।
0: भैया उसमें एक नुकसान ये हो जा कि मुलायम मुलायम तो कीचड़ होता है तो उसमें जो जड़ ज्यादा गहराई पे चली जाती है जिसमें टिलरिंग में समस्या आती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया तुम, तो इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे। जैसे कि भैया आप बता रहे हो कि जब हम अपने खेतों में जो ट्रैक्टर चला लें उसके बाद भैया हमें कम से कम 5-6 घंटों बाद
0: जी
1: है ना
0: जी,
1: तो ये काम हमें करना है तो इससे भैया हमारी जो धान की फसल है वो अच्छी हो जाएगी
0: जी,
1: और भैया हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा तो भैया लाभ होगा।
0: बिल्कुल, और भैया यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है।
1: बिल्कुल।
0: अब हिमांशु भाई देखियो एक ये व्हाट्सएप संदेश आया है।
1: अच्छा भैया
0: हाँ, तो ये व्हाट्सएप संदेश देखो किन का, जरा पढ़ियो।
1: भैया ये व्हाट्सएप संदेश जो हमें मिला है ये मिला है ग्राम गधरोना पोस्ट लनोरा जिला हरिद्वार से, और भैया भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता मदन गिरी जी हैं।
0: जी जी, मदन गिरी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे और ये हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं। ये हमारे सजीव कार्यक्रम में भी जो फोनिंग कार्यक्रम होता है लगभग सभी कार्यक्रम में इनका जो फोन कॉल आता है
1: हाँ।
0: और प्रत्येक पत्रोत्तर कार्यक्रम में भी इनकी सूचना हमारे पास आती है, तो भाई जल्दी से इनका प्रश्न जो है हिमांशु भाई पढ़िए।
1: बिल्कुल भैया, प्रश्न भी लेंगे। भैया सबसे पहले हमें राम राम लिख रहे हैं,
0: तो इन्हें भी हमारी राम राम।
1: बिल्कुल, और भैया ये लिख रहे हैं कि अभी जो हमने जानकारी दी लखपति दीदी योजना की, भैया उसे जानकारी को ये सुनकर भैया लाभान्वित हुए हैं।
0: हाँ भाई, इन्होंने फीडबैक भी भेजा है और इन्हें ये जानकारी अच्छी लगी है
1: हाँ। और भैया देखो इनकी जो समस्या है वो गन्ने से संबंधित है, क्योंकि भैया गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, और गन्ने की फसल में भैया जानना चाहते हैं कि मिट्टी कब चढ़ानी है और किस प्रकार चढ़ाने से जो है हमारे गन्ने की फसल अच्छी होगी।
0: देखिए गन्ने की फसल में हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि मिट्टी चढ़ाने की अवस्था कई बातों पर निर्भर करती है। एक तो कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो भैया परंपरागत रूप से खेती कर रहे हैं
1: हाँ।
0: ज्यादा खाद उर्वरक और दूसरे रसायन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ ऐसे वृद्धि प्लांट हार्मोन होते हैं जो वृद्धि नियंत्रक होते हैं, यानी कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो गन्ने में टिलरिंग कर देते हैं
1: जी,
0: और कुछ बढ़वार के लिए हमारे किसान भाई ऐसे हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने जिब्रेलिक एसिड का नाम सुना
1: बिल्कुल,
0: होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो जब किसान भाइयों की फसल 5-6 फुट की हो जाए तो उस समय मिट्टी अवश्य चढ़ा देनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया तुम,
0: है ना। और भैया मिट्टी चढ़ाने से आप जानते हैं कि कितने सारे फायदे होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक तो सिंचाई का पानी की जो है कम आवश्यकता होती है, यानी कि कम पानी में अधिक क्षेत्रफल की हमारे गन्ने की सिंचाई हो जाती है। दूसरा जो हमारी जो गन्ने की लाइन के बीच में खरपतवार होते हैं ना
1: हाँ।
0: तो भैया जब हम ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाते हैं तो खरपतवार बंद होकर समाप्त हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारा गन्ना बढ़िया बढ़वार करता है अच्छी, क्योंकि गन्ने की जड़ों के पास उपजाऊ मिट्टी लग जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि मिट्टी चढ़ा दें, और जो पछेती गन्ना है जैसे हमने गेहूं काट कर लगाई है।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया उस फसल में अभी मिट्टी चढ़ाने का समय नहीं है, है ना।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भाई अगेती गन्ने में जो किसान भाइयों ने मार्च में बोई है तो उस समय की बोई हुई फसल में इस समय किसान मिट्टी चढ़ा भी रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और चढ़ाने भी चाहिए भैया।
1: बिल्कुल। जिन भैया किसान भाई बहनों का गन्ना लगभग 5 फीट के आसपास हो गया हो
0: हाँ हाँ।
1: या उससे थोड़ा बड़ा हो गया हो तो भैया वो इस समय मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर सके।
0: बिल्कुल कर सकते हैं,
1: है ना। और भैया खरपतवार नियंत्रण तो आपने बता ही दिया कि इससे भैया खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। साथ ही भैया अगर वो अपने खेत की जो गन्ने की पत्तियां हैं
0: हाँ।
1: भैया उसको अगर मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो भैया तो भी क्या होगा, एक तो जल का संरक्षण हो जाएगा
0: हाँ।
1: साथ ही भैया जो खरपतवार तुम बता रहे हो भैया वो भी ना उगनेगे?
0: बिल्कुल, यानी कि आगे चलकर मिट्टी चढ़ाने के बाद हमारे जो गन्ने की नीचे पत्तियां सूख जाएंगी ना, उसको उतार के किसान भाई गुल के बीच में डाल देंगे तो सही करे, आप मल्चिंग का कार्य होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अब ये अगला पत्र पढ़ो हिमांशु भैया, ये कौन भाई है भेजने वाले?
1: बिल्कुल भैया, ये पत्र हमें मिला है ग्राम टिकोला कला उत्तराखंड से, और भैया भेजने वाले

0: हमारे जो नियमित श्रोता हैं ये हैं रमेश चंद नामदेव, संजय कुमार नामदेव, राजन कुमार नामदेव और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
1: अच्छा, ये मास्टर रमेश चंद नामदेव हैं,
0: बिल्कुल
1: तो इनको हमारी राम राम।
0: बिल्कुल भैया, राम
1: और
0: राम।
1: भैया, इन्होंने हमें जो पत्र लिखा है उसके लिए धन्यवाद। और इस इनका जो विषय है जरा वो बता दीजिए कि ये किस विषय पर जानकारी चाहते हैं।
0: बिल्कुल भैया, इनकी जो समस्या है भैया वो गाय को लेकर है। तो ये लिखते हैं, इनकी एक गाय है जो ओसर है, बार बार गाभिन करवाने पर भी भैया उसका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है।
1: अच्छा
0: और ये जानना चाहते हैं कि ये क्या तकनीक अपनाए या भैया इसका क्या उपाय हो सकता है जो हम इनकी गाय भैया गर्भधारण कर सके।
1: देखिए हिमांशु भाई, इनका प्रश्न भी बहुत अच्छा है और अक्सर गाय और भैंस में ये परेशानी बार बार कुछ किसान भाइयों के सामने आती है कि उनका पशु जो है गर्भित नहीं रह पाता है। तो किसान भाई जो है इस बात का ध्यान रखें कि जब आपकी गाय या भैंस ऋतुमय हो, यानी कि सही समय पर जो गर्मी हो, उसी समय सही समय पर आप इसका जो है संकरण कराएं या कृत्रिम गर्भाधान के रूप से आप अपनी गाय या भैंस को गाभिन करा सकते हैं। और देखिए 21 दिन के बाद गाय या भैंस पुनः गर्मी में आती है, हीट में आती है। और कुछ पशु ऐसे होते हैं कि वो रंभाते हैं, बोलते हैं, और कुछ पशु ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल यानी कि चुपचाप ही एक लसलसा पदार्थ डालते हैं और उसके कम से कम 10 घंटे बाद आप यदि अपनी गाय या भैंस को गाभिन कराएं,
0: बिल्कुल।
1: जैसे आपकी भैंस ने या गाय ने पानी डाला है तो उसके 10 घंटे बाद आप उसको गर्भित कराएं तो चांस बढ़िया रहते हैं
0: बिल्कुल।
1: कि ये गाभिन रह जाएगा पशु। और दूसरी बात यह है कि भाई गाभिन कराने के बाद
0: जी।
1: हमारे किसान भाई एक टीका होता है, वो टीका लगवा दें तो बहुत अच्छे चांस बनते हैं। और इस टीके को सरकारी चिकित्सक के द्वारा ही आप लगवाएं,
0: बिल्कुल
1: है
0: सही
1: ना,
0: कह रहे हो तुम भैया।
1: जो राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं ना भैया, तो उनसे संपर्क करके ये टीका लगवाएं तो पूरी पूरी संभावना रहती है कि हमारा पशु जो है गर्भधारण करेगा।
0: बिल्कुल
1: और अब भाई जो अगला पत्र जो है किनका आया है जरा
0: बिल्कुल
1: पढ़ना।
0: बिल्कुल भैया, ये हमें अगला पत्र मिला है ग्राम सिजोली, पोस्ट हरगनपुर, जिला बिजनौर से। और भैया भेजने वाले हमारे जो किसान भाई हैं वो हैं तेजवीर सिंह, ब्रजवीर सिंह और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
1: अच्छा,
0: भैया सबसे पहले ये भी हमें राम राम लिखते हैं।
1: राम राम भैया हमारी भी इनको।
0: बिल्कुल
1: और क्या सवाल है इनका आज का?
0: भैया, इनका भी सवाल गन्ने को लेकर है और ये जानना चाहते हैं कि गन्ने की फसल में जो इनकी गन्ने की पत्तियां हैं वो आपस में लिपट रही हैं
1: अच्छा
0: और इनकी गन्ने की बढ़वार रुक गई है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि ये समस्या इनके खेत में उजागर हुई है।
1: देखिए हिमांशु भाई, इनका गन्ने की फसल का ये वाला सवाल भी बहुत ही समसामयिक है। और गन्ने की पत्तियां जब आपस में लिपट जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि ये एक कवक द्वारा कवक जनित रोग होता है।
0: बिल्कुल
1: और इसको हम पोका बोइंग के नाम से भी कहते हैं। ये बिल्कुल फसल इसमें छोटी हो जाती है और पत्तियां कड़ी भी हो जाती हैं,
0: अच्छा।
1: यानी कि पीली पड़ के थोड़ी सी कड़ी हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। तो ये कवक नाशी का इस्तेमाल करके, जैसे कार्बंडाजिम और मैंकोजेब है ना, तो आधा किलोग्राम दवाई लें,
0: अच्छा।
1: 500 ग्राम दवाई लेकर और उसको 200 लीटर पानी में घोल लें। और भैया अपनी 1 एकड़ यानी कि 5 बीघे खेत में आप ये इसका छिड़काव कर दें तो ये समस्या इनकी दूर हो जाएगी।
0: बिल्कुल
1: और छिड़काव करते समय 19 19 19 एक एनपीके का 1 किलो का पाउच आता है, पैकेट आता है, वो भी आप जो है उसका घोल अलग बाल्टी में बनाकर
0: अच्छा।
1: जब स्प्रे करें तो स्प्रे वाली टंकी में उसके साथ साथ कवकनाशी के डाल के अपनी फसल पे स्प्रे कर दें तो अच्छे परिणाम मिलते हैं।
0: बिल्कुल भैया, तो उम्मीद है कि भैया इनकी जो समस्या थी गन्ने से संबंधित भैया उसका समाधान हो गया होगा।
1: जी जी
0: और भैया आप तम का हो तो एक पत्र और शामिल कर ले भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, कार्यक्रम में जो है नेकी और पूछ पूछ।
0: तो भैया ये पत्र हमें मिला है ग्राम छजूपुरा तगा, तहसील मंडी धनोरा, जिला अमरोहा से। और लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं आलोक कुमार, प्रशांत कुमार, विक्रांत कुमार, दिवेश चौधरी और सौरभ चौधरी।
1: अच्छा
0: भैया, ये भी हमें राम राम लिखते हैं।
1: राम राम हमारी भी इनको।
0: और भैया, इनकी जो समस्या है वो भी भैया गाय को लेकर है, गाय और भैंस को लेकर। तो भैया ये जानना चाहते हैं कि इनके पास केवल एक गाय और एक भैंस है,
1: हाँ।
0: और वो दोनों ही चारा कम खा रही है इस समय, क्या कारण हो सकता है भैया? कारण जानना चाह रहे हैं।
1: देखिए किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आप जो है कह रहे हैं कि आपकी गाय और भैंस कम चारा खा रही है, तो इसके मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपका चारा किस प्रकार का है, सबसे पहली बात तो ये है,
0: जी
1: यानी कि हो सकता है ये सूखा चारा खिला रहे हो, यानी कि कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं ना कि खेत वेत पर तो जाते नहीं,
0: हाँ
1: या किसान भाई जो है जिनके पास खेत नहीं है, पशुपालक भाई कुछ ऐसे होते हैं कि वो
0: हाँ
1: चारा मोल लाते हैं हरा,
0: हाँ
1: तो कुछ किसान भाई इस आलस्य के कारण ऐसा करते हैं कि जब गेहूं की कटाई होती है ना, उस समय भूसा इकट्ठा करके मोल ले लेते हैं,
0: अच्छा
1: और भाई अपने पशु को भूसा और जो रातव होता है जिसे चोकर कहते हैं वही खिलाते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: इससे भी पशु ऊब जाता है। और हरे चारे का जब कम जो है किसान हमारे पशु को हरा चारा कम मिलता है तो वो चारा कम खाता है। और दूसरी मुख्य बात यह है कि जब पशु के पेट में कीड़े होते हैं
0: हाँ
1: तब उसकी भूख बंद हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मुझे लग रहा है कि इनके पशुओं के पेट में कीड़े हैं, और प्रत्येक 5-6 महीने बाद कम से कम ये अपने पशुओं को एल्बेंडाजोल की एक बोलस, जिसको गोली बोलते हैं भाई, जो आदमी खाता है उसको टैबलेट बोलते हैं,
0: जी
1: और जो पशुओं की गोली आती है उनको बोलस बोलते हैं,
0: जी
1: तो एल्बेंडाजोल की एक एक बोलस ये अपने गाय और भैंस को दे दें। लेकिन ध्यान रहे कि एल्बेंडाजोल वाली दवाई गाभिन पशु को नहीं देनी चाहिए,
0: जी जी जी
1: यानी कि इनके पशु दूध भी दे रहे हों तो, और गाभिन हो तो नुकसान हो सकता है, तो गाभिन पशु के लिए एक और दवाई होती है, उसमें एल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन नामक साल्ट होता है।
0: अच्छा,
1: तो जो एल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन नामक साल्ट की दवाई है वो अपने पशु को दे सकते हैं,
0: हाँ
1: तो उससे पेट के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, और जो बाहर चींचड़ी कलेली होगी ना भैया,
0: हाँ हाँ
1: वे भी बिल्कुल साफ हो जाएंगी, गिर जाएंगी, भाग जाएंगी
0: बिल्कुल। और जो इनकी गाय या भैंस है, जो पशु है भैया, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा,
1: नहीं होगा, और भैया वो अच्छा, उन्हें भूख लगेगी
0: हाँ
1: और अच्छा चारा खाएंगे।
0: बिल्कुल। और भैया कुछ बात ऐसी है भैया, देखो गर्मी का समय है, तो अपने जो पशुपालक भाई हैं वो अपने पशु को भैया समय समय पर ताजा पानी पिलाते रहे मैं।
1: बिल्कुल भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने पशु को कभी भी गंदा और बासी पानी या गर्म पानी नहीं पिलाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: देखो गर्मी हो रही है तो ठंडा पानी जो ताजा होता है
0: बिल्कुल
1: भैया वो खिलाएं, और दिन में कम से कम 2 बार तो नहला ही दें,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल। और अपनी पशुशाला का अच्छे से प्रबंधन करें भैया, उसको स्वच्छ रखें, है ना भैया।
1: अरे भैया, जब हम इस प्रकार से काम करेंगे
0: हाँ
1: तो हमारा काम बढ़िया होगा, तो हम प्रसन्न भी होंगे।
0: बिल्कुल
1: भैया, और जब प्रसन्न होंगे तो प्रसन्नता में मन करता है मनोरंजन को।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई किसान भाइयों को अपने कार्यक्रम के बीच में इनका मनोरंजन भी कराओ दें।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी रागनी जिसे स्वर दिया है मैनपाल सिंह ने।
0: ठीक है भैया।

0: तो किसान भाइयों ने अभी रागनी सुनी और रागनी सुनकर किसान भाइयों का भरपूर मनोरंजन हो गया होगा। अब हिमांशु भाई ज्यादा देर ना करते हुए ये पत्र अगला वाला पढ़ो, किसका है?
1: बिल्कुल भैया, ये पत्र हमें मिला है गांव कुआखेड़ा तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखंड से।
0: हाँ।
1: और भेजने वाले हमारे जो नियमित श्रोता हैं वो हैं तेलू राम पुंडीर, सुमित और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनके पत्र डालने का। इनका क्या सवाल है आज?
1: बिल्कुल भैया, सबसे पहले हमें राम राम लिखकर भेज रहे हैं, तो इनको भी राम राम
0: जी।
1: और भैया ये जानकारी चाहते हैं कि इनका भैया एक मुर्गी फार्म है
0: जी,
1: और इस समय जो काफी मुर्गियां हैं भैया वो मर रही हैं और अभी उनका जो बाकी मुर्गियां हैं उनका वजन भी भैया अपेक्षाकृत कम हो गया है, बढ़ नहीं रहा है।
0: बढ़ नहीं रहा है
1: तो ये भैया जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि इनकी जो मुर्गी है वो मर रही है।
0: देखिए भाई, मुर्गी पालक भाई अक्सर इन दिनों,
1: हाँ,
0: जब बारिश और गर्मी का जोड़ होता है तो इन दिनों गर्मी बहुत पड़ती है, तो अधिक गर्मी के कारण हमारी मुर्गियां मर जाती हैं।
1: जी,
0: कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ मरने की कगार पर होते हैं। अक्सर इन दिनों यदि मुर्गी फार्म के आसपास आप जाकर देखो तो ये समस्या बहुत ज्यादा मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: तो अपनी मुर्गी बाड़े को आप ठंडा रखें। सबसे पहले तो हम किसान भाई को ये सलाह दें कि कुछ किसान भाई तो ऐसा करते हैं कि भाई अपने जो मुर्गी फार्म की छत होती है
1: बिल्कुल
0: उसमें पुआल वगैरह डालकर उसको पानी से गीला करते रहते हैं, उसमें पानी का छिड़काव पाइप से करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, जिससे भैया गर्मी कम हो जाती है।
0: हाँ, और भैया जो गर्म हवाएं हैं उनको जो है अपनी मुर्गी फार्म में प्रवेश करने से रोकने के लिए आप जो टाट पट्टी के जो जूट के बोरे हैं ना उन्हें भी लटकाकर इस प्रकार से उन पर भी पानी का छिड़काव किया जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो मुर्गी फार्म का जो तापमान है उसको नियंत्रित किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दूसरी बात यह है कि भैया कुछ बीमारियां भी होती हैं तो अपनी मुर्गियों को समय समय पर वैक्सीन लगाएं और जो एक वो होता है पोषक तत्वों का, इनका जो वाइटम एच नाम से होता है, इस तरह से पोषक तत्व का एक तरल पदार्थ होता है, तो वो टैंक में मुर्गी फार्म के डाल दिया जाए।
1: हाँ।
0: और मुर्गियां उसको पीकर जो है अच्छी तरह वृद्धि करती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भैया उम्मीद है कि जो इनकी समस्या है भैया उसका समाधान हो गया होगा।
0: हाँ,
1: अब भैया घड़ी की ओर को भी देख लो, भैया घड़ी क्या कह रही है?
0: भैया घड़ी अब ज्यादा बातें करने की अनुमति नहीं देती, तो हाँ? जाने से पहले किसान भाइयों को जरा मौसम का पूर्व अनुमान बता दो।
1: बिल्कुल भैया, जो हमें मौसम की चिट्ठी प्राप्त हुई है भैया वो ही है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से।
0: भैया मोदीपुरम मेरठ वाले जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, वो क्या कहते हैं?
1: भैया मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भैया आने वाले 4 दिनों तक, हाँ, यानी कि भैया अगले 4 दिनों तक मौसम भैया शुष्क रहेगा। और भैया वो सलाह देते हैं कि जो उनकी फसल है, चाहे भैया वो गन्ने की फसल हो, सब्जियों की फसल हो, उसमें भैया आवश्यकता अनुसार नमी बना के रखें।
0: बिल्कुल, तो किसान भाई जो है इस मौसम को देखते हुए अपनी फसलों में नमी बना कर रखें, और विशेष तौर से किसान भाई चारे का भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल,
0: कि चारे की फसल में भी इस समय यदि वो सिंचाई करें तो बेहतर रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया एक सलाह और दे रहे हैं ये कि भैया फसलों और सब्जियों में सुबह और शाम को ही हल्की सिंचाई करें।
0: हाँ भैया, दिन में ये दिक्कत आती है कि जब हम पानी देते हैं ना दिन में दोपहर में,
1: हाँ हाँ,
0: तो पानी बहुत जल्दी जो है सूर्य की गर्मी से, सूर्य के ताप से गर्म हो जाता है, और गर्म पानी हमारी फसलों को नुकसान देता है, जड़ों को नुकसान देता है।
1: बिल्कुल भैया,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो भैया इस प्रकार से हमारे किसान भाई मौसम का ध्यान रखेंगे।
1: हाँ।
0: और भाई अब चलते चलते हिमांशु भाई किसान भाइयों को अपने कार्यक्रम का पता बता दें।
1: बिल्कुल,
0: ताकि किसान भाई अपनी समीक्षा लिखकर हमें भेजें या हमारे पास व्हाट्सएप संदेश किसान भाई भेजें। तो व्हाट्सएप संदेश के लिए हम अपने किसान भाइयों को अपना मोबाइल नंबर बता देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारा मोबाइल नंबर वही है भैया, 94 57 07 82 88।
1: हाँ।
0: इस पर हमारे किसान भाई अपनी

0: समीक्षा हमें लिखकर भेज सकते हैं,
1: ठीक है भैया।
0: और हिमांशु भाई जो किसान भाई पत्र लिखते हैं, हमें खत लिखते हैं,
1: हाँ
0: उसका पता जरा तुम बता दो।
1: बिल्कुल भैया, पता है हमारा कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, और भैया पिन कोड है 2467-63।
0: तो भैया इस पते पर हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी।
1: हाँ
0: और हिमांशु भाई अब अगले कार्यक्रम तक किसान भाई अपने साथी नरेश पाल सिंह
1: और अपने साथी हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति।
0: किसान भाइयों, राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। समय संध्या के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानूनी सलाह, जिसमें आज आप सुनेंगे एडवोकेट खुर्शीद मोहन जैदी से एसके नौटियाल की पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता का विषय है बाल विवाह निषेध कानून।
1: कानूनी सलाह, कानूनी सलाह,
2: कानूनी सलाह कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ एसके नौटियाल, और इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह एक नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एडवोकेट खुर्शीद मोहसिन जैदी। वकील साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: और आपसे आज की हमारी बातचीत का विषय है बाल विवाह रोकने संबंधी कानून क्या है। श्रोताओं, एक अरसे पहले हमारे समाज में कुप्रथा थी कि बालपन में यानी कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी हम लोग कर देते थे। सबसे पहले वकील साहब, इस कार्यक्रम में मेरा सवाल श्रोताओं की ओर से यही है कि किसको बालक कहेंगे, यानी कि उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए बालक की।
3: देखिए नौटियाल जी, जहाँ तक बालक की परिभाषा का सवाल है
2: जी,
3: बाल विवाह विरोधी अधिनियम, इसमें सेक्शन 2 और 3 में ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि वो लड़का या लड़की जिसकी लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होगी, वो अवयस्क या बालक की श्रेणी में आएंगे। इसलिए ये उम्र भारत सरकार द्वारा निर्मित कानून में स्पष्ट लिखा जा चुका है और वो सभी भारत में ये मान्य है।
2: अच्छा, तो एक उम्र की सीमा कानून के द्वारा तय की गई है। और वकील साहब, मैं ये भी कहूंगा कि इस उम्र तक के जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र 3 भागों में बांटी जाती है। 14 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं वो बाल कहलाते हैं, 14 से 18 की उम्र के जो बच्चे हैं वो किशोर कहलाते हैं, और 18 और 21 के बीच में जो बच्चे होते हैं वो युवा कहलाते हैं। हमारा जो कानून है बाल विवाह निरोधक कानून, वर्तमान में भी कहीं कहीं किसी किसी राज्य में कुछ घटनाएं इस तरह की सामने आती हैं, तो ये कानून क्या कहता है?
3: देखिए मैं नोटियाल जी, इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा और थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा इस एक्ट के बनने से पहले
2: जी,
3: कि चूंकि भारत बहुत ही प्राचीन देश है और यहाँ तमाम राज्य और क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ बहुत अशिक्षा थी और बहुत लोगों में सामाजिक जीवन को अपने तौर से जीने की एक परंपरा चली आती थी
2: जी।
3: चूंकि पुरानी सभ्यता है हमारी, जो बाल विवाह विरोधी अधिनियम या इस ओर कार्य करने वाले या इसको कानून के रूप में देखे जाने के लिए, मैं सबसे पहले हरविलास शारदा का नाम लूंगा, जिन्होंने सर्वप्रथम इसके विरोध में कार्य किया और इसको लोगों के प्रति जागृत किया और ब्रिटिश कानून में इसका समावेश कराने की उन्होंने कोशिश की। और सबसे पहला जो एक्ट बना इसमें बाल विरोधी अधिनियम, वो बना 1929 में।
2: अच्छा।
3: और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ और वो हरविलास शारदा के नाम से ही, बल्कि इसको यूं कहा जाए कि वो शारदा एक्ट ही कहलाता था।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: शारदा एक्ट बना और उसमें जो एज ऑफ प्रोबेबिलिटी थी यानी वयस्कता की उम्र रखी गई थी वो 14 और 18 साल रखी गई थी
2: जी।
3: मगर लोगों ने उसे भी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया और चूंकि बिल्कुल वो कानून शैशव काल का कानून था, इसलिए लोगों में उसकी न तो इतनी पब्लिसिटी हुई न प्रचार प्रसार हुआ
2: जी जी।
3: तो उसके बाद लोग अपने उसी ढर्रे पे चलते रहे और ये जानने बगैर कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हमारे समाज में पड़ रहे हैं, ये रहा।
2: वकील साहब, ये भी देखने में आता था कि बच्चे की इतनी उम्र नहीं होती कि वो शादी के अर्थ को ही समझे, बहुत छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थी, 6 साल 8 साल 9 साल 10 साल, ये अमूमन उम्र बच्चों की रहती थी और बच्चे खेलने कूदने की उम्र के होते थे और वो शादी को बिल्कुल भी नहीं समझते थे, लेकिन शादी कर दी जाती थी। तो इस तरह की जो समस्याएं थी, इस तरह की जो एक कुप्रथा थी, उसको बदलने का प्रयास किया गया और ये बदली भी गई। वर्तमान जो हमारा देश है और वर्तमान कानून है, इसके द्वारा जो उम्र की सीमा रखी गई है शादी की, वो 21 और 18 साल है। मैं जानना ये चाहूंगा कि अभी इस कानून के दायरे में जो लोग आते हैं वो सभी हमारे नागरिक देश के हैं, लेकिन उसके बावजूद, कानून बनने के बावजूद भी कुछ लोग उसका पालन ना करके बच्चों की शादी कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस कानून में क्या प्रावधान है?
3: कानून अपना काम करता है, कानून सभी के लिए एक है, हिंदुस्तान का कानून है, उसको हर भारतीय नागरिक को मानने के लिए बाध्य है वो,
2: बिल्कुल।
3: और अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, उसको नहीं मानता है, तो फिर कानून में दंड का प्रावधान रखा गया है। तो अगर कोई परिवार में कोई इस तरह की शादी होती है जो एक्ट में दिए गए आयु से कम है
2: जी,
3: तो उनमें बाकायदा उसको प्रतिबंधित तो किया गया है, और ऐसा करने पर बिल्कुल उन करने वालों को, वो कराने वाले को, अनुष्ठान करने वाले को, बारातियों को, सबको सजा का प्रावधान
2: किया गया है,
3: जिसमें जो सजा है वो 2 साल की
2: जी,
3: और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना पे किया जा सकता है। अगर कोई रिपोर्ट कर दे उनकी, तो वो निश्चित रूप से ये संज्ञेय अपराध है, और उसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करके उनको अरेस्ट भी करेगी, और उन पर ये कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा और वो दंडित भी किए जाएंगे।
2: अब वकील साहब, क्या ये दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं?
3: हाँ, बिल्कुल दी जा सकती हैं। कानून में प्राविधान है कि दंड भी दिया जाएगा, वो जेल भी जाएंगे, और उसके साथ साथ आर्थिक दंड भी मिलेगा, जो मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक होगा।
2: अच्छा, मैं कारण ये जानना चाहूंगा कि जो ये कुप्रथा चल रही थी हमारे देश में, अभी भी कहीं कहीं बहुत कम केस इस तरह के देखने में सुनने में मिलते हैं, तो इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं?
3: देखिए, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण जो मानता हूं मैं, ये कानून को न मानने की प्रवृत्ति। दूसरी, हमारी परंपराएं जो हैं वो कानून के आगड़े आती हैं। बहुत सारे प्रदेश, जैसे मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश के तमाम आदिवासी जहां पर रहते हैं वहां, या जहां कानून की प्रचार प्रसार नहीं हुआ, राजस्थान का इलाका चूंकि बहुत कम जनसंख्या वाला प्रदेश है और दूर दूर है, वहां पे भी कानून का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, और लोग अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं।
2: जी जी जी।
3: तो इस वजह से वो आज भी इस तरह की शादियां करा रहे हैं। बहुत सारे केस रिपोर्ट हो जाते हैं तो उसमें दंड भी मिलता है, और नहीं होते हैं तो वो फिर ऐसे ही चलता भी रहता है।
2: वकील साहब, एक कारण मुझे ये लगता है कि शायद कहीं असुरक्षा की भावना तो कहीं हमारे दिमाग में नहीं थी।
3: नहीं, देखिए, उसमें ऐसा है कि कुछ न कुछ किसी न किसी चीज के पीछे एक पूरा एक कारणों का एक पुलंदा होता है, आप उसको आम भाषा में कहिए, बहुत सारे कारण इकट्ठे हो जाते हैं जो किसी चीज को उत्प्रेरित कर देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था।
2: बिल्कुल।
3: दूसरा, जब पुनर्विवाह नहीं होता तो लड़की कहाँ जाएगी? माँ बाप में इतनी क्षमता नहीं है कि वो रखे। लड़की में असुरक्षा की भावना होती थी, लोग गरीब भी थे आज से पहले काफी, जो
2: जी जी जी
3: है, गुर्बत भी थी, कि वो ये था कि भाई इसको लड़की का भार किसी दूसरे पे शादी करके उसको उस भार से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे विश्वास की कमी थी, लड़कियों में कोई विश्वास पैदा नहीं होता था, चूंकि अशिक्षा थी। सबसे मूल कारण हर चीज के पीछे अशिक्षा है।
2: जी जी।
3: अशिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से ही आज की जो है समाज चलता है और चलना चाहिए।
2: आपने बहुत अच्छी बात कही है, अशिक्षा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और पहले के दौर में लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे, अधिकतर जनसंख्या हमारे देश की अनपढ़ की थी। आज

0: के दौर में वर्तमान जो हमारा समय है उसमें लगभग हम ये कहेंगे कि 90% से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, सब में समझ आ गई है, वेल एजुकेटेड हो गए हैं। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन आगे कहाँ तक जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी और सकारात्मक परिस्थिति हमारे सामने है। आज के जो युवा हैं, आज का जो हमारा समय है, आज के जो हमारे नागरिक हैं, हमारे परिवार हैं, हमारा समाज है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं?
1: जो पिछला 5 दशकों की मैं बात कहूं,
0: जी
1: क्यों चूंकि 5 दशकों की बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। एक मेन मुद्दा भी आया है शिक्षा का, और परिवारों में शिक्षा बढ़ी है और अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। जितनी एक गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए था उससे ज्यादा बढ़ी है। आप बिजनौर कोई ले लीजिए, एक छोटा जिला था, पहले एक कॉलेज हुआ करता था, एक डिग्री कॉलेज हुआ करता
0: जी
1: था,
0: जी जी
1: एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। अब हर गांव में गवर्नमेंट ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और बच्चों को अनपढ़ न रहे इसलिए प्राइमरी से लेके और उस क्षेत्र में डिग्री कॉलेजेस, उस क्षेत्र में इंटर कॉलेजेस खोल दिए हैं, जिनसे वो वहां पढ़ने वाले, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है,
0: जी
1: लड़का है या लड़की है, वो अपने उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी
1: और जब
0: जी
1: ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ता है, शिक्षित होता है, तो उसकी सोच बदलती है और उस सोच का प्रभाव इस ओर भी गया है। और अब लोग समझदार हो गए हैं, पढ़ने लिखने से उन्हें ये बात पता हो गई कि भाई क्या शादी होनी चाहिए, हम अपने परिवार को कैसे रखेंगे, कैसे देश के प्रति हम समर्पित रहेंगे, कैसे परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, कैसे जनसंख्या को कंट्रोल करना है, कैसे परिवार को चलाना है।
0: जी
1: तो ये सारी चीजें शिक्षा
0: निर्भर
1: पे
0: करते हैं।
1: निर्भर करती हैं।
0: जी शिक्षा का ये प्रभाव होता है कि जब आदमी पढ़ा लिखा हो जाता है, हर चीज को समझने लगता है, उसमें एक कानून का डर पैदा हो जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जब कानून बन गया है, यदि कोई व्यक्ति इस तरह की गलती करता है, तो जब उसको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो क्या इसमें उसको बेल का भी प्रावधान है या नहीं?
1: देखिए, बेल का प्रावधान है इसमें, बेल उसको मिलेगी, उसको केस अपना लड़ना पड़ेगा, और जो उसके खिलाफ चार्जेस हैं, जो उसके खिलाफ अभियोग पुलिस द्वारा या कंप्लेनेंट द्वारा या जो परिवादी है वो लगाएगा, और उसमें जब उसकी विवेचना होगी, पुलिस विवेचना करेगी केस में,
0: जी
1: तो सब चीज बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो भारतीय कानून है उसमें इग्नोरेंस ऑफ लॉ, देयर इज नो एक्सक्यूज कहा जाएगा। अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो आप ये प्ली लेके या इस आधार पे अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर
0: नहीं
1: सकते।
0: कर सकते। वकील साहब, एक और चीज यहां मैं जानना चाहूंगा कि जब लड़के के परिवार के लोग होते हैं, बारात लेके आते हैं, लड़के और लड़की जब शादी होती है तो लड़की का परिवार भी होता है, तो जब इस तरह की कोई घटना हमारे सामने आती है, तो पुलिस में जब इन्फॉर्मेशन करने की बात आती है, सूचना देने की बात आती है, तो ये सूचना कौन दे सकता है?
1: देखिए, जहां तक लड़का लड़की और उसके परिवारों का प्रश्न है, उनमें से तो कोई क्यों देगा,
0: बिल्कुल
1: वो तो करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बारातियों को भी पता है कि लड़की पक्ष की उम्र कितनी है, और जो बारात लेके जा रहे हैं उन्हें भी पता है कि हमारा जो लड़का है, जिसके दूल्हा है, जो
0: उसकी
1: जिसकी
0: उम्र कितनी
1: बारात
0: है?
1: लेके जा रहे हैं उसकी उम्र कितनी है।
0: जी
1: तो ये तो एक नेचुरल है कि वो इस बात को कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। मगर अगर बहुत सारे सामाजिक जागरूक व्यक्ति होते हैं
0: बिल्कुल
1: वो इसको कंप्लेंट कर सकते हैं, थाने में कर सकते हैं। और इसमें एक दूसरी बात भी है कि अगर किसी की शादी हो जाती है और वो ये समझते हैं कि हमारी ये शादी गलत हुई है, तो वो भी अपने आप जाके अदालत में उसको शून्यकरण करा सकते
0: करा
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: संविधान में और जिस कानून में प्रोविजन है कि वो जाएं अपनी अदालत में बात कहें और उनके जो वो है उसको शून्यकरण उसका विवाह का हो सकता
0: हो
1: है।
0: सकता है।
1: और उसमें यह है कि इसमें दोष जो है वो लड़की पक्ष का नहीं बल्कि लड़के पक्ष का ज्यादा माना गया है।
0: अच्छा
1: और उसमें यह है कि अगर आपकी शादी शून्यकरण हो भी गई है, तो जब तक उस लड़की का पुनर्विवाह नहीं हो जाएगा तब तक लड़के पक्ष को उसमें उसे लड़की को पूरा भरण पोषण दिया जाएगा, उसके
0: अच्छा
1: बच्चे का खर्चा भी दिया जाएगा।
0: अच्छा यदि बच्चा पैदा हो जाता
1: हाँ,
0: है।
1: यदि बच्चा पैदा हो जाता है। और बच्चा पैदा होने के लिए इसमें प्रोविजन यह है कि हो जाने
0: नहीं
1: के बाद भी विवाह कानूनी नहीं माना जाता,
0: नहीं माना जाता।
1: परंतु अगर ऐसे स्थिति में कोई संतान उत्पत्ति होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
0: जी जी,

0: वो संतान उस परिवार का हिस्सा होगी और वो वैध संतान होगी और उसको बाकायदा उसकी अपने पिता और माता से जो भी उसको शेयर मिलने का है वो उसका वैसा ही इंटैक्ट रहेगा, वो उसे प्राप्त हो। इस आधार पे उसको किसी चीज से वंचित नहीं किया जा सकता। उसके माँ बाप की शादी अवैध थी और वो गैर कानूनी थी।
1: क्या हमारे जो नागरिक हैं, समाज के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप, क्या संदेश देंगे कि ताकि कहीं कोई गलती ना हो?
0: इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि बाल विवाह विरोधी अधिनियम 2007 है, इसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था जी। तो सबसे पहले तो इसको एक जन जागृति आंदोलन की तरह अपनाना चाहिए और जो लोग भी एनजीओज हैं या सरकार है इसका बाकायदा प्रचार प्रसार करें। स्कूलों में इस तरह के सेमिनार्स कराए जाएं जहां बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं कि उनको अपने इसका ज्ञान वर्धन हो उनका और वो इस विषय में भी सोचें और कानून को देखें। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और मानवाधिकार संस्थाएं जो हैं, मेरा कहना यह है कि इसको बहुत छोटे से स्तर से और बड़े स्तर तक हर जगह इसका प्रचार प्रसार हो और जब तक आप प्रचार प्रसार किसी कानून का नहीं करेंगे
1: जी,
0: तो मेरा मानना यह है कि उससे समाज का कोई हित उस कानून का प्रभाव दिखाई नहीं देगा।
1: बिल्कुल, समाज में इस तरह की जो समस्याएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, उनको हटाने के लिए एक जन जागरण अभियान की आवश्यकता है ताकि जो समस्याएं हैं वो हमारे समाज से दूर हो सकें और हम कानून का पालन कर सकें। अपने आस पड़ोस, गांव, समाज, शहर, कस्बा, जहां भी वो रहते हैं, सबको जानकारी दें कि बाल विवाह कभी ना करें। हम वकील साहब धन्यवाद आपको देते हैं कि आप आए और हमारे श्रोताओं को जानकारी दी।
0: एक मैं बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट जो अभी हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया है
1: जी,
0: उसमें यह है कि अगर कोई अपनी अवयस्क पत्नी है उसके साथ भी पति होते हुए, पति पत्नी होते हुए भी कोई संभोग करेगा तो वो बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है और उसको बलात्कार की सजा मिलेगी।
1: जी जी, बच्चों को वयस्क होने के बाद ही उनकी शादी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: कानूनी सलाह।
3: कानूनी सलाह, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:02 हुए हैं। पेश है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में इस शाम को मदहोश करने के लिए सुनवाते हैं आपको एक मस्ताना सा गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है कटी पतंग। इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर.डी. बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

जी हाँ श्रोताओं, इसी ढलती शाम के साथ आज का छाया गीत कार्यक्रम अब हमजोली फिल्म के गीत के साथ ही संपन्न होता है। इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। अब सुनिएगा देशगान।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:15 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। संध्या 7:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में नोहे। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। रात्रि 8:30 पर समय रहेगा फिल्म संगीत के ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मेरे महबूब के कुछ गीत। फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद सुनिएगा आज रात 9:30 पर। रात के हम सफर फिल्मी गीतों का कंपेयर और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे आपकी गुदगुदाती मुस्कुराती यादों के बारे में। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ जानकारी दे देते हैं। दिन में 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में क्रम रहेगा आधी आबादी से का। इसके साथ ही सुनिएगा अंकित सैनी द्वारा निर्देशित लघु नाटिका ससुराल बेटी का कल और समाज। प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT योजनाओं की जानकारी दी जाएगी संध्या 5 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:05 पर सुनिएगा लोकगीतों और रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम लोक मंजरी। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। संध्या के 7:18 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार FIR दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में SIT की रिपोर्ट आते ही कार्यवाही शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है, अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है, SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल SIT की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। SIT मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा फानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर PAC पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने

मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश।

मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:31 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में कुछ नौहे। नमस्कार श्रोताओं, आज का ये सुगम संगीत कार्यक्रम हमने समर्पित किया है मुहर्रम की उस याद को जो हमें सब्र, सच्चाई, इंसाफ और कुर्बानी का पैगाम देती है। करबला की सरजमी पर इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सच और इंसानियत की राह में जो अजीम कुर्बानी पेश की वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आइए इसी अकीदत और एहतराम के साथ सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा नोहे जो करबला की उस दर्द भरी दास्तां और इमाम आली मकाम को की याद को ताज़ा करते हैं।

हुसैन तुमको तुम्हारे सब्र का

حسین تم کو حسین لے چلے۔

तो पेशवाई में जन्नत सलाम कहती है।

सलाम कहती है हुसैन तुमको, हुसैन पाक का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोता, इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज अपने श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं मोहर्रम पर्व के उपलक्ष्य में कुछ नोहे। श्रोताओं, मोहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना होता है और आज 10वीं तारीख को इस्लामी समाज के लोग मुहर्रम मना रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान, इस महीने की पहचान जो होती है, सिर्फ एक नए साल की शुरुआत नहीं होती, बल्कि करबला की उस अमर दास्तान से इसका रिश्ता है, जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए सब्र, सच्चाई और इंसाफ का पैगाम दिया। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हक की राह आसान नहीं होती, लेकिन यही राह सबसे बुलंद होती है। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, हजरत अली और हजरत फातिमा के लखते जिगर और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उनकी जो जिंदगी थी, अमन, अखलाक, सब्र और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल थी। इमाम हसन ने सुलह और एकता का रास्ता अपनाकर उम्मत की भलाई के लिए काम किए। आइए उनको याद करते हुए और उनकी कुर्बानी को याद करते हुए, हक और इंसाफ की उनकी लड़ाई की इज्जत करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला नोहा।
5: हुसैन जैसा वफा का पैकर, हुसैन जैसा वफा का पैकर,

रहे खुदा में लुटा के सब कुछ, रहे खुदा में लुटा के सब कुछ।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज मुहर्रम पर्व के उपलक्ष में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ नोहे। तो लीजिए अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम नोहे की तरफ।

عباس علمدار علم کھول رہے تھے.

कभी खुशी कभी गम कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक के युगल स्वर में। गीत को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित और संदेश ने, शब्द रचना थी समीर और अनिल पांडे की। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत रचना संजीव दर्शन की। फिल्म का नाम है कर्स, द बर्डन ऑफ द ट्रुथ। श्रोताओं, कहते हैं शाम का जाना और रात का आना सिर्फ दिन का ढलना नहीं होता, बल्कि ये एहसासों के और भी गहरा होने का वक्त होता है। जब फिजाओं में नरमी होती है, दिल में अपनापन होता है, और ऐसे ही वक्त पर दिल एक खामोश सी गजल लिख देता है। जब उसके साथ किसी एक ऐसे अजीज का साथ हो जाए जो उसके हर लम्हे को हसीन और यादगार बना दे। आइए ऐसे ही खूबसूरत एहसास को शब्द और सुर देता कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

शुदा मोहब्बत कभी शोर नहीं करती, कई बार दो दिल बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये रिश्ते खामोशी में भी अपनी कहानी लिखते हैं। वक्त की ये खामोशी में अक्सर दिल की आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं, जो बातें अल्फाजों में नहीं कह पाते उन्हें दिल की धड़कनें बड़ी सहजता से कुछ यूँ बयां कर देती हैं।

नागनिक और साथियों के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। एक बार फिर अलका याग्निक उदित नारायण के युगल स्वर में, संगीत रचना शंकर महादेवन की है और गीतकार हैं समीर। श्रोताओं, वक्त के लम्हे ऐसे होते हैं जो बिना कोई आवाज किए हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, बस दिल से महसूस किया जा सकता है। आइए ऐसे ही एक अनमोल एहसास को सुरों में ढले हुए इस गीत को हम सुनते हैं।

श्रोताओं, हर सुहानी महफिल की तरह आज की हमारी ये महफिल भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। उम्मीद है आज के गीतों ने आपके इस लम्हों को मधुर और यादगार बना दिया होगा और आपके पलों को महका दिया होगा। कार्यक्रम में विदा लेने से पहले आइए सुनवाते हैं चलते चलते एक ऐसा नगमा जो हमने लिया है फिल्म चलते चलते से ही। तो आइए सफ़र की इस खूबसूरती और साथ बिताए लम्हों की मिठास को और मीठा करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। अभिजीत अलका याग्निक के स्वर में, संगीत जतिन ललित का है और गीत के वो लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, इन्हीं सुरीले गीतों के साथ आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। आपके स्नेह भरे साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए का कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आपका स्वागत है। आज एक ही फिल्म से में बात उस फिल्म की जिसके हर गीत में मोहब्बत की खुशबू है, शायरी की मिठास है और लखनऊ की तहजीब की नफासत घुली हुई है। मेरे महबूब, जिसकी कहानी अनवर और हुस्ना की मोहब्बत को बड़े ही खूबसूरत अंदाजे में पर्दे पर उतारती है। नौशाद साहब के संगीत शकील बदायूनी के अल्फाजों में पुरोए हुए गीत और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले की, इन सब ने मिलकर इस फिल्म के गीत संगीत को ऐसी पहचान दी जो आज भी बरकरार है। तो आज के कार्यक्रम की महफिल की शुरुआत करते हैं फिल्म के शीर्षक गीत से, जिसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और गीत रचना है नौशाद साहब की और संगीत शकील बदायूनी का।

शकील बदायूनी के लिखे गीत नौशाद के संगीत में मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना। श्रोता, मेरे महबूब उन फिल्मों में से है जहां गीत कहानी का हिस्सा बनकर हमारे सामने आते हैं। इसके हर गीत में जज्बात की एक नई परत खुलती है और सुनने वाला खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। आइए अब सुनते हैं कार इसी फिल्म का एक ऐसा गीत जिसमें चाहत की गहराई, दिल की बेचैनी और अपने महबूब की तारीफ बेहद दिलकश अंदाज में उभर कर सामने आती है।

0: श्रोताओ, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे महबूब फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: मणि से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त कर

0: करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

0: कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control. calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaigns. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
3: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
2: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. He urged all chief secretaries and directors general of police to upload details of drug-related cases on these portals within a fixed timeline. He said that timely sharing of information would help the government to monitor cases more effectively and provide states with necessary feedback and suggestions to improve investigations and enforcement. The Home Minister also launched a drug disposal fortnight under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances valued at around 6,000 crore rupees will be destroyed. Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal today announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Addressing the 10th annual UK-India Week in London today, Mr. Goyal said that the India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defense and clean energy. The minister said that India moved from the fragile 5 to being recognized as the world's biggest opportunity under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said that India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement is focused on bringing the best of both countries to each other.
4: The UK agreement is a template which is very comprehensive. It's not only about tariffs and rules of origin. It's not only about trade in goods and services. It's about collaboration in technology, in education, culture, the arts. It is focused on bringing the best of both countries to each other. It's a fair, equitable, very balanced agreement.
2: Talking to the media in London, Mr. Goyal said that his counterpart from the United States was in India for the last 3 days. He informed that they had extensive engagements and broadly, both are in agreement on most aspects of the trade deal. Global investment bank Goldman Sachs has raised India's real GDP growth forecast to 6.8% for the calendar year 2026 from its earlier estimate of 6.5%. citing easing oil prices and improving domestic economic conditions. In its latest report titled India, Improved Macro Outlook After the US and Iran Deal, the Global Investment Bank lowered its headline inflation forecast by 0.2 percentage points to 4.4% and reduce its current account deficit estimate to 1.5%.

नमस्कार श्रोताओं, आज के हेलो नजीबाबाद में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं मैं आपकी रेडियो साथी फरीना। श्रोताओं, हर आवाज की अपनी एक कहानी होती है, हर मुस्कान की अपनी एक रवानी होती है, जो दिलों को दिलों से जोड़ दे बस वही मुलाकात तो सबसे सुहानी होती है। इन्हीं सुहानी मुलाकातों का सिलसिला आज चलेगा हेलो नजीबाबाद में, और आपके साथ मैं अगले एक घंटे तक आपकी पसंद, आपकी फरमाइश के गीत और आपकी प्यारी प्यारी बातों के साथ रहूंगी साथ। तो जल्दी से उठाइएगा फोन और कीजिएगा फोन हमारे नंबर 9457078288 पर और बात कीजिएगा हमसे और सुनिएगा अपना फरमाइशी गीत। अपना दूसरा नंबर भी हम आपको बता देते हैं, हमारा दूसरा लैंडलाइन नंबर है 03031 340105। तो देखते हैं कार्यक्रम में पहला गीत सुनने के लिए आज हमारे पहले श्रोता कौन है।

0: हेलो,
1: हेलो। हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: हेलो
1: और कैसी हो परीना जी?
0: जी, हम ठीक हैं। पहले ये बताइए कि हमारी बात हमारे किस श्रोता से हो रही है।
1: जी, मैं ग्राम बेफोर्स राहुल नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह बात कर रहा था जी।
0: आचार्य सत्यवीर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद में।
1: जी धन्यवाद।
0: तो आचार्य सत्यवीर जी, क्या करते हैं आप?
1: देखिए जी, मैं 20 साल
0: हेलो,
1: तक शिशु मंदिरों में पढ़ाया है। फिलहाल मैं तो इस समय कुछ समस्या से ग्रस्त हूँ, इसलिए घर पर ही रहता हूँ इस समय।
0: अच्छा, तो
1: जी, 20 साल तक पढ़ाया मैंने, पढ़ाई का काम किया है जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो फिर एजुकेशन का बहुत एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों को शिक्षा बांटते हैं। ये तो सबसे बड़ा दान होता है, शिक्षा का दान।
1: जी फरीदा जी, मैं बताऊँ, कुछ 6 साल पहले तो कहीं समस्या हो गई थी, आंखों से देखना बंद हो गया।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो इस समय ब्लाइंड है, तो जो आपको तो घर पर ही रहना हो रहा है, इसलिए अब कहीं आप बस रेडियो सुन रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, आप जैसे लोगों से बात होती रहे, वो यही बहुत अच्छा काम।
0: जी हाँ, अच्छी बात है। तो आचार्य सत्यवीर जी, ये बताइए कि वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो आजकल गर्मी का है जी, सब जगह गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो जैसा भी है ईश्वर का दिया हुआ मौसम है, इस पर तो ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। गर्मी बरसात जाड़े ये तो चलते ही रहते हैं।
0: हाँ,
1: गर्मी
0: ये तो
1: में
0: है।
1: अभी जी जून का महीना है, तो सुपर गर्मी का सबसे बड़ा महीना है, तो गर्मी तो होगी ही इस महीने।
0: जी हाँ, ये तो हकीकत है। जो मौसम होता है, हर
1: हाँ,
0: मौसम का अपना अलग अंदाज होता है।
1: अपना अलग अंदाज है। और देखो जी, हर प्रकृति ने जो चीज भी रखी है वाइजली पुट करके रखी गई है कि किसी न किसी चीज की हर समय आवश्यकता, गर्मी की आवश्यकता है तो मानसून आएगा, बरसात होगी। जी
0: बेशक बेशक। तो अच्छा
1: जी
0: आचार्य सत्यवीर जी, आगे बात करने से पहले ये बताइए कि आप आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी देखिए, एक फिल्म है यादगार और उसका एक सॉन्ग है जिस पथ पर चला, और जिस पथ पर चला ये गीत सुनवा दीजिएगा। और इस गीत को ना, ये साहब मदन गिरी जी हैं गदरौना से, और आशिक चौधरी हैं, रशीद अंसारी जी हैं, अमित दीवान है, और प्रकाश चंद जी, ये सब लोग और सुनना चाह रहे हैं इस गीत को। हेलो,
2: हेलो,
1: जी जिस पथ पर चला मिल गया गीत?
0: जी, मिल जाएगा। वो थोड़ा सा कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ गई थी। तो अच्छा,
1: जी
0: ये बताइए आचार्य सत्यवीर जी, ये गीत आप क्यों पसंद करते हैं?
1: बस देखिए जी, हिंदी पर साहब ने ऐसे शब्द प्रयोग दिए इस गीत में कि एक तो अमर गीत है, और शब्दों का चयन इतना सुंदर किया उन्होंने कि सुनकर के ऊर्जा ऊर्जा देता है गीत।
0: अच्छा,
1: हाँ, और

0: बता दो, इस गीत की एक खास बात हो रही है कि नारायण बारा में इस तरह अशोक कुमार है, वो इस गीत को इतना पसंद करते थे कि अगर ये गीत कहीं सुनता हुआ मिल जाए तो वो जब तक उसका पूरा न सुन ले वो खड़े हो जाते थे वहां उसको सुनने के लिए इस गीत को।
1: अच्छा, तो लीजिएगा, आपकी पसंद पर हम सभी श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म यादगार का ये गीत लता मंगेशकर की
0: ठीक है,
1: आवाज में। कार्यक्रम में हमें फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोता, आपने यादगार फिल्म का ये गीत सुना हमारी श्रोता की फरमाइश पर। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जो हेलो नजीबाबाद में आज अपनी फरमाइश को सुनने वाले हैं। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: हेलो हेलो
1: हेलो जी,
0: नजीबाबाद।
1: नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: हेलो
1: हेलो, मैं प्रेम सिंह।

0: बिल्कुल, हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है,
1: अच्छा
0: उसमें हम 4 गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, 1 ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
1: अच्छा अच्छा ये बताइए, आपने आज पहली बार कॉल की है?
0: नहीं, मेरे करीबन 1 डेढ़ 2 महीने के बाद आज कॉल लगा है यहाँ पर। हाँ
1: अच्छा, तो कार्यक्रम
0: जी,
1: में
0: ऐसे में
1: आप,
0: मोबाइल ऐप
1: जी जी बताएं।
0: जी, मैं मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ नजीबाबाद की।
1: अच्छा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप मोबाइल ऐप पर हमें वक्त देते हैं, हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। तो चलिए, अच्छा ये
0: जी हाँ,
1: बताइए, कार्यक्रम में आगे भी बात करेंगे आपसे, ये बताइए आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
0: जी, फिल्म का नाम है आपकी कसम और गाने के बोल है करवटे बदलते रहे सारी रात हम।
1: अच्छा, तो ये जो
0: जी
1: गीत आप हमें बता रहे हैं, आपकी कसम फिल्म का, तो
0: हाँ जी,
1: आप हमें ये बताएंगे कि अगर ये गीत हमें ना मिल पाए तो इसकी जगह आप हमें अपनी दूसरी चॉइस भी दे सकते हैं?
0: जी बिल्कुल बताएंगे। दूसरी जो एक फिल्म का नाम है विरासत।
1: चलिए, अच्छा आप निराश मत होइए, हमें गीत मिल गया है।
0: जी, जैसे मैं ना 2-3 फिल्में सोच के रखता हूँ, कभी ये नहीं तो वो मिल जाए ऐसा, मतलब।
1: नहीं, मिल गया है, आपने अच्छी चॉइस की है, और देखिए मिल भी गया आपका लक। देखिए, आपने शायद
0: जी
1: दिल
0: हाँ,
1: से सोचा होगा और दिल से मांगा होगा कि आज मैं ये गीत सुन लूं। तो अच्छा ये
0: जी जी
1: बताइए
0: हाँ, जैसे
1: आपकी,
0: मैं कॉल में आपको बताऊँ, जैसे मैं कॉल मिलने लगा था ना,
1: जी
0: उस
1: जी
0: समय से मैंने इसी गाने को सोच के रखा था कि मेरा कॉल लगेगा तो मैं इसी गाने की फरमाइश करूंगा।
1: अच्छा, तो ये गीत आप किसको डेडिकेट कर रहे हैं या क्यों पसंद करते हैं, वजह बताएंगे आप?
0: जी, गाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ है ना गाना, तो मैं उन्हीं का मतलब ज्यादातर गाने सुनता हूँ। जी
1: जी, उनके साथ किशोर कुमार की आवाज भी है इस गीत में।
0: हाँ, और मैं आपको बताऊं, जैसे आकाशवाणी से जुड़ता रहता हूँ मैं, करीबन मैं फॉरेन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता हूँ, कम से कम 30 आकाशवाणी से जुड़ता हूँ मैं।
1: अच्छा
0: हाँ जी बिल्कुल, मोबाइल ऐप के जरिए हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं आकाशवाणी के।
1: तो फिर तो मतलब आप खेती भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, और आकाशवाणी के इतने सारे मतलब जो केंद्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप मतलब आकाशवाणी से कितना प्यार करते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, और मैंने एक रजिस्टर भी बना रखा है, जिसी भी आकाशवाणी में मेरा कॉल लाइव शामिल होता है या रिकॉर्डेड प्रोग्राम में लगता है ना, तो जब मेरा कॉल प्रसारित होता है उसका मतलब तारीख लिख के रखता हूँ मैं।
1: अच्छा, वाकई
0: हाँ
1: में
0: जी
1: आज आपसे मुलाकात करके हेलो नजीबाबाद में हमारा दिल तो बाग बाग हो गया है।
0: जी बिल्कुल, अभी जैसे आपसे मेरी बात हो रही है ना, तो मैंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है 1 जनवरी 2026 से, अब
1: अच्छा,
0: तक मेरे 780 कॉल हो चुके हैं तमाम आकाशवाणी पर लगाकर।
1: अरे वाह, ये तो बहुत
0: हाँ
1: बढ़िया
0: जी
1: रिकॉर्ड हो चुका है। तो आपको ये रिकॉर्ड
0: हाँ
1: कहाँ
0: जी
1: तक बनाना है?
0: ये रिकॉर्ड मुझे 2026 के लिए मैंने ऐसा लक्ष्य रखा हुआ था कि जिसे भी आकाशवाणी में मेरा कॉल लगेगा उसको मतलब लिखित में रखूंगा मैं, और 2026 जब पूरा होगा ना, तब मुझे करीबन 2000 कॉल तक पहुंचना है सभी आकाशवाणी के मिलाकर।
1: बहुत अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, और आज जो आपने
0: जी
1: ख्वाहिश की है
0: बिल्कुल
1: गीत सुनने की, वो हम अभी पूरी कर देते हैं।
0: जी, थैंक यू सो मच
1: ठीक है, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा, गीत सुनिएगा।

0: श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जब आप करेंगे हमारे नंबर 9457078288 पर फोन। आपकी फरमाइश जो आप करेंगे, आपकी पसंद के गीत, तो बनिएगा इस कार्यक्रम में हमारे बीच और करिएगा फोन जो नंबर हमने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर हेलो नजीबाबाद में कौन से हैं। हेलो हेलो नजीबाबाद,
1: हेलो
0: हेलो,
1: हमें गाना सुनना।
0: आप कौन बात कर रहे हैं पहले ये बताइए, और अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर रखिए।
1: मैं मोहम्मद असलम बोलिया
0: जी, आप कौन सी जगह से बात कर रहे हैं?
1: मैं सहसपुर मोहम्मद असलम बोलिया सहसपुर से।
0: अच्छा जी, असलम जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी असलम जी, आप आकाशवाणी नजीबाबाद कब से सुनते हैं?
1: मुझे होगा कुछ 10 साल।
0: अच्छा, तो इन 10 सालों में जो आपका आकाशवाणी नजीबाबाद से रिश्ता बना है वो कैसा बना है?
1: सही है,
0: सही है। तो आपको कौन कौन से कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद के पसंद आते
1: मुझे
0: हैं?
1: मुझे सभी अच्छे लगे।
0: अच्छा,
1: तो
0: आज इस कार्यक्रम में आपने फोन किया, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं गीत सुनूंगा दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे।
0: अच्छा, ये गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर से, है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो ये गीत आपको क्यों पसंद है बताएंगे?
1: मुझे बहुत अच्छा लगे मैडम ये गाना।
0: आप प्लीज अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर रखिएगा।
1: दूरी है मैडम,
0: हमें आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है
1: ना, रेडियो तो दूर है।
0: आप क्या काम करते हैं बताएंगे?
1: मैं काम नहीं करता मैडम, ये भी नंबर मेरे भांजे ने लगा के दिया और मैं आंखों से ना भी ना।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो आप जो गाना सुनना चाहते हैं वो है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी से। तो लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम का ये गीत आपकी पसंद पर।
1: अच्छा मैम,
0: ठीक है, कार्यक्रम में शामिल होने का आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में एक गीत सुना, तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर की कॉल लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: दीदी को राधे राधे।
0: जी राधे राधे, बताइए, हमारी बात हमारे किस श्रोता से हो रही है?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, भारत के नक्शे में बिल्कुल मध्य से आपने हमें कॉल लगाई है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम में आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: आज आप दीदी सुनवा दीजिएगा, दिल है तुम्हारा मूवी का, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके।
0: अच्छा, तो ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। तो ये गीत आप किसी की, मतलब किसी को डेडिकेट कर रहे हैं या किसी के लिए पसंद करते हैं, क्या है रीज़न इसको पसंद करने का, कुछ बताएंगे?
1: डेडिकेट तो करेंगे दीदी, दो चार मित्रों को याद भी करेंगे बाद में, लेकिन इसके जो फिल्म आया गया ना, वो एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है इस पर।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
1: प्रीति जिंटा जी हैं इसी गाने में।
0: जी जी जी।
1: और महिमा चौधरी जी हैं शायद।
0: जी, अच्छा ये बताइए केसरी जी, आप क्या काम करते हैं?
1: दीदी मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और साथ में खेती भी है प्लस में।
0: अच्छा, तो आज तो हमारी बात ऐसे लोगों से हो रही है जो खेती भी करते हैं और मतलब दूसरा काम भी करते हैं उसके साथ साथ। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास दो दो हुनर हैं।
1: हाँ हाँ हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो केसरी जी आप किस मतलब कौन से अन्न की खेती करते हैं, बताएंगे?
1: ये अभी दीदी हमारे इधर सोयाबीन की बुआई चल रही है और धान लगेगी, धान की रोप लग गई, मतलब रोप रोपण हो गया उसका। अब उसको धान लगेगी, बरसात जब ज्यादा हो जाएगी तब वो फिर पौध के रूप में अभी उगे आई है, फिर उसको एक एक पौधा करके लगाते हैं दीदी धान में, पानी के साथ, पानी में भीग कर, भीग मतलब पानी में ही लगती है वो धान।
0: अच्छा, तो अपने मित्रों का नाम बता दीजिए जिनको आप ये गीत डेडिकेट कर रहे हैं।
1: हमारे मित्र राम बाबू शर्मा जी है, मांगीलाल चंदेल जी सुन रहे हैं, और भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, और पूनम जी है कानपुर से, अविनाश जी है, आशुतोष जी। और दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया लग रही है, और सबसे बढ़िया एक बात आपने मुझे ऐसी लगी कि आपने एक ही नंबर बताया और उसी पे कॉल रिसीव किए, नहीं तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं क्या दो दो नंबर चलते हैं, उसमें कन्फ्यूजन बहुत जाता है।
0: नहीं, ये तो महज इत्तेफाक है, और आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आकाशवाणी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आकाशवाणी का हर कार्यक्रम अपने श्रोताओं की उम्मीद पर खरा उतरे। अगर आपको पसंद आया है तो हमारी कोशिश कामयाब हुई है, और आपने जो आज कोशिश की है अपने फरमाइशी गीत सुनने की, हम उसको भी कामयाब कर रहे हैं आपकी पसंद का गीत सुनवा कर। ठीक है,
1: ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, राधे राधे। रात के हम सफर में मुलाकात होगी आपसे अभी।
0: जी हाँ, जरूर उस कार्यक्रम में मैसेज कीजिएगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में आज हम आप बात करेंगे, आपसे बता देते हैं, आपकी गुनगुनाती मुस्कुराती गुदगुदाती यादों के बारे में। तो इसी नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है, धन्यवाद, और अब आनंद लीजिएगा अपनी पसंद के गीत का।
1: ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में और भी श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से उनकी कॉल रिसीव हो जाए और वो अपना फरमाइशी गीत सुने। तो ले लेते हैं हेलो नजीबाबाद की अगली कॉल। हेलो
1: हेलो, हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। जी हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम छज्जूपुरा जनपद अमरोहा से।
0: अच्छा अमरोहा से आप बात कर रहे हैं, तो बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं जिसके लिए आपने हेलो नजीबाबाद में कॉल की है।
1: जी मैम एक फिल्म है गोरा और काला।
0: जी
1: इस फिल्म गीत गाया मुकेश और लता जी ने धीरे धीरे बोल को सुनना ले।
0: अच्छा तो ये गीत जो है धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, तो आप ये किसको सुनवाना चाह रहे हैं।
1: ये आपके यहाँ पहले बड़े बहुत बड़े अनाउंसर थे प्रेम कुमार सदाना जी, वो इस गीत को कई बार सुनवाते थे।
0: अच्छा
1: आज मुझे सदाना जी की याद आ गई, इसलिए मैंने वही गीत का चयन किया जो उन्होंने कई बार सुनवाया था।
0: हो सकता है सदाना जी भी ये प्रोग्राम सुन रहे हो और उनको सुनकर अच्छा लगा हो कि उनके जो उनके पसंद करने वाले श्रोता हैं वो आज भी उनका कितना ही दिल से याद करते हैं।
1: जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनके अलावा
0: लगता है कॉल कट गई है हमारे श्रोता की, लेकिन हम उनकी फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजीबाबाद जी
0: जी।
1: मैडम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग सर, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन श्रोता है जिन्होंने हेलो नजीबाबाद में कॉल लगाई है?
1: जी मैं मुस्तकिम अहमद बात कर रहा हूँ, परिणाम जी सेवारा से, सिटी
0: सिवारा से
1: टाउन।
0: ही बड़े करीब से आप बात कर रहे हैं।
1: जी मैडम, मैं काफी दिनों से कॉल लगा रहा हूँ, लगातार मैं 9 साल से कॉल लगा रहा हूँ इस कार्यक्रम में। सन 1978 से सुनता हूँ मैडम मैं।
0: इतने सालों बाद आज आपकी कॉल लगी है,
1: 9 साल के बाद आज कॉल लगी है मेरी प्रोग्राम में मैडम। जी
0: तो आज तो आपकी ईद हो गई फिर।
1: बिल्कुल मैडम, मेरी ईद हो गई आज। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपने मेरी कॉल को रिसीव करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि
0: नहीं सर, ऐसा नहीं
1: बहुत
0: है,
1: सी
0: ये चीज
1: मैं बराबर कॉल लगा रहा हूँ लेकिन मेरी कॉल रिसीव नहीं होती मैडम।
0: नहीं, ऐसा नहीं है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि हम स्क्रीन पर हमें किसी का नंबर मालूम नहीं होता है, ये महज एक इत्तफाक
1: जी
0: होता है कि किसी की कॉल लग जाए। और देखिए, आज आपकी 9 साल बाद कॉल लग रही है, तो ये तो
1: नौ
0: आपके लिए बड़ी
1: जी नौ
0: खुशी की
1: साल
0: बात
1: के
0: है।
1: बाद जी बहुत खुशी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके आज।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे ये
1: जी जी
0: कहेंगे कि आपने, देखिए हमारे काफ़ी श्रोता नाराज़ हो जाते हैं कि उनकी कॉल नहीं लगती है, और आपने 9 साल तक लगातार कोशिश की और आज ये कॉल आपकी लग गई है,
1: जी जी
0: और आज का दिन
1: लगातार
0: आपको
1: कोशिश,
0: याद रहेगा।
1: बिल्कुल मुझे आजकल ही याद रहेगा 2026 का शुक्रवार।
0: अच्छा, तो अच्छा ये बताइए,
1: जी
0: जब आपकी कॉल 9 साल बाद लग गई है, तो ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे जो आपकी आज की जो ये वक्त है, इन लम्हों को यादगार बना दे?
1: देखिए, मैं अपने लम्हों को यादगार बनाने के लिए जो दिल वाले फिल्म है उसका एक गीत है, कितना चिंचर है कितनी प्यारी आंख है, ये वाला गीत सुनना चाहूंगा आप।
0: अच्छा, तो ये गीत आपको क्यों पसंद है ये बताएंगे?
1: मैडम मुझे इस गाने के जो अल्फाज हैं, जो वर्ड हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, और इसकी जो आवाज है कुमार सानू, बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये फिल्म भी बहुत पसंद है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आप अपने कुछ मित्रों का या किसी का नाम लेना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: जी हाँ, मेरे परिवार में मेरी वाइफ है शाहजहाँ, और मेरी बहन है नूरजहाँ, और मेरा भाई नदीम अहमद, मेरा बेटा है मोहसिन अरीब अरीब अहमद, और मेरी छोटी बिटिया है माहिरा परवीन, और एक मेरी भतीजी है मिरहानाल,
0: अच्छा
1: मेरी भाभी है मैनाज नाज।
0: अच्छा तो आज तो इस खुशी के मौके पर आप अपने परिवार को मिठाई जरूर खिलाइएगा, ठीक है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके फोन के बाद मेरी मिठाई बांट दूंगा
0: अच्छा ठीक है, चलिए कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत अपने परिवार के
1: जी
0: साथ, अपने जो हमारे अन्य श्रोता हैं वो भी आनंद लेंगे, और वो सुन रहे होंगे कि किस तरह 9 साल की कोशिशों के बाद आज आपकी
1: जी जी
0: कॉल लगी है। तो वाकई में आप बड़े दिल वाले हैं, और दिल वाले फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, ठीक
1: जी
0: है?
1: जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छे अल्फाज में आपने बात की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
0: ठीक है, हम भी आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने कार्यक्रम में लगातार 9 सालों तक प्रयास किया। और देखिए, वाकई में इंसान अगर कोशिश करे तो कोशिश एक ना
1: हाँ
0: एक
1: तो
0: दिन
1: कभी
0: रंग जरूर
1: कोशिश
0: लाती है।
1: कोशिश कर जी, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती मैडम, ये तो सत्य है।
0: हाँ, ये सत्य है, और आइए अपनी कोशिश का रंग अब सुनिएगा इस कार्यक्रम में,
1: जी चलिए
0: ठीक है? कार्यक्रम में
1: ठीक है
0: शामिल
1: मैडम,
0: होने के लिए आपका
1: ओके
0: बहुत बहुत
1: जी,
0: शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कॉल को रिसीव किया। ठीक
0: जी हाँ, आकाशवाणी नजीबाबाद ने आज आपकी कॉल रिसीव कर ली है, ठीक है, थैंक यू।
1: है मैडम, ठीक है मैडम, थैंक यू।

0: महफिल वहीं सस्ती है जहां दिल मुस्कुराते हैं, महफिल वहीं सस्ती है जहां दिल मुस्कुराते हैं, गीत वहीं सस्ते हैं जहां हमारे कॉलर फोन लगाते हैं। तो हमारे कॉलर फोन लगाते हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद में अपनी फरमाइशी गीत सुनने के लिए। तो देख लेते हैं कार्यक्रम में हमारे अगले कॉलर कौन है जो इंतजार कर रहे हैं अपने पसंद के गीत को सुनने को। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, हेलो नजीबाबाद में आपका स्वागत है।
1: मैम जी आदाब।
0: आदाब सर। और
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खैटाने से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, आपने हमारे मालूम करने से पहले ही बता दिया, यानी बड़ी बेसब्री से आपको इंतजार था।
1: मुझे पता था मैम आप यही बोलने वाले हो।
0: जी हाँ, ये तो है कि तारुफ कराना तो मस्ट होता है ना स्टार्टिंग में कार्यक्रम के, कि हमें ये पता चले कि हमारे कौन से श्रोता हैं जो कार्यक्रम में कॉल लगा रहे हैं और इतनी बेसब्री से कार्यक्रम में इंतजार करते हैं अपनी पसंद के गीत सुनने का। तो कामिल जी, कार्यक्रम में आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है जानवर और गाने के बोले हमें प्यार हो गया कसम से कहां दिल खो गया सनम से इसी तरह के गाने के बोले मैम ये सुना देना।
0: ठीक है, सुनवा देते हैं। और आप
1: मैम
0: हमारे
1: मेरे फ्रेंड भी हैं कुछ साथ में सुनने वाले,
0: जी जी जी
1: मोहम्मद तालिब परवेज, रफी मकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीसुर रहमान, ये सब सुनना चाहेंगे।
0: अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मैम, मैं घर पे रहता हूँ, राइस मिल का काम है अपने, ये काम करता हूँ
0: अच्छा,
1: और आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप काम करते करते हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। और मतलब ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्रोता का मतलब जो वो काम करते हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है, वो भी लगातार चलता रहता है और उनका मनोरंजन भी लगातार चलता रहता है ना?
1: जी मैम बीच बीच में कभी कभी शामिल हो जाते हैं आपके प्रोग्राम में, बाकी तो मैं काफी टाइम से आपके प्रोग्राम सुनता हूँ, 2008 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, तो कौन से प्रोग्राम आपको हमारे अच्छे लगते हैं?
1: मैम देखिए प्रोग्राम तो आपके सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो फोन इन प्रोग्राम होते हैं इसमें दूर दूर से श्रोताओं की कॉल आती है, वो अपने बारे में जानकारी देते हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है मैम।
0: नहीं देखिए, सारे प्रोग्राम में मेहनत की जाती है, इसमें अगर आप कॉल करते हैं तो ये तो अच्छे होते हैं, लेकिन और भी हमारे प्रोग्राम है उन्हें भी सुना
1: हाँ
0: करें।
1: मैम मैंने आपको बोला नहीं, प्रोग्राम तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें जो है ये श्रोताओं की जो आवाज सुनने को मिलती है ये फोन इन प्रोग्राम में मिलती है मैम, बाकी तो अपनी
0: अच्छा
1: तरफ से आप पूरी कोशिश करते हैं हर प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे होते हैं मैम।
0: जी जी, हमारा अगला प्रोग्राम है उसमें भी हम श्रोताओं के मैसेज शामिल करेंगे, उसमें भी
1: जी जी
0: जुड़िएगा आप। ठीक है
1: जी जी जी जी मैम,
0: ठीक है, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका
1: थैंक यू मैम,
0: पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जानवर से। ओके
1: धन्यवाद।

0: हेलो नजीब बाबा, हेलो नजीब बाबा
1: हाँ जी, हेलो नजीब आबाद।
0: जी, हेलो नजीब आबाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या हम जान सकते हैं हमारे कौन श्रोता हैं जो कार्यक्रम से जुड़े हैं?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैं।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो जल्दी से बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जहां तक पसंद का सवाल है मैम, एक गीत था मेरे हमदम मेरे करीब आओ मेरे नगमे तुम्हें बुलाते हैं, दिल्ली फिल्म का मूवी का गाना है ये।
0: अच्छा, तो आपकी पसंद का नगमा हम आपको सुनवाएंगे। तो कार्यक्रम में अपने अगर दोस्तों का आपने नाम लेना चाहते हैं तो जल्दी से फटाफट नाम ले लीजिए।
1: हाँ मैम, कुछ नाम थे घर के, जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी है, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी है, बिटिया अलीसा सिद्दीकी, शिफान सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुदेश चौहान, अतीक तौफीक, दानिश सिद्दीकी, महेश्वर खैन से, इकराम प्रेमी साहब रामपुर से, नवाबुद्दीन भाई रामपुर से, दुलापुर मुर्दाबाद से, मुकेश कश्यप जी है, राशिद अंसारी है, पागवाड़ा से मुजाहिर अंसारी है।
0: बड़ी लंबी लिस्ट है आपके दोस्तों की, बहुत सारे दोस्त हैं, यानी आप मतलब बहुत इस मिजाज के हैं दोस्ती करने वाले।
1: हाँ देखिए मैम, क्योंकि रेडियो से बहुत काफी लंबा अरसा हो गया आकाशवाणी से जुड़े हुए, तो एक दूसरे से संपर्क बना रहता है, बातचीत भी होती रहती है फोन के माध्यम से, तो
0: तो
1: अच्छा लगता है।
0: ये बताइए आपकी रेडियो से दोस्ती कब से है?
1: देखिए कम से कम 20 साल से भी ज्यादा हो गया है जब से प्रोग्राम सुनना है आकाशवाणी नजीवात के, तो अच्छे प्रोग्राम होते हैं सुनना है इसलिए।
0: अच्छा, तो कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: जैसे कि आपका पत्र मिला प्रोग्राम होता है और ये फोन प्रोग्राम अच्छा लगता है, हेलो नजीवाबाद, और यू वाली में जो हेलो फ्रेंड प्रोग्राम आता है वो बहुत अच्छा लगता है, और मैसेज का प्रोग्राम जो आता है सुबह को 10 बजे से 11 बजे तक बहुत अच्छा लगता है, आपकी फरमाइश भी अच्छा लगता है, और यू वाली में जो परिवर्तन किए गए इन दिनों तो वो भी अच्छे पसंद आ रहे हैं।
0: अच्छी बात है, हमने कार्यक्रम में परिवर्तन किए, आपको पसंद आए, आगे भी हम कार्यक्रम में परिवर्तन करेंगे। आप हमें आपका पत्र मिला कार्यक्रम में अपने सुझाव भेज सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में अपने पसंद के नगमे का आनंद लीजिए, फिल्म दहलीज
1: धन्यवाद
0: से। ठीक है,
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा, हेलो नजीबाबाद में फ़ोन करने के लिए।

श्रोताओं, दहलीज फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम संपन्न होने की दहलीज पर पहुंच चुका है। और श्रोताओं, आज जिन जिन श्रोताओं ने हमारे कार्यक्रम में कॉल की, भले ही उनसे मुलाकातें थोड़ी देर की थी, पर उनकी खूबसूरत बातें, उनके खूबसूरत पसंद किए गए गीत और उनकी प्यारी प्यारी बातों ने आज कार्यक्रम की महफिल को सचमुच यादगार बना दिया। कार्यक्रम में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन श्रोताओं की हमारी कॉल नहीं लग पाई, वो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, अगली बार आपकी कॉल ज़रूर लगेगी। और फिलहाल आपके पास अगला मौका है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रात के हमसफर में। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जुड़े रहिएगा कार्यक्रम से यूं ही, और दीजिएगा हमें इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर।

0: नमस्कार श्रोताओं, रात के हम सफर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के रात के हम सफर कार्यक्रम में आपकी हम सफर बनी हूँ मैं फरीना। श्रोताओं, दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब रात की खामोशी हमारे आसपास उतरने लगती है, तब इन सुकून भरे लम्हों में आने वाली जिंदगी की तैयारियों के साथ अचानक ही कुछ पुरानी यादें हमारे दिल दिमाग में दस्तक देने लगती हैं। और इन यादों में कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आंखों से लगा लेते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बरसों बाद भी हमारे होठों पर मुस्कान लाकर हमारे मन को गुदगुदाने लगती हैं। तो आज रात के हम सफर में हम सफर बनाएंगे ऐसी गुनगुनाती, मुस्कुराती, गुदगुदाती यादों को। वो यादें जो जिंदगी की भागदौड़ और थकान के बीच भी हमारे लिए मुस्कुराने की वजह बन जाती हैं। श्रोताओं, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार किस्सा हो जिसे याद करके आपकी चेहरे पर मुस्कान आ जाए और आप मन ही मन मुस्कुराने लगे। वो यादें जैसे बचपन की कोई शरारत, स्कूल का कोई चटपटा सा किस्सा, दोस्त या परिवार से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा देती है, दिल को गुदगुदा देती है। हम चाहेंगे कि आप अपनी ऐसी ही गुदगुदाती यादों को हमारे साथ साझा कीजिएगा और लिख भेजिएगा हमारे नंबर 9457078288 पर। नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 9457078288। श्रोताओं, इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा ताकि आपकी मुस्कान भरी यादों को हम अपने अन्य श्रोताओं तक पहुंचा सकें। फिलहाल रात के इस खुशनुमा सफर को आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे मधुर गुदगुदाते गीत के साथ। और इस गीत को सुनकर हमें ये पूरी उम्मीद है कि इस गीत को जब आप सुन लेंगे, इसको सुनने के बाद आपकी यादों की पोटली से कोई ना कोई प्यारा सा गुदगुदाता लम्हा हम तक जरूर पहुंच जाएगा। तो फिलहाल लीजिएगा इस गुदगुदाते गीत का आनंद, जिसे हमने लिया है फिल्म अर्पण से, आवाज है किशोर कुमार की।
1: सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
2: अच्छा दादा।
1: हाँ तो बच्चों।

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक?

श्रोताओं, यादों की सबसे खूबसूरत अदा ये होती है कि वो कभी बूढ़ी नहीं होती। बरसों बाद भी जब हमें छूती हैं तो अपने साथ वही ताजगी और मुस्कान लेकर आती हैं। तो देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं जो अपनी मुस्कान भरी यादों को, गुदगुदाती यादों को हमसे शेयर कर रहे हैं। ये हैं गढ़मीरपुर हरिद्वार से रवि जवालिया। इन्होंने लिखा है कि मैं बचपन में जब मेरा अपना गुब्बारा फूट जाता था तो मैं दूसरों का भी गुब्बारा फोड़ दिया करता था। आपने अपनी याद को हमसे साझा किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें कौन कर रहे हैं? श्रोता, आपको बता दें इस कार्यक्रम में आपको फरमाइशी गीत नहीं सुने हैं। इस कार्यक्रम में आपको जो हमने आपको विषय बताया कि आपको अपनी गुदगुदाती यादें हमसे शेयर करनी है, वही हमसे मैसेज में साझा कीजिएगा। तो ये मैसेज जो हमें भेजा है, ये भेजा है अनुष्का अविरल मुक्तेश्वर महादेव नजीबाबाद से। इन्होंने ये मैसेज हमें किया है। इन्होंने लिखा है कि एक बार हमारे घर कोई गेस्ट आए थे तो हमने पकौड़ियाँ बनाई हुई थी और उनको सर्व कर दी। उन्होंने भी खाई और हम सब ने भी खाई। जब वो जाने लगे तो मैं उनके साथ चला गया कि मैं भी आपके घर जाऊँगा। उनके घर मैं टीवी देखने गया था क्योंकि क्योंकि उनके घर पर शायद उनको कार्टून देखने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें टीवी देखते देखते बहुत देर हो गई है, अब टीवी बंद करो, तो उन्होंने कहा जवाब में, जिन्होंने ये मैसेज किया है, कि मैंने जितनी पकौड़ी खाई हैं

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रात के हम सफर का आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आज कार्यक्रम में हमने हम सफर बनाया है अपनी गुदगुदाती मुस्कुराती यादों को। श्रोताओं, कभी कभी एक पुराना गीत, एक तस्वीर या किसी का नाम भर सुन लेने से ही हम कई साल पीछे लौट जाते हैं और फिर याद आता है यादों का मुस्कुराता गुदगुदाता दौर, जब जिंदगी आज से ज़्यादा आसान थी और हंसते मुस्कुराते हम जिंदगी जीते थे, जबकि हंसी और मुस्कुराहटें ज़्यादा सच्ची हुआ करती थी। हमें भी कार्यक्रम में ऐसी ही गुदगुदाती यादों का इंतज़ार है, तो देखते हैं हमारे कौन श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं। ये मैसेज हमें भेजा है शाही मार्केट सुहारा ज़िला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात, अदीब और कादिर ने। ये कह रहे हैं कि आज हमारे चेहरे पर काफ़ी मुस्कान थी क्योंकि मैं हले नजीबाबाद सुन रहा था और मैंने सुना कि श्रोताओं का 9 साल बाद कॉल लगी और किसी की पूरी ज़िंदगी हो गई। और 20 साल में मैंने भी कई बार कॉल लगाई, कॉल लग जाती है, 1 महीने बाद कॉल लगाते हैं और आप श्रोताओं को मौका देते हैं कार्यक्रम में 9 साल

बात कॉल लगी तो मेरे चेहरे पर से मुस्कुराहट आ गई। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम सुना और कार्यक्रम में ये मैसेज आपने भेजा। ये मैसेज भी हमारे श्रोता हमें भेज रहे हैं। जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव ये लिखते हैं कि एक पुरानी याद है, सन 1980 की है, कि मैं कक्षा 6 में था। स्कूल के सारे बच्चे प्रार्थना में जाते थे और उसी कमरे में बैठकर कुछ और हम लोग उस अपनी जो क्लास थी उसमें बैठकर छुप जाते थे। इस कमरे में एक अलमारी में मजदूर लोगों की कपड़े की गठरियां भी रखी रहती थी, जिसमें कुछ कपड़े होते थे और उसमें 4 सेल वाला दिनकर कंपनी का रेडियो ट्रांजिस्टर होता था, तो हम उसमें रेडियो चालू कर देते थे, और आकाशवाणी इंदौर पर 1:10 पर अपने कार्यक्रम मन भावन का आनंद लेते थे। और हमें ये आज भी बहुत अच्छे से याद है कि फिल्म मुद्दत का गीत हम सुना करते थे भूपेंद्र जी और आशा जी की आवाज़ में, और आज उसके बाद भी हम तब से लगातार आकाशवाणी नजीब आवाज़ सुनते आ रहे हैं। हमारा ये शौक आज भी कायम है, और आज मेरी उम्र 58 साल हो गई है जब से लगातार रेडियो सुनता आ रहा हूँ। आपने बचपन की ये याद आप हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है परी महल काशगंज से, भेजने वाले हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखा है हमें और आपने कोई यादगार पल भी हमसे साझा नहीं किए हैं। ये अगला मैसेज हमें कौन से श्रोता भेज रहे हैं? श्रोता, हम आपको एक बार फिर बता दें, इस कार्यक्रम में आपको अपनी कोई याद साझा करनी है जिससे आपके चेहरे पे आज भी मुस्कान आ जाती है। तो ये अगला मैसेज हमें भेजा है केसरी सिंह राजपूत, बैरसिया, भोपाल, मध्य प्रदेश से। ये हमें मैसेज कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, जब बारिश की वजह से हम अपना बैग लेकर पैदल स्कूल जाया करते थे, एक दूसरे बच्चों पर कीचड़ जानते हुए देखते हुए घर आया करते थे। बचपन के दिन कोई नहीं लौटा सकता, और मुझे वो गीत बहुत पसंद है, कोई लौटा दे मेरे प्यारे प्यारे दिन। और कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं, ये हैं हमारे श्रोता अनिल विनोचा जी, ये हमसे साझा कर रहे हैं एक मुस्कुराती गुदगुदाती याद। ये कहते हैं कि 6 महीने पहले मैं दिन में सो गया और मैं भगवान जी के दरबार में खड़ा हुआ। वहाँ बहुत लोग भगवान जी से कुछ मांग रहे थे। मैं एक कोने में खड़ा हुआ था और है पैसा कर रहा था। मैं धरती लोक की व्यथा कह रहा था, तभी भगवान जी ने मुझे बुलाया और कहा, तू ऐसा मेरा भक्त है जो पैसा नहीं मांग रहा, मैं तुझे पैसा देना चाहता हूँ। मैंने अपनी झोली फैला ली। भगवान जी बोले, कहाँ है तेरे बार कोड, ऑनलाइन जमा कर दूँ? वो तो मैं नहीं लाया, मैंने जवाब दिया, अभी लेकर आता हूँ। इतने में मेरी नींद खुल गई और मैं मालदार बनते बनते रह गया। आपने ये सपना अपना हमसे साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में श्रोताओं, जिंदगी की कुछ ऐसी बातें होती हैं, यादें होती हैं, जो हमारे चेहरे पर कभी भी मुस्कान ले आती है। और ये यादें जो होती हैं समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि इनकी चमक वक्त के साथ साथ और भी बढ़ती जाती है। जीवन भले ही आगे बढ़ता रहता है, लेकिन मन के किसी कोने में ये पल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और सच में कितनी खूबसूरत बात है जब हम सबकी यादों की पोटली, चाहते, सपने खुलते हैं, जो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें छिपी भावनाएं कहीं ना कहीं एक जैसी मिलती जुलती होती हैं। बचपन की शरारतें, दोस्तों का साथ, परिवार की हंसी मजाक, भरी ये बातें सब हमारे जीवन की ऐसी पूंजी हैं जो समय के साथ साथ और भी कीमती हो जाती हैं। फिलहाल कार्यक्रम में आनंद लेते हैं हंसते मुस्कुराते इस गीत का।

कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें भेजा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल ने। इन्होंने लिखा है कि स्कूल के दिनों की याद है, ऐसे बारिश के दिन थे, स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए साइकिल बहुत तेज चला रहा था। साइकिल का पैंडल लकड़ी का था, गड़बड़ में मेरा पैर उसमें अटक गया और मैं नीचे कीचड़ में गिर गया और मुझे आज भी याद करके हंसी आती है। श्रोताओं, कई बार छोटी सी घटना भी हमारे जीवन में इतनी गहराई से बस जाती है कि बरसों बाद भी उसे याद करके हमारे चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। ऐसा ही एक मैसेज हमें भेजा है बरेली से नीलू दिवाकर, अमित दिवाकर, मनोज दिवाकर, साहिल दिवाकर, रजत दिवाकर, सूरज दिवाकर, पायल दिवाकर, नैना दिवाकर, सलोनी दिवाकर और उनके मम्मी पापा ने। इन्होंने लिखा है कि बचपन में हमें लगता था कि टीवी के अंदर जो लोग हम देखते हैं, जिन्हें यानी हीरो हीरोइन, वो टीवी के अंदर ही रहते हैं। एक दिन टीवी बंद हुआ तो मैंने पीछे जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। आज भी घर वाले जब उस बात को याद करते हैं तो खूब हंसते हैं। और एक बार ये हुआ कि मेरे भाई की गुल्लक टूट गई और उसने क्या किया कि 4-5 सिक्के जाकर मिट्टी में जाकर वो डाले। और मैंने उससे जब पूछा कि तुम मिट्टी में क्यों दबा रहे हो तो बोला कि देखना कुछ महीनों बाद पैसों का पेड़ लगेगा और मैं इसमें रोज़ पानी डालूंगा और एक दिन पैसों का पेड़ उगाएगा। वाकई में बचपन की यादें जो होती हैं वो नटखट सी होती हैं, उन्हें याद करते हैं तो खुद पर हंसी भी आ जाती थी कि हम बचपन में कितने नादान थे और कैसी कैसी बातें हमसे हो जाती थी। वाकई में ये छोटी छोटी गुदगुदाती सी खिलखिलाती मुस्कुराती यादें ही तो होती हैं जो जीवन की अनमोल धरोहर होती हैं। और जब भी हम अपनी पुरानी यादों को दूसरे से बांटते हैं तो केवल वो हमारी नहीं रह जाती बल्कि सबके चेहरे पर मुस्कान की वजह बन जाती हैं। आज की ये महफिल आज ही के मुस्कुराते लम्हों से सज रही है। अब इसी मुस्कान को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक मुस्कुराते और गुदगुदाते गीत की तरफ।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अंतिम मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भरिया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। इन्होंने लिखा है कि इन्हें बचपन में शक्तिमान बहुत पसंद था। ये टीवी देखने जाया करते थे और अक्सर टीवी बंद कर दिया जाता था और इन्हें बहुत अफसोस होता था क्योंकि अक्सर काफ़ी बच्चों का ये फेवरेट था और बच्चे शक्तिमान की तरह घूमा करते थे। तो आज का ये सफ़र बस इनके मैसेज के साथ ही, गुर्दाती खिलखिलाती यादों का सफ़र यहीं पर सम्पन्न होता है। दीजिएगा इजाज़त अपनी दोस्त फरीना को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रात के हम सफर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: नकरी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।